0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
3: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। आज शनिवार 30 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रहे हैं।
2: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। 5:06 हो रहे हैं और वीकेंड की खूबसूरत दस्तक के साथ है शुरू हो चुका है रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। सैटरडे की सुबह वैसे ही खास होती ही है, लेकिन आज की सुबह में कुछ और भी प्यारा सा एहसास है। हवा में हल्की सी ठंडक है, आसमान में अभी धीरे धीरे ये आसमान रोशनी से भर रही है और दिल एक ही दुआ कर रहा है कि आज का दिन खूबसूरत हो, खुशियों से भरा हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो। आज हम सब मिलकर एक ब्यूटीफुल डे मैनिफेस्ट करते हैं। साथ में जो भी आज सुन रहा है उसके दिन में सुकून हो, प्यार हो, अच्छी खबरें हो और दिल को खुश कर देने वाले लम्हे हो। बस हम यही चाहते हैं आप सभी के लिए। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई किशोर दा की जादुई आवाज़ में दिल से मिले दिल। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना हमने अभी अभी चलाया। कहते हैं ना कि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और दोस्तों, आज तो मदर्स डे ईव भी है, कल हम सब अपनी माँ को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सच कहूँ तो माँ को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं होता। माँ वो रिश्ता है जो हर दिन हर पल हमारे साथ ही रहता है। तो इसे सुबह अगर आप की माँ पास है, उन्हें प्यारी से मुस्कान दीजिए, और अगर दूर है तो आज ही उन्हें फोन कर लीजिए। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया, और अगले कुछ पलों तक सदाबहर सुरों के साथ हम इस वीकेंड को और भी खूबसूरत बनाएंगे। नॉट टू फॉरगेट आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस 5499194।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: कभी सोचा है कि वीकेंड की सुबह इतनी अच्छी क्यों लगती है? शायद इसलिए क्योंकि आज हम घड़ी से नहीं दिल से जीते हैं। वीक के बाकी दिनों में हम काम, जिम्मेदारी और शेड्यूल्स में उलझे रहते हैं, लेकिन सैटरडे की सुबह जैसे ही कहती है आज थोड़ा अपने लिए जी लो, और जब बैकग्राउंड में सदाबहार गाने बज रहे हो तो सुबह और भी हसीन लगने लगती है। पुराने गाने हमें एक बात सिखाते हैं कि जज्बात कभी पुराने नहीं होते। जमाना बदल जाता है लेकिन प्यार, अपनापन और यादें वही रहती है। एंड जैसे कि हमने आपको कहा दैट कल मदर्स डे है और आज मदर्स डे ईव है, तो एक बात ज़रूर यहाँ पर याद आ रही है कि हम सबकी जिंदगी का पहला गीत भी माँ की लोहड़ी ही होती है। जी हाँ, हम इस सेगमेंट में ज़रूर एक गाना चलाएंगे जो ऑलरेडी वाइब्स दे जाएंगे। सो यस, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर इन योर चिलैक्स शो। दिस इज मी, आपके रिया आपके साथ। एंड यस, सो वी आर प्लेइंग यहाँ पर सदाबहार गाने सभी के नाम। 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा एंड इसके बाद आप मिक्स गाने भी सुन पाएंगे। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट ट्रैक और आपके डेडिकेशंस के साथ हम थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे।
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. रेडियो मस्ती पर और यहाँ पर हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे. बहुत सारे मैसेजेस एंड वी हैव हमारे साथ कनेक्टेड है व्हाट्सएप पर जयशन जी. हेलो नमस्ते आपको. एंड आप डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना अपने दोस्तों के नाम. तेम्बा, जीवन, उमेरन, अंगुतिया, आकाश, श्रवण, रामदेवर, मीविन,

एंड आपके लिए भी हम ये गाना डेडिकेट करते हैं जो हम नेक्स्ट चलाने वाली है. हाय गुड मॉर्निंग लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, थैंक यू. हेलो आपको. और अभी हस्बैंड की टिफिन प्रिपेयर कर रही है, वो काम पर जा रही है. एंड आप सभी को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहते हैं. इट्स अ प्लेजर टू बी अ मॉम एंड आई एम आल्सो अ मॉम. मैनी मैसेज यहाँ पर कह रहा है, दैट्स ब्यूटिफुल. सच में आपने बहुत ही अच्छा कहा है और बहुत ही ब्यूटिफुल लिखा है, दैट इट्स अ प्लेजर टू बी अ मॉम. सो आपके नाम हम नेक्स्ट गाना जरूर डेडिकेट करेंगे. एंड आपके हबी विशाल के नाम आपकी तीन बेटी है, यादव, नीलेश और विदेश. बहुत ही प्यारे नाम है. सो सभी को हम गुड विशेस देते हैं. एंड वी ऑल्सो हैव हमारे साथ सरिता जी जो है गुड लेंस से. हेलो. एंड नेक्स्ट गाना आपके नाम भी जाता है. गाने का जो सिलेक्शन है ये आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, नेक्स्ट गाना भी आपको उतना ही पसंद आएगा. सरोज जी हमारे साथ है, कनेक्टेड है. आपके नाम राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, विशाल, उमेश, सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पर सायरा बानो जी और अब्दुल के नाम नेक्स्ट गाना जाता है. हमारे साथ ऑल्सो धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति और आग परिवार मौदाल बेसी है. सवेरे सवेरे जुड़ चुके हैं हमारे साथ एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स ऑफ रेडियो मस्ती. थनीश्वर जी कैसे हैं आप, बॉम्बू से कनेक्टेड हैं हमारे साथ. एंड आपकी प्यारी पत्नी सुनीता है साथ में. दावे दोस्त परिवार के नाम गाना जाता है. और यहाँ पर नॉर्मल मैसेजेस में हम देख रहे हैं कि मनीष, अमर, राजा, बनी, सिख परिवार, खुबलाल परिवार, रिविया जो आपस से साथ निभा रहे हैं. और साथ में ज्योति जी है शादा बनारस से. कैसी हैं आप ज्योति जी. आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव परिवार के नाम आप डेडिकेट करना चाहते हैं नेक्स्ट गाना. एंड ऑल्सो कमला, पलानियापन, अजागैन, मुनिसामी, महेश्वरन, नारायणन, इन सभी के नाम नेक्स्ट गाना जाता है. आई होप यू हैव अ गुड गुड टाइम यहाँ पर प्लेइंग सम ब्यूटीफुल सा बाहर गाने आप सभी के नाम, जैसे कि ये नेक्स्ट गाना दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: राइट, अपने घर मिलाते चलिए, पौने छह बज रहे हैं और अभी हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। परिवार के किसी सदस्य से सहयोग आपको मिलेगा। किसी बात पर अधिक क्रोध करने से आप बच के रहे। मन में नया विश्वास जागेगा और दिन सुखद रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज मन शांत रहेगा और घर का वातावरण आनंद देगा। किसी पुराने दोस्त से भेंट या बातचीत हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में सावधानियां पर रखें। स्वास्थ्य पर आप ध्यान भी दीजिए और दिन के अंत तक संतोष का अनुभव होगा आपको। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा बल बनेगी। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। किसी नई योजना पर विचार आप जरूर कर सकते हैं। छोटी यात्रा या का योग भी बन रहा है। प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाएं कुछ अधिक प्रबल रह सकती है। अपने मन की बात किसी प्रियजन से साझा करें, उनके साथ बांट लीजिए। घर और परिवार के बीच समय बिताने से आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और जल्दबाजी में निर्णय लेने से आप बच के रहें। दिन शांति और स्नेह से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रयासों की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत भी आपको दिखने लगेंगे और अपने व्यवहार में आप विनम्रता बनाए रखें। सफलता का मार्ग खुलता दिखाई देगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज योजनाबद्ध ढंग से किया गया काम लाभ आपको देगा। किसी पुराने कार्य में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के आप लापरवाही ना करें। परिवार का साथ मन को बल देगा। दिन संतोष और उपलब्ध

0: का अनुभव कराएगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। दिन प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा। मन की आवाज सही दिशा दिखाएगी। किसी पुरानी चिंता का समाधान मिल सकता है और आत्मविश्वास बनाए रखें। दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी नए काम की शुरुआत का विचार बन सकता है। यात्रा का भी योग है और मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा। आज आपका लकी नंबर है 4।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज परिश्रम का अच्छा फल मिलने का संभावना है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। किसी बड़े की सलाह लाभदायक होगी और धैर्य आप बनाए रखें। दिन संतोषजनक रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार और नई प्रेरणा मिलेगी। किसी रचनात्मक काम में सफलता मिल सकती है। दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा और अपने लक्ष्य पर आप ध्यान बनाए रखें। दिन आशा और उत्साह से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन को शांति और सुकून मिलेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय विशेष आनंद आपको देगा। धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों की ओर मन आकर्षित हो सकता है। अपने मन की सुने। दिन सुखद और संतुलित रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 7। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप दैट आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए और दिन अच्छा ही जाएगा। शनिवार का दिन है, वीकेंड टाइम है, तो ये समय अच्छे से कटेगा। स्पेशली अगर रेडियो मस्ती के गाने मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो ही जाएगी। चलिए तो रिया की ओर से आपको शुभ दिन, शुभ शनिवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits music only.
3: Feels a musti.

0: सांस सिर्फ एक शब्द नहीं पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए सुबह की ठीक है 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या. नमस्कार आपको आशिता.
6: नमस्कार रिया और श्रोताओं को भी सुप्रभात. 30 मई शनिवार का दिन, इस पहले प्रातकालीन संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं. अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है. मॉरिशस रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा. चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंचेंगे. और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान जैसे कि आपको बताया गया है आज शनिवार को समाप्त होगा. इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है. प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है. राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी यानी कि निजता और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. विपक्ष और

सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राष्ट्रीय सभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को देश के प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर इटजियों कार्यक्रम का फाइनल आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

0: सुनते हैं मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। धीरे धीरे दिन के दौरान विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। जहां पर आमतौर पर कोहरा छाता है वहां पर कोहरा छाने लगेगा और शाम के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बाद में आसमान साफ हो जाएगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बहेगी और झोंके जब बारिश होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर। और हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Chillax, chillax, chillax with Radio Musty.
3: Your number one Bollywood radio station.

Once again, a goody good morning, सभी को सुप्रभात। 6:10 हो रखे हैं और सैटरडे की ये खूबसूरत सुबह धीरे धीरे अपने पूरे रंग में आ रही है। सूरज की पहली किरणें आसमान को रोशन कर रही है, हवा में हल्की सी ठंडक है और वीकेंड का सुकून हर तरफ महसूस हो रहा है। ऐसे ही प्यारे से मौसम में शुरू हो रहा है रिलैक्स का दूसरा घंटा सॉफ्ट और रोमांटिक गानों के साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। उनके सुर दिल को छू जाते हैं और उनकी बातें कभी किसी की याद दिला ही देती है। तो कभी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, जैसे कैसे कहेंगे, कुछ रोमांटिक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे बारिश गिर रही है और आपको प्यार हो रहा है, बस ऐसे ही उसी फीलिंग के साथ है। तो सैटरडे मॉर्निंग की यही तो खूबसूरती है, ना कोई जल्दी ना कोई भाग दौड़, सिर्फ सुकून की पल और दिल को अच्छा लगने वाली गानी। तो अगर आप चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं या कहीं सफ़र पर है, काम पर जा रहे हैं, इस आवर को आप बस महसूस कीजिए। वी गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ है आपके रिया और अगले एक घंटे तक रहेंगे प्यार भरे नग में नर्म एहसास और वीकेंड की खूबसूरत वाइब्स। सेंड अस आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294।

0: Chillax with Radio Musty.
1: जी हाँ बिल्कुल उचित कहा यहाँ पर कि जिंदगी दो पल की ही है, इसलिए तो कहते रहते हैं बैठ बैठ के जिंदगी को जियो, अच्छे से जियो, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ आप ढूंढ लो, क्योंकि खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही मिल जाती है। अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ों की ताक में रहेंगे कि कब मेरे साथ कुछ बड़ा होगा, अच्छा होगा, तो आप बस इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। तो अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो छोटी चीजों में ही आप खुशी ढूंढो, अपनों का साथ मिल रहा।

है, ये ही खुशी का खुशी की बात है। रेडियो की जो गाने हैं ये भी खुशी की बात है। तो बस आप जिंदगी को अच्छे से जियो। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे चाचू सुनील के नाम, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना जन्मदिन। 63 इयर्स ओल्ड के हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे आपको चाचू सुनील, बहुत सारा प्यार एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम

0: यही हमारी प्रार्थना है. एंड यहाँ पर सोया हमारे साथ जुड़ी हुई है, विशिंग ऑल मदर्स हैप्पी मदर्स डे. एंड स्पेशली मम्मा श्रद्धा बगन को, तो मम्मा आपकी मम्मा को भी हम विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे. एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन साइलीश, संदीप, अनीता एंड आप सोया बियारी जी जो है कुंगमा से. एंड कहती है दैट आवर मदर इज़ अ गॉड फॉर अस. ये तो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, मदर माँ भगवान ही होती है. सो यहाँ पर हम मदर्स डे विश करती है सभी को. एंड हमारे साथ ऑल्सो जुड़ी हुई है संजीता. आप है कैथ कुकु से एंड ब्यूटीफुल गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने दोनों बच्चों के नाम, प्रत्युष और दुर्वांश. बहुत ही प्यारे नाम है. एंड श्रीना आपकी मामा रेणुका, पापा मनोज एंड द होल अलियाल परिवार. सो सभी के नाम हम गाना डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट. इट्स अ ब्यूटीफुल वन जो हम चलाने वाले हैं. एंड यहाँ पर हैप्पी 60th बर्थडे टू लवली मामा गृहलक्ष्मी रामा. बहुत ही प्यारा नाम है. आप हैं मोका से और आपको विश कर रहे हैं डैरन, स्वीटर, रवीश, प्रीशा, लवीशा एंड अपाटी परिवार जो है रोशनो से. सो हमारे साथ यूँ ही आप कनेक्टेड रहिए एंड एन्जॉय द नेक्स्ट ट्रैक.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

और ये गाना हम किशन राम भरोसे जी के नाम डेडिकेट करते हैं जो है चित्रकूट से. तो आपका आपके लिए ये गाना, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, कुमार सानू जी की आवाज में एंड साथ में अलका याग्निक भी है. ये ब्यूटीफुल डुएट आपके नाम और हमारे सभी लिसनर्स के नाम.

घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:31 हुए हैं। मई शनिवार की इस प्रातकालीन पहली बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य

0: शाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। रोड्रिग्स समय मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंचेंगे। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राष्ट्रसभा में मॉरिशस क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देती हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित करना और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना था। ये कार्यक्रम 25 से 29 मई के बीच आयोजित किया गया और इसमें अमरीकी खुफिया एजेंसी ने अपनी विशेषज्ञता साझा की। इस पहल को अमरीकी सौजे दफेयर क्रेग हाल्बमैनर ने बताया कि ये बढ़ते व्यापारिक संबंधों के बीच अवैध गतिविधियों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है, विशेष रूप से जुलाई में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट को ध्यान में रखते हुए। हाल के दिनों में बंदरगाह पर सुरक्षा अभ्यास, मॉरिशस पुलिस और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी और अब ये प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर अमरीका और मॉरिशस के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अमरीकी पक्ष के अनुसार ये सहयोग एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है। क्रेग हाल्बमैनर को सुनते हैं। प्रणव बिहारी ने उनसे बात की विधिमा सिबरन की विवरण के साथ।
1: जुलाई महीने के अंत को मॉरिशस में सबसे बड़ा सम्मेलन लगने वाला है, यानी यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट, और इससे वित्तीय सेक्टर में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। इस सकारात्मक प्रवृत्ति से हम इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि हम गंभीरता से जोखिमों को संभालेंगे। अमरीका मॉरिशस को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है और विभिन्न स्तरों पर योग्य पाता है। पिछले सप्ताह हमने सुरक्षा के क्षेत्र में एक संधि को अंतिम रूप दिया और एक ऐसे दूतावास का निर्माण किया जाएगा जो 100 सालों तक रहेगा। ये 100 सालों का एक निवेश है। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि ये वाशिंगटन की ओर से एक पहल है जो इस संबंध में निवेश कर रहा है।
0: अमेरिकी सौजे दफेयर ग्रेग हाल्बमैनर ने बताया कि अगले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के लिए मॉरिशस में आने वाली उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना को आने वाले कुछ हफ्तों में आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया था जिनमें मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की भी शामिल थी। एमआरए के महानिदेशक रोहित रामनवास के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल तकनीकें भी इसका हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला नई तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने में मदद करेगी और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस बीच हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए अनुसार 31 मार्च तक कर बकाया 25 बिलियन रुपए से अधिक पहुंच गया है। रोहित रामनवास ने बताया कि कुछ मामलों में कर वसूली लगभग असंभव हो जाती है जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने में 5 साल तक का समय लग सकता है। रोहित रामनवास को सुनते हैं एक बार फिर प्रणव बिहारी और विधिमा सिबरन के साथ।
1: ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कंपनियों की नीलामी होती है। एक लिक्विडेटर को प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। कुछ अन्य कंपनियां हैं जो सॉल्वेंट नहीं थी और उन्हें नीलाम करना पड़ा, और इसके लिए पैसे प्राप्त करने का मौका बहुत कम होता है क्योंकि कोई अचल संपत्ति नहीं होती है जिसे जब्त किया जा सके। लेकिन एक दूसरा मामला होता है जो अदालत में जाता है। जब एक मामला कोर्ट में जाता है तब ये हम पर निर्भर नहीं होता है। हमें कोर्ट की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जिसमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। मामला कभी कभी प्रिवी काउंसिल तक चला जाता है, तब हमें फैसले का इंतजार करना पड़ता है।
0: 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिग्स से दोनों जगहों पर आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया था। वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलरोज कैट्रोबोन में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए, जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच के लिए पहुंचे। सप्ताह के दिनों में ये अभियान शाम चार बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक चलता है, लेकिन शनिवार को केंद्रों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं, उनके पास आज दोपहर 1 बजे तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का समय है। पढ़ते हम रोड्रिग्स की ओर। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण का अभ्यास आज शनिवार को समाप्त हो रहा है। ये प्रशासनिक अभ्यास इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति में आयोजित किया गया है, जिसकी वजह से इसे और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावी तैयारियों को सुचारू और अपडेटेड रखना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। जगालजीन हेनिके की रिपोर्ट पर ये विवरण। रोड्रिग्स में चुनावों के लिए प्रक्रिया 12 बजे बंद होंगी। इलाकाई चुनावों के संदर्भ में ऐसा पहली बार किया गया है। पिछले 2 हफ्तों से मतदाता अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर पा रहे थे तथा उसमें सुधार या पहली बार के लिए चुनाव आयोग के यहाँ अपना पंजीकरण कर पा रहे थे। हाल के औपचारिक आंकड़ों तथा 2025 के ब्यौरा के अनुसार रोड्रिग्स में 33,660 पंजीकृत मतदाता हैं। वर्तमान का ये अभ्यास रूटीन लग सकता है, पर हर एक व्यक्ति को ये भली भांति ज्ञात है कि उसके पास राजनीतिक स्तर पर कौन सी कमियां हैं, क्योंकि लगभग 8 महीनों में रोड्रिग्स वासियों को एक नए रोड्रिग्स रीजनल असेंबली के गठन के लिए बुलाया जाएगा, और जहां से भविष्य के कमिश्नर चुने जाएंगे जो टापू का कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि यहाँ ये क्षेत्र 6 चुनाव क्षेत्रों में विभाजित हैं: लाफेम, मारिशाल, सेंट गैब्रियल, बेउजुइत, पो माथुरिन तथा ग्रांड मोंटाइन। 6 क्षेत्र, 12 निर्वाचित तथा आने वाले महीनों में होने वाला एक कैंपेन। चुनाव आयोग के लिए इस सप्ताहांत को समाप्त होने वाला ये अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से आगामी भावी बहुमत का चुनाव होगा। सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ये विधेयक 2024-2025 वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त खर्चों से संबंधित है। मंत्रिपरिषद ने कल इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इस पर तथा कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का एक ब्यौरा पेश है रजनी बिकर के साथ।
2: मंत्रिमंडल ने राज्यसभा में सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल पेश किए जाने पर स्वीकृति दी। इस विधेयक का मकसद है वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सरकारी सेवाओं के अंतर्गत रिकरेंट और कैपिटल दोनों ही एक्सपेंडिचर को वोट द्वारा सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन उपलब्ध कराना। मंत्रिमंडल की ओर से भारतीय सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के अंतर्गत आइलैंड कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के अमल में लाए जाने की बात पर विचार करना। 2025 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री की भारतीय यात्रा के उपरांत दोनों ही सरकारों की ओर से बंदरगाह की पुनर्व्यवस्था और विकास के लिए एक अहम साझेदारी की घोषणा की गई है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सभा में ख्योल मौसिया की संभावित प्रस्तुतिकरण पर राष्ट्रीय सभा की स्पीकर की अध्यक्षता में लगी स्टीयरिंग कमेटी की एक अंतरिम रिपोर्ट में किए गए सुझावों की बात का जायजा लिया। मंत्रिमंडल ने इस बात का जायजा लिया कि भूमि एवं आवास मंत्रालय

0: बीमो बालाक्लावा में एक टुकड़ी जमीन को फिर से पब्लिक बीच घोषित किए जाने पर विचार कर रहा है, जिसे 2008 में डीप्रोक्लेम किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस बात का जायजा लिया कि समाज कल्याण मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी सेवाओं को आधुनिक बनाने की एक बल्क स्कैनिंग परियोजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट से अधिक कारगर डिजिटल स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम के माध्यम से सोशल बेनिफिट्स प्रोसेस करने में सुधार लाया जाएगा। अनुमान है कि करीब 10.5 मिलियन फाइल्स स्कैन किए जाएंगे और 18 महीनों की अवधि में एक डिजिटल प्रणाली में इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मॉरिशस को प्रभावित करने वाली जल संबंधी समस्या के संदर्भ में कवाश गतिविधियों को नियमबद्ध करने के लिए लोकल गवर्नमेंट मंत्रालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले कदमों का जायजा लिया।
1: कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल डिबेट पर राष्ट्रीय सभा में बहस दोबारा शुरू होने के दौरान विपक्ष के व्हिप एड्रियन ड्यूवाल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने विशेष रूप से संविधान की धारा 9 पर जोर दिया, जो निजी जीवन और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। एड्रियन ड्यूवाल के अनुसार अब समय आ गया है कि संवैधानिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, ताकि संचार, व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल अधिकारों को भी स्पष्ट सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एड्रियन ड्यूवाल को सुनते हैं।
2: But what is equally important and urgent for government, Madam Speaker, is to proceed in parallel right now with specific legislation regulating state surveillance, interception of communication, monitoring powers, and criminal sanctions. And that is the very important part for misuse and abuse thereof. Most Commonwealth jurisdictions, Madam Speaker, already have such legislations in place. I said last time, in the UK, the Investigatory Powers Act 2016. In other countries of the Commonwealth, small islands like Mauritius, Jamaica, Barbados, St. Lucia, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, you have the Interception and Communications Act. Mauritius should not lag decades behind.
1: वहीं कुशल उबिन ने एड्रियन ड्यूवाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संविधान सुधार के लिए आयोग बनाने का फैसला जनता के जनादेश के अनुरूप है। उन्होंने याद दिलाया कि 2025-2029 के सरकारी कार्यक्रम में संवैधानिक सुधार का प्रावधान पहले से शामिल है। कुशल उबिन ने यह भी कहा कि 1968 के संविधान को अपनाने से पहले भी व्यापक विचार विमर्श और परामर्श किया गया था, और इस बार भी उसी तरह की जन परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुशल उबिन को सुनते हैं।
3: So this very important document that have served us well, that have given us stability, political, social, racial stability in this country after 58 years of independence, it is a milestone to have this commission created, and it is the duty of all of us, parliamentarians, civil society, and the population at large, to be consulted and to give their views to this commission. And the Honourable Prime Minister has been very clear in a very vivid speech that he made, said that the participation of all would be required to make it happen.
1: राज्यसभा के कार्य मंगलवार 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसदीय कार्य अब अगले निर्धारित सत्र में मंगलवार को दोबारा शुरू होंगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके।
0: ये कमरा बिजली कनेक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने वाले एक कंट्रोल रूम से कहीं बढ़कर है। यहाँ स्थापित की गई तकनीक ये जानने में मदद करती है कि नेटवर्क पर एक या एक से अधिक धोखाधड़ी हुई है या नहीं। सीबी के इंजीनियर विमल रामजीत ने कहा, हमारी मीटर लैब टीम ने हमारे नेटवर्क में काफी प्रगति की है जहां दूर से संचार मिलता है। अगर कोई मीटर रीडर से छेड़छाड़ करता है तो हमें पता चल जाता है, चाहे वो देश के किसी भी जगह में हो, तब हमारी टीम जांच के लिए हस्तक्षेप करने जाती है। इस प्रकार आम लोगों और कंपनियों द्वारा बिजली चोरी से जुड़े कई बिलियन रुपयों के नुकसान का पता चला है। इसके समानांतर बिजली चोरी के किसी भी मामले की शिकायत करना भी संभव है। सीबी के पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो मीटरों की जांच के लिए मॉरिशस और रोड्रिग्स का दौरा करती है। ग्राहक 86130 हॉटलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, खुद सीबी दफ्तर जा सकते हैं या फिर डाक द्वारा शिकायत कर सकते हैं। गुप्त तरीके से इन मामलों की जांच की जाती है। पिछले साल सीबी ने बिजली चोरी के 300 से अधिक मामले दर्ज किए थे। ये कृत्य कड़े दंड और भारी जुर्माने के अधीन है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है तथा 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। आने वाले दिनों में इस अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने और बिजली नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए सीबी अपनी जांच और निगरानी को और तेज करने की योजना बना रहा है।
1: सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्नत तकनीकों में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। अस्ताना में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस ने विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक समुदायों को साथ लाकर एक AI गठबंधन स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन किया जाए ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग और शोध को और मजबूत किया जा सके। बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर। पूर्व से आने वाले अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दिन के दौरान विशेषकर देश के पूर्वी और ऊंचाइयों वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी, कोहरा छाया रहेगा और शाम के समय पूर्वी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाके पर बारिश होती रहेगी। बाद में आसमान साफ होगा विशेषकर रात के दौरान। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से हल्की बहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बारिश के समय झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देती हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देती हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में अब हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बेटका रोड लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दी फ्लैक में, बेटका रोड लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दी फ्लैक में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सलोनी चोइतन, श्रीमती सलोनी चोइतन पैदाश नाम जीतू और जिन्हें सलोनी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके पति श्री दनन चोइतन के घर लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट नून। डिस्पेंसरी रोड विचमिल थ्रियोली में, डिस्पेंसरी रोड विचमिल थ्रियोली में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय सुकन, श्री अजय सुकन जिन्हें अजय के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि

0: हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वनेशा सुकन के घर विच्यमित खियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन खियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मॉस्को रोड रिविया जोरोपो में 76 साल के 76 साल के श्री माधु रघुआ जिन्हें रोहित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रिविया जोरोपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। मोसेलमो फुंडन पालमा काटुपोन में 76 साल की 76 साल की श्रीमती चंद्रावती चेदी पैदाशना पंचाय और जिन्हें दानी के नाम से लोग ज्यादा जानती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति श्री मोहित चदी के घर काटुपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल की 55 साल के श्री ऋषि पीरू जिन्हें अजय मौसा के बाप के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी शमिला पीरू के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सैपोल फिनिक्स में 59 साल के 59 साल के श्रीमती नंदानी बाई लीला पैदाशिना सीताराम और जिन्हें नंदिनी जीजा बाई के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति हरीश लीला के घर सैंपल फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियो कस्टेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। फाउंडेन रोड रोशनो में 76 साल की श्रीमती पेचाय रामासामी पैदाशम पेमाल और जिन्हें इंद्रानी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोतिलास्को की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रॉय रोड क्लेमोशा में 70 साल की 70 साल की श्रीमती श्यामा देवी दसोई पैदाशनाम रामयाद और जिन्हें दिव्यानी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे राजू दसोई के घर क्लेमोशा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। साइप्रस लेन लामारिवाक्वा में 70 साल के 70 साल के श्री देबी अंचाराज जिन्हें केसो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है और जो पहले फिनिक्स बेवरेज में काम करती थी। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर लामारिवाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। कॉलोव्यू स्ट्रीट ओकुले में 83 साल की 83 साल की श्रीमती राधा सिबोरत पैदाशनाम भूना और जिन्हें सुनामती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेश सिबोरत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। मार्केट रोड लॉन्ग माउंटेन में 65 साल की 65 साल की श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल जिन्हें तारा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे कुनल बिसुंदयाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामाशो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल की 22 साल के श्री भविष्य खुदी जिन्हें भविष्य के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। लाक्लीमा ओस रिविया जोरोपो में 91 साल की 91 साल की श्रीमती पायदामा अपादू पैदाशनम रामानाओ जिन्हें अनंती के नाम से बहुत ज्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनकी बेटी आत्मा अपादू के घर रिविया जोरोपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8 PM। मोसेलमा रोय बेलिया रिविया सेश में 75 साल के 75 साल के श्री देवानादेन श्रीनिवासन जिन्हें संदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विनोदा सिनेवासन के घर बेलेरवी सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC

0: Podcast तड़का
1: RM2 Radio Mystery
0: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका सैटरडे मॉर्निंग तो शुरू हो चुका है आरएम टू रेडियो मस्ती। यस, मेरे पहले थी रिया, एंड नाउ इट्स निर्मनी आपकी टाइमलेस तड़का शो के साथ। तो टाइमलेस हिट्स लाते रहेंगे, डेडिकेट करते रहेंगे आपके नाम चल 9 AM, तो साथ दीजिए। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है
1: RM2।
2: Radio Musty feels a musty.

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खुशी और क्या चाहिए लाइफ में। साथ बज कर तेरा मन रोज लाइन। यू आर लिसनिंग टू आरएमजू रेडियो मस्ती। गुड मॉर्निंग।

0: Indépendance, jouez responsablement.
1: RM2 Radio Musti.
2: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूब

जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई है। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Sports news, latest updates.
5: Sports news.
1: Radio Musti in the mix.
0: Yes, Savi, it's time for your latest sports updates. Sunte hain aapse Vikash ji. Good morning.
6: Good morning, Nilmani, and a very good morning to all sports fans. Hot news for football fans. FIFA World Cup 2026 के शुरू होने से 12 दिन पूर्व फुटबॉल जगत भभक उठा है और मिकेल आर्टेटा भड़क उठा है. We are here to take the trophy from Paris Saint-Germain, कहा आर्सेनल के कोच मिकेल आर्टेटा ने. आज रात 8 बजे से होगा फैसला यूरोप के बादशाह का, कौन बनेगा चैंपियन यूरोपियन चैंपियंस लीग में.

यूरोपियन चैंपियंस लीग की रात इट्स द फाइनल मुकाबला बिटवीन आर्सेनल एंड पेरिस सैन जर्मेन आज रात 8 बजे से बुडापेस्ट के पुष्कास अरेना से आपके टीवी सेट पर लाइव एमबीसी टीवी के सौजन्य से आर्सेनल वर्सेस पेरिस सैन जर्मेन रात 8 बजे से सीधा प्रसारित किया जाएगा एमबीसी टीवी के चैनल 11 पर। पेरिस सैन जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन है और अटैकिंग फुटबॉल में मास्टर प्लेमेकर उस्मान डेम्बेले 100% शत प्रतिशत फिट बताया जा रहा है। मार्किनियोस अशरफ हकीमी विटिनिया बाकोला वाओ नेवेज क्विचा कागत्सकेलिया डेजिरे ड्यूए और कोच लुइस एनरिके ने भी कहा कि पेरिस सैन जर्मेन की प्रेरणा का स्रोत है विनिंग बैक टू बैक चैंपियंस लीग टाइटल इट्स देयर मोटिवेशन यानी एक ब्लिंग ब्लिंग क्लब से

यूरोप का पावर हाउस बनाया लुइस एनरिके ने पेरिस सैं जर्मेन को। किंतु दूसरी ओर एक ढीठ आर्सेनल और उसका सॉलिड डिफेंस फाइनल में इसलिए है क्योंकि ये उनका हक है, और इसलिए भी क्योंकि राजा का ही बेटा राजा नहीं बनेगा इस बार आर या पार, क्योंकि हम यहां इसलिए हैं बिकॉज वी अर्न्ड द राइट टू बी हियर। बुकायो साका, जूरियन टिम्बर और नोनी माडुए के भी फिट बताए जा रहे हैं, अलोंग विद डेक्लन राइस, डेविड राया, गैब्रियल मार्टिनेली, एबेरिची एडजे, काई हावर्ट्स, विक्टर ग्योकेरेस और कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड, सब के सब तैयार है। आज रात 8 बजे एमबीसी 11 पर लाइव आर्सेनल वर्सेस पेरिस सैं जर्मेन। यूरोप में ही द स्पेशल वन इज बैक। योजे मोरिनो ने अपने पुराने क्लब रियल मैड्रिड के साथ 3 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, यानी मोरिनो मुड़ी गाड़ कर फिर पहुंचा संतियागो बेनाबेई, जहां पर उसने साल 2010 से 2013 के बीच लालीगा, कोपा डेल रोआ और स्पैनिश सुपर कप भी जीते हैं। साबी अलोंजो और अभी हाल में अल्वारो अबेलोआ को निकाले जाने के बाद यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित श्रेष्ठ टीम रियल मैड्रिड की कमर ही टूट गई, एक भी ट्रॉफी हाथ न लगी, ऊपर से उसका एक भी खिलाड़ी स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, इसलिए क्लब की कमर सीधा करने आ रहा है योजे मोरिनो। किंतु इस नियुक्ति में एक शर्त, एक कंडीशन भी है, योजे मोरिनो को तब ही हेड कोच बनाया जाएगा यदि और जब वर्तमान प्रेसिडेंट अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए, यानी 7 जून तक मोरिनो को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उसने कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं 3 सालों के लिए, ही इज बैक। फुटबॉल में ही ऐसा मालूम पड़ता है कि लिवरपूल का फ्रेंच डिफेंडर इब्राहिमा कुनाते अपने क्लब को एक फ्री ट्रांसफर सौदे पर छोड़कर जा रहा है। नए कंट्रैक्ट को लेकर एक लंबी बातचीत डिस्कशन के असफल होने के बाद इब्राहिमा कुनाते भी जा रहा है। साल 2021 में आया था, तब से कम एक प्रीमियर लीग टाइटल उसने जीता है। मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बाद अब इब्राहिमा कुनाते भी फ्री ट्रांसफर डील पर जा रहा है, यानी इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। बिजनेस में भी लिवरपूल बेकार साबित हो रहा है। फिर भी 21 ईयर ओल्ड 21 वर्षीय फ्रेंच डिफेंडर जेरेमी जाके को 60 मिलियन पाउंड में गत साल ही खरीदा गया था। हालांकि वो रेन में ही लोन पर था, नए सीजन से वो वर्जिल वान डाइक और जोवानी लियोनी के साथ डिफेंस संभालेगा। फिर भी लिवरपूल को डिफेंस को और भी मजबूत करना पड़ेगा। इधर न्यूकासल यूनाइटेड का फॉरवर्ड एंटोनी गार्डन एफसी बार्सिलोना का हो गया। कल ही ये सौदा तय हुआ, यानी उसको प्रस्तुत भी किया गया न्यूको में, दाम 69.3 मिलियन पाउंड। खबर है कि एंटोनी गार्डन ने अपना मेडिकल भी पूरा कर लिया है और कल उसे प्रस्तुत भी किया गया। 25 वर्षीय 25 ईयर ओल्ड एंटोनी गार्डन को न्यूको में प्रस्तुत किया गया। क्लब को एफसी बार्सिलोना को उसका वर्क एथिक्स और एप्लीकेशन बड़ा ही पसंद आया। इसका इस नई साइनिंग का मतलब ये भी है कि मार्कस राशफोर्ड का पत्ता कट गया है। वो 29 साल का है, 29 ईयर ओल्ड वर्सेस 25 ईयर ओल्ड। कल 3-4 साल बाद गॉर्डन को बेचा भी जाए तो उससे पैसा मिल सकता है, लेकिन राशफोर्ड से क्या होगा, अब उसका क्या होगा, वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड में या फिर लोन पर ही एफसी बार्सिलोना में, देखते रहिए और सुनते रहिए। वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में कल जो फ्रेंडली मैच खेले गए उनके नतीजे इस प्रकार हैं। ईरान ने गाम्बिया को 3-1 से हराया। दक्षिण अफ्रीका 0, निकारागुआ 0, बोस्निया 0, नॉर्थ मैसेडोनिया 0। इराक ने अंडोरा को 1-0 से हराया। आज स्कॉटलैंड का मुकाबला क्यूरासाओ से, जमैका वर्सेस नाइजीरिया, और इंडिया का मुकाबला, भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से है। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच 11 जून की रात 11 बजे खेला जाएगा को होस्ट मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच। फिर अगली रात साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक, जबकि इंग्लैंड का पहला मैच 17 जून को है क्रोएशिया के विरुद्ध। ब्राजील 13 जून को अपनी एंट्री मारेगा, जिसमें संभवतः 34 ईयर ओल्ड नेमा पहला मैच नहीं खेल पाएगा, चोट के कारण वो 2 से 3

0: इन हफ्तों के लिए आउट है। लियोनेल मेसी अपने छठे वर्ल्ड कप में भाग लेगा एट 39। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी 41 ईयर ओल्ड की आयु में अपना रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप खेलेगा। बर्नली का स्ट्राइकर ब्रिटिश बेस्ड लाइल फोस्टर साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में है, तो दक्षिण कोरिया के 33 ईयर ओल्ड सन युंग मिन को दक्षिण कोरिया ने अपना कप्तान चुना है। वर्ल्ड कप का स्पेशल सेगमेंट इस बुलेटिन के बाद सुनते रहिए। टेनिस को भी लगता है लकवा मार गया है। वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिनर के लुढ़कने के बाद लेजेंडरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी फ्रेंच ओपन रोलांग गारोस में थकान और एज फैक्टर का शिकार हुआ। युवा खिलाड़ी वाओ फोंसेका ने उसे कल रात 5 सेटों के बाद और लगभग 5 घंटों के बाद 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 और 7-5 से हराया। यानी प्रथम 2 सेट जीतने के बाद नोवाक जोकोविच भी लुढ़क गया, थक गया। इन ऑलमोस्ट 5 hours द क्लियरेस्ट टाइम की फॉर द टाइम आ गया है नोवाक जोकोविच के लिए एट 39 ईयर ओल्ड, जबकि हुआओ फोंसेका केवल 19 साल का है। इन दोनों के बीच 20 सालों का अंतर है। इट्स क्लियर टाइम की अब फॉर द टाइम आ गया है। सो हुआओ फोंसेका द न्यू टेनिस किड ऑन द ब्लॉक। हालांकि अलेक्जेंडर ज़ेरेव और कैस्पर रूड और स्टिल इन द रन, कल दोनों की जीत हुई। लड़कियों में 2023 की फाइनलिस्ट करोलिना मुकोवा भी आउट, उसे हराया वर्ल्ड नंबर 170 जिल टेचमान ने, वो भी बहुत ही बुरी तरह से, यानी 6-1 और 7-5 से। इगा स्वियातेक और मार्टा कोस्चुक भी जीत पाई। कोको गाउफ, ओसाका, सबालेंका, सखारी आदि आज रात मैदान पे उतर रही हैं। एंड फाइनली क्रिकेट में युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों के बावजूद शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से परास्त कर आईपीएल के फाइनल में कदम रखा। राजस्थान ने पूरे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन जड़े, जिसके जवाब में गुजरात ने केवल 3 विकेट गंवाकर 18वें ओवर में ही ये लक्ष्य पूरा किया। यानी आईपीएल का फाइनल अब कल रविवार को खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सो सेव द टाइम, आज रात 8 बजे यूरोपियन चैंपियंस लीग का महाफाइनल बिटवीन आर्सेनल एंड पेरिस सैं जर्मेन लाइव फ्रॉम पुस्कास अरेना एमबीसी 11 पर। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
2: चलो वर्ल्ड कप की ओर। वर्ल्ड कप स्पेशल में आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप यंग प्लेयर अवार्ड, जो उस आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित करता है जो इस टूर्नामेंट में 21 साल से कम हो। तो ये अकुलेड जो है ऑफिशियली से क्रिएट किया गया था 2006 वर्ल्ड कप में, लेकिन फीफा ने उसको एक एक्सटेंसिव रिट्रैक्टिव फैन इलेक्शन और हिस्टोरिकल एनालिसिस से बनाया बेस्ट यंग प्लेयर सभी टूर्नामेंट में बैक टू 1958। तो इसमें एज लिमिट 21 होना चाहिए और ऑफिशियल विनर फीफा टेक्निकल स्टडी ग्रुप द्वारा चुना जाता है। और इसमें हाल ही में 2022 में एन्जो फर्नांडेज जो खेलता है अर्जेंटीना में, उससे ये अवार्ड दिया गया था। इससे पहले रशिया में किलियान एम्बापे, फिर 2014 में पुल पोगबा को, 2010 में टोमास मुलर, फिर 2006 में लुकास पोडोल्स्की, 2002 में लैंडन डोनोवान, 1988 में माइकल ओवन, 1994 में मार्क ओवरमास, 1990 में रॉबर्ट प्रोसिनेकी, फिर 1986 में एंजो सिफो, 1982 मैनुअल अमोरोस, 1978 में

0: Antonio Cabrini fir 1974 me Wedislo Smuda 1970 me Teofilo Kubilas 1966 me Frank Beckenbauer fir 1962 me Florian Albert or 1958 me Pele. Yani jo winner 1958 se 2002 tak rahe unhe retroactive award diya gaya historical data or fan voting ke saath. तो यंगेस्ट खिलाड़ी जीतने वाला है पेले जो 17 साल का था 1958 में. सबसे ज्यादा जीतने वाले देशों में फ्रांस और जर्मनी है जिनके तीन तीन विनर रहे हैं. और डबल ऑनर्स 2010 टोमास मुले को गया था जो बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड के साथ साथ वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड भी ले गया था. तो इतना कुछ जवान खिलाड़ियों के बारे में. इस बार भी जवान खिलाड़ी हैं और अपनी जवानी के साथ साथ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार हैं. सो आप भी तैयार रहिए. द वर्ल्ड कप इज नॉकिंग एट द डोर. चलो वर्ल्ड कप की ओर.
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

0: दुर्गी का तो पता नहीं, लेकिन कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार। अभी के लिए गाना सुनते हैं साथ में आरुम टू रेडियो मस्ती पर।
1: टाइमलेस तड़का
2: आरुम टू
3: रेडियो मस्ती।
1: टाइमलेस तड़का।

फिलहाल जा फजीर के 8 बजे तक आठ बजे की भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करा जाता है। सबसे आगे आप सब लोग की प्रणाम नमस्ते और देश के समाचार से के संगे ई समाचार बुलेटिन शुरू करी जा। अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली से आयोजित 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स के विभिन्न गो संस्था के लगभग 50 गो प्रतिभागी लोग भाग ले लन जा। कार्यक्रम के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटे खातिर स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली की मजबूत करे के आश्रित सुरक्षा सहयोग के आस सुदृढ़ करे के रहल। रोड्रिक्स मॉरिशस और रोड्रिक्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दिन के 1 बजे समाप्त हो। चुनावी सूची के अपडेट करे खातिर ई एगो बड़ा संख्या में एगो बड़ा कदम है जेकर खातिर बड़ा संख्या में आदमी अपन विवरण के जांच आ संशोधन कराए खातिर केंद्र दिने बढ़त वन जा। याद रखिए कि आप लोग खातिर खाली दिन के 1 बजे ले समय बाटे। आर रोड्रिक्स में भी जैसे जानत हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज समाप्त हो। बरिस ई प्रक्रिया विशेष परिस्थिति में पूरा कर जाता। प्रशासनिक स्तर पर ई अभ्यास चुनावी तैयारी खातिर एक अहम कदम मानल जाता। याद रखिए कि रोड्रिक्स में 33,660 गो मतदाता पंजीकृत हवन जा। और रोड्रिक्स में ही रही लाजा हुआ परी रोड्रिक्स के बेलास्को स्थित एगो नवा समुद्र तट क्षेत्र के नाम अब बदल के प्लस रास्ताची बेबी रखल जाता। कार्यकारी परिषद ई निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिक्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिये जेकरा रास्ताची बेबी के नाम से भी जानल जाला के श्रद्धांजलि दे के उद्देश्य से ऐसे करल जाता। अधिकारी लोग के अनुसार ई नामकरण ओकर सांस्कृतिक योगदान संगीत के क्षेत्र में उनकर उपलब्धि या रोड्रिक्स की पहचान के मजबूत करे में निभाई गल होला उनकर महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मानित करेला। इन पहल के माध्यम से रोड्रिक्स के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित करे की यार आय होला पीढ़ी ले ओकर

0: योगदान के पहुंचाए के ई एगो प्रयास है। आर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के सीईओ दिजिरे वेंकटाचलम आज 30 जून के अपन पद से इस्तीफा दे दी हन। उनका ई निर्णय पारिवारिक कारण से लेवल जाता कहे कि उ विदेश में अपन उपस्थिति सुनिश्चित करियन। गौरतलब बाटे कि उ सितंबर 2025 में ई पद संभाले के शुरू कर ले रहलन और उनका कार्यकाल एक बरिस से कमती समय के रहल बाटे। एफएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये आश्वासन दिले हवन जा कि संस्था के काम में निरंतरता बनल रही है और सब परिचालन गतिविधि सामान्य रूप से जारी रखा जाए। एक संगे बोर्ड उनकर उत्तराधिकारी के नियुक्ति खातिर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे के भी घोषणा करियन। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल यानी नादिक देने से गठित कैनाबिस नीति सुधार संबंधी तकनीकी समिति के सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया खातिर शुरू करे गल बाटे। ई पहल के तहत नागरिक लोग लगे 21 जून ले नादिक के ऑनलाइन मंच पर जाके अपन विचार सुझाव आ सिफारिश प्रस्तुत करे के आमंत्रित कर जाता। ई परामर्श के उद्देश्य कैनाबिस से संबंधित संभावित नीतिगत सुधार पर आम जनता के दृष्टिकोण और राय इकट्ठा करल जाता। मिलल सुझाव और प्रतिक्रिया के उपयोग तकनीकी समिति के समीक्षा और विचार विमर्श प्रक्रिया में करल जाए। अभ्यास के अंत में तैयार कर गए सब सिफारिश के अंत के अंतिम निर्णय खातिर सरकार के आगे एकरा प्रस्तुत करल जाए। और हमने आपके बता देवी लाजा की काल मंत्रिपरिषद की बैठक लगल जेकर में ही नोट कर रहा कि पर्यावरण मंत्रालय मई 2026 के शुरू से तमाम सार्वजनिक समुद्र तट पर दिखल गल तटीय कटाव यानी इरोजन के संबंध में जहां पर ही आप लोग के बता देवी लाजा की बालू जोन बाटे उधोआ के समुद्र में जाता। एक संबंध में फ्रांस के विशेषज्ञ संस्था ब्यूरो दे रिसर्च जियोलॉजिक एमिनेर के तकनीकी सहयोग प्राप्त हुई। इस सहयोग फ्रांसीसी विकास एजेंसी के माध्यम से करल जाता। बेएजीएम के तटीय कटाव के कारण के पता लगाए की जिम्मेदारी रही और एक संगे स्थानीय हितधारक लोग से परामर्श करे के और उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करे की भी जिम्मेदारी सौंपल जाता। संस्था से ई भी अपेक्षा करल जाता कि ई दीर्घकालिक समाधान लागू होइले आदमी और सब संपत्ति के रक्षा खातिर अतिरिक्त अस्थाई उपाय सुझाए। गौरतलब बाटे कि तमाहे के रहे होला और सामाजिक कार्यकर्ता पीएससी यिप्तोंग बहुत आगे तटीय कटाव के खतरा के लेके चेतावनी दे ले रहलन। ई बीच मंत्रिपरिषद ई भी संज्ञा ले बाटे कि आवास और भूमि मंत्रालय बालाकलावा पंतुपीमा में स्थित एक बीघा और 90 पेयश क्षेत्रफल होला भूखंड के फिनो से सार्वजनिक समुद्र तट के रूप में ओके डाली यानी कि ओके वर्गीकृत करल जाए। एक पर विचार हो भूमि परिस 2008 में सार्वजनिक समुद्र तट के श्रेणी से ओकरा हटा देवल गल रहल। एकर अलावा मंत्रिपरिषद अभी जल संकट पानी के लेके जन समस्या हुआ था एक स्थिति के दिखत लोकल गवर्नमेंट मंत्रालय दिने से कौवाश के सब गतिविधि के नियमित करे खातिर लागू करल जाए होला उपाय की भी जानकारी देलन। ई कदम के उद्देश्य पानी के संरक्षण के बढ़ाए के आर उपलब्ध जो जल संसाधन बाटे ओकरा बुद्धि से उपयोग करे के सुनिश्चित करे के उपाय करी। आर दूसरा देश के समाचार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैश्विक तकनीकी सहयोग के बढ़ावा दे खातिर एगो नवा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा करने बाटे। उ आवत बरिस रूस में एगो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन आयोजित करी एकर प्रस्ताव उ आगे रखली हवन। तेकरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। ध्यान से सुनला ओकर खातिर धन्यवाद। संगे रह अभी बढ़ब
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: the weather broadcast with winners.
1: On est tous winners.
2: सुनते हैं मौसम का हाल. आम हालत पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है. धीरे धीरे दिन के दौरान विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी. जहां पर आमतौर पर कोहरा छाता है वहां पर कोहरा छाने लगेगा और शाम के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रहकर वर्षा होती रहेगी. रात के दौरान बाद में आसमान साफ हो जाएगा. तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बहेगी और झोंके जब बारिश होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की जुआर उठेंगे. खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है. आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर.
0: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
4: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compter.

0: Shameless Tadka.
1: RM2 Radio Masti.
2: इट्स लव हाँ ही प्यार है सैटरडे मॉर्निंग पर आसमान को देख कर थोड़ा हंसना मुस्कुराना अप्रिशिएट करना एक्चुअली ना ये छोटी छोटी चीजें ही इट गोज अ लॉन्ग वे यू नो

0: अगर अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, बाय बस या फिर कहीं पर भी आप हो और हमें सुन रहे हैं, आर एम जो वेरियो मस्ती को सुन रहे हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि टाइमलेस हिट्स का सफर शुरू हो चुका है विद निलमणि आपके ही आर एम जो वेरियो मस्ती पर। तो चलिए फिर से उसी गलियों में ले चलते हैं आपको टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सैटरडे।
1: तड़का
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
1: टाइमलेस तड़का।

0: Shameless Tadka.
1: RM2 Radio Musti.
2: And yes, it's your Timeless Tadka. In Timeless Tadka, mein har tarah ke emotions hai, you name it. आपके डेडिकेशंस मैसेजेस कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं 5499194 पर। अगर कोई स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल गाना चलाना हो तो बता दीजिएगा, भेजिएगा का RM2 रेडियो मस्ती पर आप हो कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग,
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
4: हिट्स, म्यूजिक ओनली
3: फील्स अ मस्ती।

0: Shameless Tadka.
1: RM2 Radio Musti.
2: अरे दोस्तों, आपको बता रहा तो मैं भूल गई कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द पोटैटो। हाँ जी, वही हम्बल आलू जो हर किचन का एग्जैक्टली मनीष बाबू, वही आलू जो हर किचन का सुपरस्टार है। फ्रेंच फ्राइज, चिप्स हो, समोसे हो या फिर आलू के पराठे हो, आलू के बिना तो जिंदगी थोड़ी अधूरी सी लगती है ना। और जो बात हो उस स्टाइल का, आइकॉनिक स्टाइल याद आया जो मनीषमा अभी बोल रही थी।
3: यस, आलू ले लो ले लो ले लो। अभी तो माइक शुरू ऑन हो गया एंड आई कांट डू इट द परफेक्ट वे दैट हाउ आई वाज डूइंग इट, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा मजा आता है जब भी हमारी डिश में एक साइड में आलू है, आलू का भरता, आलू का कुछ भी, आलू फ्राइड आलू। और मेरा सबसे पसंदीदा डिश है फॉर आलू इज यू नो हम कहते हैं भात और जो बुलियों होता है, एंड देन यू जस्ट फ्राई द आलू या फिर आलू की चटनी बना दो, ये मेरे मूड को और भी सेट कर देता है। और मैं ये पांचों दिन मैं खा सकती हूँ विदाउट एनी कंप्लेंट फ्रॉम माय मम्मा।
2: वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी ना? हाँ, तो अगर आप अभी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हो या फिर लंच या डिनर में आलू की कोई डिश है, समझ लीजिए कि आप भी इंटरनेशनल डे ऑफ द पोटैटो मना रहे हैं। और हमें बताना ज़रूर कि आपके फेवरेट आलू डिश क्या है, आलू टिक्की, फ्राई, समोसा। 5491294 पर डू सेंड अस योर मैसेजेस एंड कीप एंजॉयिंग वाइबिंग विद द सॉन्ग्स ऑफ योर रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
4: Radio Musti.
5: Hits, music only.
4: Feels a Musti.

0: time to Radio Musti. Feels a
1: Musti. Hey, ऐसा भी टाइम हो चला है फॉर साइन ऑफ एंड फॉर मनीष मार से हाय बॉली ब्रंच के साथ वो आ रही है yes, वो यही है मुस्कुरा रही है गुनगुना
2: yes, हम गुनगुना रहे थे एंड एंजॉयिंग द ट्रैक्स आल्सो वैसे जब भी हम म्यूजिक में काम करते हैं वी जस्ट गेट लॉस्ट इन द म्यूजिकल सिलेक्शन आल्सो वैसे वी इनवाइटिंग यू टू जॉइन मी ऑफकोर्स 9 से लेकर 12 बजे तक और 11 बजे ऑनवर्ड्स तो वेदिता ऑन साइड में होगी आपको ले चलेंगे स्टूडियो के बाहर लेकिन 2 घंटे का सफर हमारे साथ तय कर लो और Nilmani awesome selection वैसे हम कैंटीन में थे एक वो आँखों में बसे हो तुम तुम्हें दिल में
1: सुना
2: yes actually सारे लोग गा रहे थे in the canteen and everybody was saying like wow wonderful song आपकी selection काफी दमदार है awesome thank you so much see you there
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार पर
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
3: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।
4: वेलकम टू RM2
5: रेडियो मस्ती।
0: रेडियो मस्ती
5: नॉर्थ साउथ
0: 103.5,
5: ईस्ट वेस्ट
0: 96.4,
5: सेंटर
0: 99.4। टाइम चेक सुबह के 9 बजे है।
6: खबरें, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित करना और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना था। ये कार्यक्रम 25 से 29 मई के बीच आयोजित किया गया और इसमें अमरीकी खुफिया एजेंसी ने अपनी विशेषज्ञता साझा की। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC की CEO दिजिरे वेंकटाचलम आज 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय का रहा है। FSC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्य की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा की है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल यानी नाडेक द्वारा गठित कैनाबिस नीति सुधार संबंधी तकनीकी समिति ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल के तहत नागरिकों को 21 जून तक नाडेक के ऑनलाइन मंच पर अपने विचार, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस परामर्श का उद्देश्य कैनाबिस से संबंधित संभावित नीतिगत सुधारों पर आम जनता के दृष्टिकोण और राय को एकत्र करना, प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग तकनीकी समिति की समीक्षा और विचार विमर्श प्रक्रिया में किया जाएगा। अभ्यास के अंत में तैयार की गई सिफारिशों को अंतिम निर्णय के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रोड्रिक्स के बेलास्को स्थित नए समुद्र तट क्षेत्र का नाम अब प्लस गासनाटिबेबी होगा। कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिक्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिया, जिन्हें गासनाटिबेबी के नाम से जाना जाता था, को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया है। अधिकारियों के अनुसार ये नामकरण उनके सांस्कृतिक योगदान, संगीत के क्षेत्र में उनकी

0: उपलब्धियों और रोड्रिग्स की पहचान को मजबूत बनाने में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। और आपको हम याद दिला देते हैं कि 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिग्स दोनों जगहों पर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। और बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण मॉरिशस में किया गया था। मातृ दिवस के संदर्भ में आज की चर्चा कार्यक्रम का विषय है आज की माँ और अल्फा जनरेशन से जुड़ी चुनौतियाँ। हमारे सहयोगी अभी उदय के मेहमान होंगे डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचरण और अंजलि अर्दीन, जो आज की चर्चा आप याद रखिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और तथा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच आप सुन पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तावित रूपरेखा पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद आगे की रणनीति को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम हासिल नहीं करेगा। उन्होंने ये भी मांग की कि होर्मुज स्ट्रेट को दोनों दिशाओं में दीर्घ समुद्री यातायात के लिए फिर से खोला जाए और वहां बिछाई गई किसी भी समुद्री सुरंग को नष्ट किया जाए। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Body Branch RM2 Radio Must See.

0: अगर देखा जाए तो हमने भी एक अनजान सा वादा कर लिया है आपसे कि प्यार कभी ना कम होगा और ये जो एंटरटेनमेंट है बना रहेगा आपके लिए। गुड मॉर्निंग, 9:09 हुए हैं, एक्चुअली 9:10 होने को है। गुड मॉर्निंग आप दे, कैसे हो आप लोग? सो वेलकम हियर इन योर बॉली ब्रंच हियर विद मनीषमा। ऑफ कोर्स मैं रहूंगी आपका साथ निभाने के लिए ऑन एयर 9 से लेकर 11 बजे। ओके, 11 बजे ऑनवर्ड्स वेदिता आपका साथ निभाएंगी, यहाँ नहीं लेकिन स्टूडियो के बाहर। वैसे हैव अ वंडरफुल वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द डे। यहाँ पर आपके मूड को अच्छा करने के लिए आई गॉट सम रियली नाइस ट्रैक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लेते एक छोटा सा ब्रेक अभी के लिए फिलहाल, एंड देन हवाओं की बात हो रही है तो आ गई है कोई ताज़ा हवा, हमको छू गए 2.5 अक्षर प्रेम के, कमिंग अप फॉर यू।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5 p.m. to 10 p.m. So don't miss out.
2: RM2 Radio Musti
3: Body Branch.
4: RM2 Radio Musti.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.
2: I can't.

9:22 हुए हैं। सच्ची में यही बात करना चाहती हूँ, जो कुछ भी हुआ जाने दे दो यार, बस बातें हैं, बस भूल ही जाते हैं लोग। वैसे सारी जो याद आते हैं, यादें जो अच्छी मेमोरीज होती है, आपने कभी नोटिस किया है? आप ना 15 साल पहले रिवाइंड कर लो, अच्छी अच्छी यादें ही याद आ जाती है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग अगेन। अभी के लिए यहाँ पर आगे टू सम रियली नाइस ट्रैक, आई होप यू आर लाइकिंग द सिलेक्शन। चलिए बता दो डेडिकेशन क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, प्लान क्या है आज के लिए? तो सैटरडे है यारो, और कल तो मदर्स डे है। अब तो जानती है कि वैसे मैं भी तो जानती हूँ बहुत

0: तैयारी हो रही है, वैसे घर को साफ करना, ऊपर से मेहमान आने वाले हैं, दामाद जी आने वाले हैं और बहू रानी भी है पधारने वाली है। यहाँ पर आप एंजॉय कीजिएगा द नेक्स्ट वन तेरी चिन्नरिया। हेलो ब्रदर,
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

2026 के ईद भी गाने चलेंगे यहाँ पर 9 से लेकर 12 बजे तक मनीषमा के साथ रहेगा 5:49 and 1:29 पर ऑसम मॉर्निंग के साथ से यू 9:30 बजने को है उठ जाओ एंजॉय कर लो ब्रेकफास्ट हो गई अरे ये वॉली ब्रंच

यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार बिजी बिजी, इतने सारे काम है निपटाना है, ऊपर से सैटरडे का टाइम है, एंड ऑफ कोर्स आई गेट सो मेनी थिंग्स. वैसे यहाँ पर हम आपको विश करना चाहते हैं करेजी इन व्हाट एवर यू डूइंग राइट नाउ. चलिए 9:50 हुए हैं, अब जुड़े हैं आरएमटी रेडियो मस्ती के साथ.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे हैं. आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपके साथ अशिता जी. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार मनीष. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले स्थानीय खबरें. फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के सीईओ डिज़िरे वेंकटेश्वरम आज अगले महीने 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी. और तलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय का रहा है. एफएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी. साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा भी की है. 16 मई को शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा. ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिग्स दोनों जगहों पर आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है. बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया है. वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलहोस कैट्रोबोन में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच के लिए पहुंचे. सप्ताह के दिनों में ये अभियान शाम 4 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक चलता है लेकिन शनिवार को केंद्रों पर सबसे अधिक भीड़ देखी जाती है. जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं उनके पास आज दोपहर 1 बजे तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का समय है. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित करना और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है. आपको हम याद दिला देती हैं कि हाल के दिनों में बंदरगाह पर सुरक्षा अभ्यास, मॉरिशस पुलिस और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी और अब ये प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर अमरीका मॉरिशस के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है. अमरीकी पक्ष के अनुसार ये सहयोग एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्लादिमीर पुतिन ने उन्नत तकनीकों में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घोषणा की है. अस्ताना में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस ने विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक समुदायों को साथ लाकर एक AI संगठन गठबंधन स्थापित करने में मदद की है. उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन किया जाए ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग और शोध को और मजबूत किया जा सके. तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचार की ओर.

0: Chauxson Chassonnier, Gueule de Loup, Verdun, Saint-Pierre-Mé, Gueule de Loup, Verdun, Saint-Pierre-Mé, un hôtel sale qui, 69 years old qui, Shrimati Tilotama Dhanwa, Shrimati Tilotama Dhanwa, पैदाशी नाम फेक नाथ और जिन्हें सुरेखा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कृष्ण कुमार शर्मा धनवा के घर सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौ सैंपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूरिया 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
3: सेकेंड आवर 10:15 हुए हैं। यहाँ पर दिल की खता भी है क्या? वैसे आपके दिल की कोई खता है नहीं है। एंड आई गॉट हियर सम रियली नाइस ट्रैक आपके दिल को सहलाने के लिए और कि आपके दिल को खुश करने के लिए। जी हाँ, आई गॉट हियर सम रियली नाइस ट्रैक वेटिंग फॉर यू। अभी के लिए एंजॉय कीजिएगा ये दिल दीवाना वरुण कावड़ा की आवाज में। दिस इज द रेप्रीज वर्जन ऑफ द ओरिजिनल वन। एंड आई गॉट हियर सम रियली रियली वंडरफुल मैसेजेस वेटिंग फॉर यू 549 and 1294 for awesome day goes out to each and everybody tuning to us right now.

भी जुड़ी है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो फॉर यू मैसेजेस। चलो नाचो गाओ, एंजॉय करो, यही हमारी प्लेलिस्ट है, और ताकि आप खुश रहो। एंड यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। एंड लेट मी डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, इट फील सो नाइस व्हेन यू वेक अप एंड यू कनेक्टेड टू द बेस्ट रेडियो स्टेशन, लवली सॉन्ग्स मेड माय डे। ओके जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, लव सॉन्ग फॉर माय वन एंड ओनली जान, मिस्टर एस, कौन है वो मिस्ट्री पर्सन, फ्रॉम योर लवली फैन आशा जी। ओके जी, यहाँ पर हेलो मनीष माँ, किचन में हूँ, बहुत काम है माँ। आपके गाने मस्त फ्यूअल का काम कर रहे हैं, ऑसम, आप अच्छा फील करवा रहे हम आपको। तो यहाँ पर रोशनी ऑफ कैटरबॉर्न ने मैसेज भेजा है, नमस्ते, आज मेरी मम्मी आशा और पापा शैलन हरिलाल का वेडिंग एनिवर्सरी है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, एक गाना उनके लिए मांगना चाहती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वंदना, उनकी बेटी संजना है, और ग्रैंड डॉटर प्रियांशी, ग्रैंड सॉन अयांश, एंड सॉन इन लॉ है निकेत। सो हैप्पी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हेलो डियर, हैप्पी मदर्स डे गोज़ आउट टू होल टीम। नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम मॉम रेनू, सिस्टर मेली, अंजू आंटी, सुनीता, मिंता एंड निर्मला मानव फ्रॉम नोवेल फ्रांस। हाय, आई एम वीना गनवा फ्रॉम पिचित रथायत। टुडे इज माई 22nd वेडिंग एनिवर्सरी। Happy anniversary goes out to you, Veena and Sudesh. वैसे यहाँ पर कंप्लीट मैसेज नहीं आया, तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए फुल मैसेज, हम पढ़ने की कोशिश दोबारा करेंगे आपके लिए। हेलो जी गुरु जी, तुपासी सहल सहलील एक्चुअली, उनको विश करना चाहते हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बहन जी भारती, बहन जी तीशमा, त्रिशा,

0: क्वेश्चन मानसी एंड फ्रॉम ऑल मोका फ्लक्सरोज, ये भी इनकम्प्लीट मैसेज आया है, तो बात नहीं अब इसे भेजिएगा यहाँ पर. कीप ऑन डेडिकेटिंग योर मैसेजेस हियर टू योर लव्ड वंस ऑन 549 and 1294 पर. मिस न करो कि हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं मदर्स डे विद RMT रेडियो. मस्ती, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड.
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: North, South,
1: 103.5,
0: East, West,
1: 96.4,
0: Center,
1: 99.4.
2: RM2,
1: Radio Musty,
2: the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musty,
2: feel the musty.
3: Time check, din ke 11 baje hain. फिर से सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अशिता जी. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. कल मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि पर्यावरण मंत्रालय मई 2026 की शुरुआत में तमाम सार्वजनिक समुद्र तट पर देखे गए तटीय कटाव के संबंध में फ्रांस की विशेषज्ञ संस्था ब्यूरो दे रिसर्च जियोलॉजिक ए मिनियर से टेक्निक की सहायता प्राप्त करेगा. ये सहयोग फ्रांसीसी विकास एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा. PAGM को तटीय कटाव के कारणों की पहचान करने, स्थानीय हितधारकों से परामर्श करने तथा उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. संस्था से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे दीर्घकालिक समाधान लागू होने तक लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त अस्थायी उपाय सुझाएं. गौरतलब है कि तमागे निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता पेयसी यिपतोंग ने पहले ही तटीय कटाव के खतरों को लेकर चेतावनी दी थी. अप्रैल में समुद्र तट के गंभीर रूप से प्रभावित होने पर उन्होंने अपने खर्चे पर एक खुदाई मशीन की सहायता से बचाव कार्य शुरू किया था, जिसे बाद में पुलिस ने रोक दिया. इस बीच मंत्रिपरिषद ने यह भी संज्ञा लिया कि आवास एवं भूमि मंत्रालय बालाकलावा पोंदुपीमो में स्थित 1 बीघा 90 पेयर्श क्षेत्रफल वाले भूखंड को पुनः सार्वजनिक समुद्र तट के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रहा है. ये भूमि वर्ष 2008 में सार्वजनिक समुद्र तट की श्रेणी से बाहर कर दी गई थी. इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वर्तमान जल संकट की स्थिति को देखते हुए लोकल गवर्नमेंट मंत्रालय द्वारा वाहन धुलाई यानी कि कौवाश की गतिविधियों को नियमित करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों की भी जानकारी ली. इन कदमों का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है. मॉरिशस और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा. चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंच रही हैं. रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान इस शनिवार को समाप्त होगा. इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है. प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है. गौरतलब है कि रोड्रिग्स में 33,607 मतदाता पंजीकृत हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं हम इबोला वायरस के बारे में. केन्या ने अमेरिका को इबोला वायरस के संपर्क में आए अमेरिकी नागरिकों के लिए क्वारंटीन सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जबकि WHO के प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसुस कोंगो में फैल रहे प्रकोप के केंद्र का दौरा कर रही हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैले बुडिंग्यूयू स्ट्रेन के एबोला संक्रमण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रही सुन पाएंगे चंद शोक समाचार.

0: Chanson de Jasonier.
1: Quatre beaux roads, mon accueil, mais quatre beaux mon accueil, mais 56 साल के 56 years old के श्री अजय बिखारी जिन्हें सुदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके घर बोनाकवे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कॉलोनी के शमशान भूमि

0: की जा जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. रैर और मोसेलमा सैंत आंद्रे में, रैर और मोसेलमा सैंत आंद्रे में 76 साल के 76 years old के श्री नित्यानंद राय बस्कित, श्री नित्यानंद राय बस्कित जिन्हें पीलू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर मोसेलमा सैंत आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमनी स्त्रियोलिक शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 4 PM. रॉय रोड पुत्र दो हमलेट में 60 साल के 60 years old के श्री विजय आनंद सुरनाही, श्री विजय आनंद सुहाती, क्षमा कीजिए, श्री विजय आनंद सुहाती जिन्हें पुलो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती संध्या सुहाती के घर पुत्र दो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 2 PM. Roussette Road Petit Verger Saint-Pierre-Mer, Roussette Road Petit Verger Saint-Pierre-Mer, 86 साल की 86 years old की श्रीमती भगमनिया लोफा, श्रीमती भगमनिया लोफा जिन्हें देवरानी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे मनोज गोवर्धन के घर, मनोज गोवर्धन के घर पृथ्वी विजय सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैपिया की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुडे एट 1 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: RM2 Radio Musti.

0: स्वागत है आप सभी का इन द लास्ट आवर ऑफ योर बॉली ब्रंच। 11:11 हुए हैं एंड यहाँ पर हम सोच ही रहे थे यार विदिता से हम बात कब करेंगे। यहाँ पर वो स्टूडियो से निकलकर बाहर गई है, कहाँ पहुंची है उनसे डायरेक्टली बात करती है फ्लैग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो जी।
1: हेलो मनीषमा, तेरा भी मन कर रहा होगा कि कब हम स्टूडियो से बाहर निकले। कोई बात नहीं, वहीं पे बैठे बैठे हम बाहर ले आते हैं।
0: Yes.
1: Good morning to everyone. Welcome to Radio Masti. अब आप सोच रहे हैं कि बाहर निकल के ये लड़की कहाँ घूम रही है, तो भाई मैं आ गई हूँ at Boule Rouge। जी हाँ, Boule Rouge, जहाँ पर एक नया ड्रीम प्राइस सुपर मार्केट खुला है और यहाँ पर आपके लिए जो प्रोमोज रखे गए हैं, आपके लिए कौन से सरप्राइजेस रखे गए हैं, हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। यहाँ पर मौसम में आपको बता दूं न गर्मी और ना ही सर्दी, मौसम एकदम जबरदस्त है। सैटरडे का दिन है, आप लोग सोच रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे क्या करें। अरे फैमिली के साथ बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा शॉपिंग कर लो। और ये जो सुपरमार्केट के बारे में आपको बात कर रही हूँ, भाई कमाल है, कमाल है। यहाँ पर आपके पास इतनी सारी जगह है, आपकी गाड़ी को पार्क करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना नया नया ब्यूटीफुल सा है, यहाँ पर जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए रखे गए हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ पर आपको मौका मिलेगा चौका मारने का। यस जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी Boule Rouge में ये नया ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट खुला हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर आने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सो मनीषमा अपना लिस्ट तैयार रखना, मैं धीरे धीरे करके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जिस पर प्रोमो लगे हैं उसके नाम मैं बताती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि यहाँ पर आपके लिए कौन से सरप्राइजेज रखे गए हैं। तो चलिए Boule Rouge फ्लक और यहां पर हमारे साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारी पूरी टीम है। सो वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू ड्रीम प्राइस। अगर आप लोग यहां आसपास घूम रहे हैं, सैटरडे का दिन है भाई, अगर आपका मन कर रहा है शॉपिंग के लिए तो आ जाइए, आ जाइए हमसे भी मिल लीजिए, क्योंकि हमारी जो रेडियो मस्ती की टीम है वो पहुंच गई है यहां पर आपको एंटरटेन करने के लिए। आइए आइए, थोड़ा डांस वांस करेंगे और कुछ बातें भी हो जाए, कुछ हमारी कुछ आपकी। तो मनीषमा गेट रेडी, थोड़ी देर में कुछ और डिटेल्स के साथ मैं आ रही हूं और हम हैं यहां पर आपके साथ 2 बजे तक, 3 घंटे आपके साथ, आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
2: RM2 रेडियो मस्ती,
3: हिट म्यूजिक ओनली।
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आपको ये तो बता दिया कि हम आ गए हैं बुले रूज। जी हाँ, बुले रूज। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक नया ड्रीम प्राइस खुला है यहाँ पर, और आपके लिए हम लेकर आए हैं सरप्राइज। नाउ यू हैव टू टेल मी कि अरे भाई, ये सरप्राइज क्या है, पूछो मुझसे। पता है आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो चलिए, यहाँ पर ईगल ब्रांड ने लॉन्च किया है अपना एक नया ड्राई फ्रूट का जो ब्रांड है, ईगल ब्रांड ने वो लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे आप के लिए हम यहाँ लेकर आए हैं।

0: एंड गेस व्हाट, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको मौका मिलेगा यहाँ पर आकर जो ड्राई फ्रूट्स है इसको टेस्ट करने का. देखो यहाँ पर ताली बज रही है क्योंकि यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रखे गए हैं और लोग यहाँ पर आके धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. क्या है ना कि यहाँ पर अलग अलग जो फ्रूट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है उसको टेस्ट करना पड़ेगा. जी हाँ, टेस्ट करना पड़ेगा. और अगर आपने टेस्ट करके बता दिया कि ये कौन सा फ्रूट है तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा जीतने का कई सारे गुडी बैग्स. जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जीत सकते हैं, यानी कि ईगल ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर बिरयानी का स्पाइस है, यहाँ पर आपके लिए अगर अगर है, यहाँ पर आपके लिए मसाले हैं, वी हैव आई थिंक वी हैव पेपर पाउडर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ में यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा बास्केट भी है. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकता है अगर आप आते हैं और इन फ्रूट्स को अगर आप लोग टेस्ट करके बताते हैं कि एक्चुअली ये कौन सा फ्रूट है. तो यहाँ पर बहुत सारे लेडीज हैं. ओके, चलिए इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं. हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: पूनम.
0: सो पूनम, यू आर हियर टू टेस्ट द ड्राई फ्रूट्स, राइट?
1: यस.
0: आपको क्या लगा, आपको पता चल रहा है कि ये क्या है?
1: आई हैव ऑलरेडी गेस्ड टू.
0: ओके, यू गेस्ड टू फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स. अब मैं अगर माइक पे यहाँ पे बता दूंगी, सब रेडियो सुन रहे हैं, सबको पता चल जाएगा. सो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इन्होंने अभी दो गेस कर लिया है और ये तीसरा गेस करी है. तो मैं नितेश से पूछना चाहूंगी कि आप प्लीज इनके कान में बोल दीजिए कि इन्होंने जो जवाब दिया वो सही है या गलत है. चलो वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं और हम जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनसे भी कहेंगे बड़ा मजा आने वाला है. आप लोग यहाँ पर आएंगे शॉपिंग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ईगल ब्रांड का जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ओ माय गॉड, इनकी पैकेजिंग अगर आप देखोगे ना तो मन करता है अभी खा लो. हाँ, विदिता कंट्रोल, विदिता कंट्रोल. ओके, तो यहाँ पर गेस करने की पूरी कोशिश कर रही है ये लेडी जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है टेस्ट कर रही है. तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पर, आके आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये कौन सा फ्रूट है. अगर आपको पता, पहले स्मेल करिए, बड़ी होशियार है ये. पहले लिया हाथ में, स्मेल किया, फिर उनको बोला कि ये क्या है, लेकिन एक मिस कर गई, तीन जीत गई. अब देखते हैं क्या होता है. सो यहाँ पर बहुत मस्ती हो रही है यहाँ पर. ये जो मैडम जी है, यू कैन कम एंड टेस्ट द ड्राई फ्रूट्स एंड यू कैन विन यहाँ पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स. तो आपको मैं कहूँगी आ जाइए. हम लोग हैं एट ड्रीम प्राइस, जो नया वाला ड्रीम प्राइस है बुले रूज में, बिल्कुल वहीं यहाँ जैसे ही आप एंट्री लेते हैं सुपरमार्केट के, यहीं पर राइट साइड में आप देखेंगे कि ईगल ब्रांड की जो टीम है यहाँ पर आपके साथ है और आपके लिए लेकर आए हैं ये सारे गुडीज. तो अगर आपको भी जीतना है, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. हम हैं यहाँ पर 2 बजे तक. लेडी ने टेस्ट किया, 3 मिल गया, 1 बेचारी ने मिस कर दिया, 1 मिस कर दिया, लेकिन आपको 4 गेस करने थे. ठीक है, तो ऐसा करते हैं अभी हम कोशिश करते हैं और बाकी लोगों के साथ. तो ये बहुत ही फनी गेम है, अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ आइएगा. यहाँ पर फैमिली के साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा. एक तो आपको ऐसे में फ्री में टेस्ट करने को मिल रहा है, ऊपर से अगर आपने बता दिया ऊपर से आपको गिफ्ट मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए. सैटरडे का दिन है, मौसम सुहाना है. चलिए जी, आ जाइए बुले रूज ड्रीम प्राइस, एकदम सुपरमार्केट के एंट्री में मिलेंगे हम आपके साथ, आपके लिए लेकर ये ईगल ब्रांड के नए ड्राई फ्रूट्स. हियर वी गो, सम मोर म्यूजिक आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती.
2: RM2 रेडियो मस्ती. Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5 p.m. to 10 p.m. So don't miss out!
3: Fresh Flora Madini Florist wishes you a happy Mother's Day.
2: RM2 Radio.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: Welcome to Radio Musty. Welcome. जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टूडियो में नहीं है, आज हम स्टूडियो के बाहर. और स्टूडियो के बाहर हम कहाँ घूम रहे हैं? हम बुलेहूज में घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. मजा आ रहा है क्योंकि मौसम कमाल का है. यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं बाहर और बस अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट अभी तो लंच का टाइम हो रहा है. चलो कोई नहीं, अगर आप लोग घर पर हैं, आपका ब्रेकफास्ट हो गया और आप सोच रहे हैं लंच करने के लिए कहाँ जाए, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं एंड हमारे साथ मिल भी सकते हैं. बहुत सारी हमारी बातें भी हो सकती हैं. हमेशा लोग कहते हैं कि भाई आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते. लो तो आज हम आ गए हैं बुलेहूज. अगर आपको हमसे मिलना है तो आ जाइए ड्रीम प्राइस बुलेहूज, जहां पर यहां हम लेकर आए हैं आपके लिए ईगल ब्रांड. जी हाँ, ईगल ब्रांड के नए ड्राई फ्रूट्स. मैं आपको बताऊं कि मैंने टेस्ट किया हुआ है कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे. तो यहाँ पर आपको पता है जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो एक मौसम आता है जहाँ पर आपको मैंगोज मिलते हैं, फिर इसके बाद एक टाइम आता है जब आपको पाइनएप्पल्स मिलते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको मैंगोज मिलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सीज़न ख़त्म हो जाता है और हमारे पास मैंगोज खाने का जो मन होता है उसे हम मिस कर देते हैं. लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए. क्यों? क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स है और ये आपको बैंगो के सीजन ना होने पर भी मौका मिलेगा टेस्ट करने का, खाने का. तो अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची है. हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: आरुषि.
2: सो आरुषि, डिड यू टेस्ट द ड्राई फ्रूट्स?
3: यस.
2: वर यू एबल टू आइडेंटिफाई द फ्रूट्स हियर?
3: यस.
2: यू गेव द राइट आंसर्स? ओके, शी गेव द राइट आंसर्स. कैन वी क्लैप फॉर दिस लिटिल गर्ल? ओके, तो यहाँ पर उनको मिल रहा है एक ब्यूटीफुल सा बास्केट जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस हैं और उन्होंने ये चारों के चारों ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको टेस्ट करके एकदम सही जवाब दिया है. वैसे उनकी मम्मी, मेरे ख्याल से उन्होंने उनको काफ़ी हेल्प की है. राइट मम्मा, यू हेल्प हर? नो. अच्छा, उनके फेवरेट्स हैं तो वो कहती है उनके फेवरेट्स फ्रूट है. तो यहाँ पर फेवरेट फ्रूट्स अगर आपके हैं, आपको खाना अच्छा लगता है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, एक के बाद एक इनाम जीतते हुए जा रहे हैं. तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना है? यहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी है, आप क्यों जा रहे हैं? आप आकर टेस्ट करके बता दो. कम आ जाओ. व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है आपका?
3: प्रीति.
2: प्रीति जितम. मैसी बोल दो.
3: मैसी बुकू बुकू.
2: ओला ला ला ला, मेरे को खुश कर दिया. देखो मुगैम्बो खुश हुआ. अभी मैं आपको मौका देती हूँ, आप यहाँ पर टेस्ट करो. चार ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं आपके लिए और हम चाहते हैं कि आप टेस्ट करके इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी जो सेल्स गर्ल है उनको बताएं. आपका नाम क्या है बाय द वे?
3: अंजलि.
2: ओके, ये अंजलि है. अंजलि, जब यहाँ पे लोग इनाम जीतते हैं तो क्या आपको कुछ होता है? कहते नहीं, बहुत कुछ होता है. ओके, तो अंजलि के अब यहाँ पर हमारे साथ हैं. देखो यहाँ पे आपके पास चार ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू टेल हर कि वो क्या टेस्ट करें, लेकिन जोर से मत बोलना. देखो यहाँ पर एक और लेडी हैं जो टेस्ट करी हैं, कहीं उनका जवाब आपका जवाब दोनों का मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी. वैसे मिलने को तो दोनों को मिल सकता है. सो यू कैन टेस्ट द ड्राई फ्रूट एंड बताइएगा. हाँ जी, आप ओनली वन नहीं, चारों टेस्ट करने हैं. आप, मैं बोलती हूँ आप यहाँ से शुरू करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. यहाँ से शुरू करोगे सब आसान लग जाएगा. तो चार ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे टेस्ट करना है और बताना है कि ये कौन से ड्राई फ्रूट्स है. नया नया ईगल ब्रांड ने ये लॉन्च किया है और आपको मौका मिलेगा ऐसे ही फ्री में टेस्ट करने का. देखो नॉर्मली जब हम खरीदते हैं तो एक पैकेट खरीदते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप टेस्ट करोगे तो आप बोलेंगे एक पैकेट से क्या होगा, ये तो टेस्ट कर लिया, ये भी ले लेते हैं. तो आपको मौका मिलेगा टेस्ट करने का और जो आपको पसंद आए वो आप उठा के यहाँ से ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्यों नहीं. लेकिन जो सही जवाब दे दिया ना तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा ये जो खूबसूरत बास्केट है. मैं सोच रही हूँ बास्केट मैं भी लेके जाऊँ. तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा.

0: का, ये सब जीतने का। तो चलिए, हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए, चलिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ईगल ब्रांड की तरफ से ये ड्राई फ्रूट्स। एंजॉय कीजिए हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम के साथ। म्यूजिक
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio.

0: पॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तो चलिए जी, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डेकोरेटेड होम डजंट ऑलवेज रिक्वायर एक्सपेंसिव फर्नीचर, आप सहमत होंगे हमारे साथ। वैसे थोड़ा सा कलर, एक न्यूड कलर, कुछ लोग अपने घर को वाइट पेंट या फिर यू नो साबले ये सब कुछ पेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन कलर हम कर्टेंस के साथ या फिर रग्स के साथ या फिर कर्शंस के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। चूज पेस्टल कलर्स, जैसे कि बेबी पिंक इज वेरी वेरी ट्रेंडी ऑल्सो। Yeah, just mix it up with some warm light, जो हम कहते हैं ना कि येल्लो लाइट, लेकिन वाइट वार्म लाइट, जो सारे आपके घर में जो लाइट्स होती है आप उसको, आपके स्पॉट लाइट को आप वार्म बना सकते हैं इंस्टेंटली। ये जो क्लासी वाला लुक होता है, ये जो आराम वाला लुक होता है मिल जाता है। ऊपर से समझो कि बारिश हो रही है बाहर, छोटा सा लैंप आपने डाल दिया, पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग को। यहाँ पर ये जो हाउस होल्ड एंड डेकोरेशन टिप है काफ़ी आसान है, बस कशंस को यू नो देयर नाउडीज दोज फ्लफी कशंस जिसको आप पकड़ के अपने साथ ही रख सकते हो। एंजॉय कीजिएगा अपने मौसम को, अपने मॉर्निंग को, अपने आफ्टरनून को, और एक टीवी एंड ये जो सारा कुछ है विद अ प्लांट, अ लैम्प या फिर वार्म स्पॉटलाइट या फिर बेबी पिंक कलर कशंस एंड द ड्रेप्स जो लह के होते हैं, दिस मटेरियल वेरी वेरी नाइस अगर आप ऑफर करना चाहते हैं अ न्यू थिंग फॉर योर हाउस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: Household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
4: टेस्ट करना है, यू टेस्ट इट एंड देन यू लेट देम नो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ईगल ब्रांड का एक बहुत

0: बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर एक मग भी है, ये गरम चाय गरम कॉफी, वैसे भी सर्दी हो रही है ना, तो चलिए यहाँ पर जो लेडी है चलिए इनसे पूछते हैं इनका नाम। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम, नाम नाम बताओ।
1: हाय, माय नेम इज वर्षा।
0: वर्षा, बरस पड़ो, बताओ कौन सा जवाब है आपके पास। आपने सारे के सारे सही जवाब दिए, यू डिड इट, ओके। नहीं बताना, बता मुझे कान में बताना बाद में, यानी कि इन्होंने सही जवाब दिया। नहीं अभी नहीं दिया, टेस्ट कर लिया सारा का सारा, ओके सिर्फ ये वाला टेस्ट किया, ओके ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, जो लास्ट वाला ग्रीन वाला है इसको, इसमें तो मैं भी फंस गई थी, मुझे पता नहीं था, तो इसीलिए कहते हैं बच्चों फ्रूट्स खाओ, फ्रूट खाना ज़रूरी होता है, और अगर फ्रूट खाओगे तो सेहत बनी रहेगी, और ऐसे में अगर कहीं पर ड्राई फ्रूट अगर आपको टेस्ट करने का मौका मिले तो जीत भी जाओगे। तो यहाँ पर सब मिलकर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। सो गाइस मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ईगल ब्रांड ने आपके लिए कई सारे गुडीज रखे हैं। ये बास्केट मुझे बहुत पसंद आ गया, और ये बॉक्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर टेस्ट करके, ज़्यादा कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लड़ाना, यहाँ पर बस आपको आना है, टेस्ट करना है, बताना है फ्रूट कौन सा है, फिर उसके बाद अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मौका मिलेगा यहाँ पर ये सारे गुडीज जीतने का। हम हैं एट बुलेगूज ड्रीम प्राइस, बिल्कुल सुपरमार्केट के एंट्रेंस में, आइए फ्रूट है टेस्ट करें, बताइए क्या है और फिर इनाम ले जाइए। सो वेटिंग फॉर यू। ब्यूटीफुल सा मौसम है आज का, ना सर्दी ना गर्मी, एकदम झकास मौसम है। आइए मौके का फायदा उठाइए, हमारे साथ कुछ बातें शाते कीजिए, कुछ डांस वांस कीजिए। अरे डीजे गाना तो लगा दे।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Gillespie.
1: In the mix.
2: So, ladies and gentlemen, welcome to Boulet Rouge. Yes, Boulet Rouge, Center Flag. मैं वेदिता आपके साथ हूँ. रेडियो मस्ती की टीम हमारे साथ है और यहाँ पर हम आए हैं मिलने ईगल ब्रांड की टीम के साथ, जहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है. सच कहूँ बड़ा मजा आ रहा है. अब आप सोच रहे हैं मजा कैसे आ रहा है, कोई फ्रूट टेस्ट करके मजा कैसे आता है. अरे यही तो मजे की बात है कि यहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स रखे गए हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस रखे गए हैं और जब लोगों को खिला रहे हैं वो सारे फ्रूट्स जिसे खाने की आपको आदत है, आप इन फ्रूट्स को जानते हैं, आपने ये फ्रूट खाए हुए हैं, फिर भी आपको शायद पता नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन मजा तो आ रहा है खाने में, है ना. चलो, ड्राई फ्रूट्स ये है ईगल ब्रांड की तरफ से और यहां पर मुझे नितेश बता रहे थे 18 वराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वो भी आपको ड्राई फ्रूट्स में मिल रहा है. यानी कि कभी भी जब भी आपको मन करे, ऑफ सीजन में भी आपको मैंगो टेस्ट करने का मौका मिलेगा, कीवी खा सकते हैं. यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक और फ्रूट है कुमक्वात, ओके ये भी है. तो ये सारे फ्रूट्स हैं जो आपको खाने का मौका भी मिल रहा है, यहाँ पे टेस्ट करने का मौका मिल रहा है. वैसे हम लोग अनानास खाना पसंद करते हैं, एप्पल खाना पसंद करते हैं, हम लोग कीवी खाना पसंद करते हैं, मैंगोज तो हैं ही, स्ट्रॉबेरीज हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं. अभी आपको मुझे ये बताना है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ कि वो कौन सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आपको मौका मिलेगा यहाँ खाने का भी, टेस्ट करने का भी, और जो इनके पास अवेलेबल है. सो वी गॉट ब्लूबेरी, वी गॉट कोकोनट स्लाइसेस, क्रिस्टलाइज्ड जिंजर स्लाइसेस, क्रिस्टलाइज्ड कुमक्वात, ड्राई एप्पल चंक्स लो शुगर के साथ, ड्राइड ब्लैक चेरी, ड्राइड कांटालूप स्लाइसेस, ड्राइड चेरी, ड्राइड मैंगो स्लाइसेस, ड्राइड पपाया डाइसेस, वी हैव ड्राइड पपाया स्लाइसेस, ड्राइड पैशन फ्रूट, ड्राइड पाइनएप्पल रिंग्स.

0: ड्राइड स्ट्रॉबेरी हाई शुगर एंड ड्राइड स्ट्रॉबेरी लो शुगर, साथ में है ग्रीन क्यूबी स्लाइसेस, ग्रीन पोमेलो स्लाइस एंड मिक्स फ्रूट डाइस। अब यहाँ पर आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको क्या पसंद है ये आपको पता है, आपका कोई फेवरेट फ्रूट। अच्छा देखो ना, मैंगो खाने का मन कर रहा है पर मैंगो का तो सीजन नहीं है, क्या करें। आप ये जो ड्राई फ्रूट है खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ऑफ सीजन भी अपने फ्रूट्स को। तो हम लोग कहाँ पे हैं एग्जैक्टली, चलो बार बार बताने का, यही तो मैं आई हूँ यहाँ पर आपको बार बार बताने के लिए कि हम लोग हैं एट बुले रूज ड्रीम प्राइस। जी हाँ, एकदम यहाँ सुपरमार्केट के एंट्री में हम हैं यहाँ पर, और इनका सरप्राइज यही है कि आज ईगल ब्रांड की टीम यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं ये फ्रूट, और फ्रूट टेस्ट करने के बाद इनको मिल रहा है मौका जीतने का कई सारे गुडीज। जी हाँ, ईगल ब्रांड अपने स्पाइसेस के लिए काफी फेमस है, स्पाइसेस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपको अगर पुट्टू बनाना है, कई सारे लोग हैं जिनको खाना पसंद आता है पुट्टू, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसका जो मिक्स जो भी होता है, आई डोंट नो उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, तो यहां पर फुल आपको उसका पैकेट मिल जाता है, बस आपको उसमें दूध या पानी मिलाकर आपको स्टीम करना होता है। और साथ ही साथ यहां पर इतनी सारी चीजें हैं, सैटरडेज में अगर आपको यहां अगर ग्रियात करने का, बारबेक्यू करने का अगर आपको स्पाइसेस चाहिए तो स्पाइसेस उनके पास हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पर बिरयानी अगर आपको बनाना है तो ईगल ब्रांड का बिरयानी भी यहाँ पर है। तो ये सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं ना, अलग अलग आपके लिए गुडीज बना के रखे गए हैं। तो एक तो आप उनका नया प्रोडक्ट यानी कि उनका जो ड्राई फ्रूट है आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के बाद अगर आपने सही रिकग्नाइज कर लिया कि भाई हाँ ये वो फ्रूट है, ये एप्पल है, ये है, ये वो है, अब अगर बता दिया तो उनको पता चल जाएगा ना, तो चलो उनको टेस्ट करने दो। तो सही जवाब अगर ये देते हैं तो इनको ये गुडी बैग मिल सकता है। हम लोग हैं आट ड्रीम प्राइस बुले रूज एकदम सुपरमार्केट के एंट्री में, आइएगा, हमारी रेडियो मस्ती की टीम है आपके साथ। चलो थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं समाचारों की ओर।
1: Welcome to Radio Musti. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2.
0: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
3: टाइम छे दिन के 12 बजे के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से शीता के साथ। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मॉरिशस और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच यानी चेक और संशोधन कराने केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान फिलहाल जारी है और जैसे कि आपको बताया गया है कि ये अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राष्ट्रीय सभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को देश के प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और रोड्रिग्स के बेलास्को स्थित नए समुद्र तट क्षेत्र का नाम अब प्लास गास नाती बेबी होगा। कार्यकारी परिषद ने ये निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिग्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिया, जिन्हें गास नाती बेबी के नाम से जाना जाता था, को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये नामकरण उनके सांस्कृतिक योगदान, संगीत के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और रोड्रिग्स की पहचान को मजबूत बनाने में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। इस पहल के माध्यम से रोड्रिग्स की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक उनके योगदान को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC के CEO दिजिरे वेंकटाचलम अगले 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम समय का रहा। FSC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रोसेट रोड पुतिव्याजी सैपिया में 86 साल की 86 साल की श्रीमती बगमोनिया लोफर, श्रीमती बगमोनिया लोफर जिन्हें देवरानी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे मनोज गोवर्धन के घर पुतिव्याजी सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेगोसों सैपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पुथोदो हमलेट में 60 साल के 60 साल के श्री विजय आनंद सुहाती जिन्हें पोलो के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती संध्या सुहाती के घर पुथोदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। गर्ल डू लू वेद सैपिया में गर्ल डू लू वेद सैपिया

0: में 69 साल की 69 years old की श्रीमती तिलोत्तमा धनवा पैदाश नाम फेकनाथ और जिन्हें सुरेखा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे श्री कृष्ण कुमार शर्मा धनवा के घर वैद्य सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टीडिया 2 PM शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: आजा मैं हूँ ड्राई फ्रूट्स तेरा जी. गाना सूट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी क्या करें. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या ईगल ब्रांड के अभी जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनमें आता है ड्राई फ्रूट्स. हेलो जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: राजेश
2: खन्ना तो नहीं?
3: नहीं, राजेश
2: ओनली राजेश. इनका नाम है ओनली राजेश. तो राजेश जी यहाँ पर आप देख रहे हैं ईगल ब्रांड की तरफ से ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं. सो यहाँ पर चार तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं और आपको चारों टेस्ट करना है. अगर आपने चारों के सही जवाब बता दिए तो ये देखिए कितने सारे गिफ्ट्स हैं, इतने सारे गिफ्ट्स हैं. तो इन सारे गिफ्ट्स में आपको हो सकता है कोई गिफ्ट मिल जाए. अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने क्या टेस्ट किया क्योंकि वरना बहुत लोग सुन लेंगे आसपास में तो उनके लिए जवाब आसान हो जाएगा. तो आप इनके कान अंजलि को बता सकते हैं और अंजलि यहाँ पर हमारी आज की जज है. जज साहिब आप बताएंगे कि क्या इन्होंने सही जवाब दिया है या नहीं. तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो गुडी बैग्स हैं इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ईगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं. यहां पर मैं देख रही हूं काफी सारी चीजें हैं भाई, भरा भरा माल है. ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें, पेपर भी हैं इसमें, स्पाइसेस भी हैं इसमें और बहुत सारी चीजें. अंदर तो बहुत सारा माल छुपा है. चलो तो ये सारी चीजें आपके हो सकते हैं अगर आप आकर इन चारे ड्राई फ्रूट्स को टेस्ट करके सही जवाब दे सकते हैं कि एक्चुअली आपने क्या खाया. तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर 18 वराइटीज जो हैं आपके लिए पेश किए जा रहे हैं और ये हैं ईगल ब्रांड की तरफ से. हम लोग बुरे गूज ड्रीम प्राइस जो नया ड्रीम प्राइस खुला है बिल्कुल उसके एंट्री में है. जैसे आप एंट्री लेते हैं हम बिल्कुल सामने में हैं. आपको आना है, टेस्ट करना है और हमें बताना है कि ये क्या है. बता दिया तो इनाम आपके नाम. चलिए इसी के साथ हमारी जो रेडियो मस्ती की टीम है आ गई है आज बाहर, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग और थोड़ा थोड़ा फ्रूट का टेस्टिंग और साथ ही साथ ग्रेट म्यूजिक. Right here on Radio Musty.
1: RM2 Radio Musty.
4: Hit music only.
0: Radio Musty feels a musty.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: मदर्स डे सेलिब्रेशंस आर ऑन एट होमा फैशन। मम्मियां डिजर्व करती है द बेस्ट और होमा फैशन के पास है परफेक्ट गिफ्ट। स्टाइलिश और ट्रेंडी ड्रेसेस, बीच वेयर, ब्लाउजेस, स्कार्व्स, पैंट्स, हैंडबैग्स, सब अमेजिंग प्राइसेस पर। और जेंटलमैन, आपके लिए भी बहुत कुछ है। कूल शॉर्ट्स, ट्रेंडी टी-शर्ट्स, हैट्स एंड मेनी मोर। टिल 31st ऑफ मे, शॉप स्मार्ट, शॉप स्टाइलिश, शॉप होमा फैशन। और कार्ड वियर्जिनी नियर मॉरिशस टेलीकॉम सेंट्रल फ्लैग।
0: RM2 Radio Mustache.

0: Busty. In the mix.
1: अजी प्यार तो हो ही जाएगा आपको एक बार जो आपने टेस्ट कर लिया हमारे ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, हम यहाँ पे ईगल ब्रांड की तरफ से लॉन्च कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स जिसके 18 वैरायटीज हैं। यस, वी हैव 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स। एंड यहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू कि आप यहाँ पे पहचानो कि ये कौन से फ्रूट्स आपके लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर एक पूरी टीम आई हुई थी एंड काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो बाहर से आए हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। सो गाइस, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो चलिए यहाँ

0: हम किसी से बात जरूर करना चाहेंगे एंड ये देख रही हूँ कि इन्होंने एक इनाम जीता है, इनसे पूछते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: हाय अनिरुद्ध, माय नेम
0: अनिरुद्ध। आप कहाँ से हो?
1: मैं इंडिया से हूँ।
0: इंडिया कहाँ से?
1: इंडिया में तमिलनाडु से हूँ।
0: तमिलनाडु, ओके। सो आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे?

0: कुछ जवाब मिला?
1: हाँ मिला, वो सिप अप मिला हमें।
0: वाओ, आप खुश है?
1: हाँ खुश है हम।
0: ओके, तो आपकी ये लड़कियों की टीम है और उन्होंने भी शायद यहाँ पे टेस्ट किया होगा। सो गर्ल्स, डिड यू टेस्ट द फ्रूट्स, द ड्राई फ्रूट्स? वर यू एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स यू वर ईटिंग? व्हाट इज इजी? नहीं, इन्होंने जवाब दिया, बट द गर्ल्स साइड, डिड यू ट्राई? तो उनको भी ट्राई करना चाहिए। आपका गिफ्ट किधर है? उन्होंने गेस नहीं किया?
1: नहीं, उन्होंने जीत नहीं है।
0: अच्छा, उन्होंने खेला लेकिन शायद लास्ट में वो जीत नहीं पाए, लेकिन आपने सारा का सारा जीत लिया।
1: मैंने तीन आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई, बट द लास्ट वन आई वाजंट एंड आई वाज वेरी क्लोज टू इट, सो दे गिव मी।
0: ओह, सो स्वीट ईगल ब्रायन, थैंक यू सो मच। ही सेड ही वाज सो क्लोज, ही कुडंट जस्ट गिव द नेम, लेकिन ही न्यू एक्चुअली ये फ्रूट कौन सा है। एंड इवन द गर्ल्स, दे न्यू द फ्रूट, दे इवन टोल्ड मी इन माय ईयर कि दिस इज द वन, या दैट्स इट, लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सा फ्रूट है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई चल रही है अच्छी से?
1: हाँ अच्छी से चल रहा है।
0: Very good. So all the best to you guys. All the best to you. Thank you so much. I just want to know who your name. What's your name?
2: Sahana.
0: Sahana and?
3: I'm Janani.
0: Janani, beautiful name, just like your smile.
4: Shayashri.
0: Shayashri. Wow, beautiful name. आप पीछे क्यों जा रहे हो? What's your name?
5: Suchit.
0: सुचित। तो चलो, ये जो है इंडिया से आए हुए हैं और उन्होंने भी सोचा कि चलो हम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड हियर यू आर, यू एक्चुअली वॉन्ट अ गिफ्ट, कंग्रेचुलेशन।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू गाइस फॉर प्लेइंग। एंड यस, आप लोग भी आकर यहाँ पर खेल सकते हैं हमारे साथ। इट्स वेरी इजी, यू कैन सी वी गॉट द फ्रूट्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूट्स रखे गए हैं। एक्सक्यूज मी, सी यहाँ पर चार तरीके के यहाँ पर फ्रूट्स हैं। सो यू हैव टू टेस्ट द फ्रूट्स एंड यू हैव टू टेल अस व्हाट आर यू ईटिंग एक्चुअली। यू कैन सी इट्स हियर बट नो वन नोटिस्ड इट। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू कम हियर एंड यू हैव टू टेस्ट द फ्रूट्स एंड यू हैव टू टेल अस कि आपने क्या खाया। एंड यू कैन एक्चुअली विन सो मैनी गिफ्ट्स, ऑल डिपेंड्स। सी, यू गॉट द स्पाइसेस, बिरयानी है, pepper hai, and you got here you have the puttu, here you have the dry fruits and you have the agar agar, yani ki is box ke andar bahut sare hain, especially the gift, the mug. Everybody is just trying their best to win this mug because it's actually winter and विंटर में लोग गरम गरम पीना पसंद करते हैं। सो दैट्स इट, ग्रीन टी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, यू कैन एन्जॉय दिस दिस कप। ओके, तो चलिए, आपके लिए सवाल तो नहीं है, बस आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, आइए। हम लोग हैं एट ड्रीम प्राइस, ड्रीम प्राइस बुले रूज में, एंड यू कैन सी द एमबीसी टीम, रेडियो मस्ती टीम ओवर देयर, और सब हमारे साथ हैं। म्यूजिक हमारे पास है और हंसनी स्टूडियो में है, उससे पहले मनीषमा थी। थैंक यू गाइस। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं अब रेसेस की ओर।
6: Radio Musti. Hit music only. Feels a musti. Radio Musti.

0: Lusty.
1: In the mix. And yes, इस समय हम हैं लाइव ऑन रेडियो मस्ती लाइव फ्रॉम बुले रूज ड्रीम प्राइस, जहां पर ईगल ब्रांड लॉन्च कर रहा है अपना ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको हर सीजन में एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हम लोग यहां पर आपके लिए बहुत एक सिंपल सा गेम लेकर आए हैं और इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर आकर जो फ्रूट्स हैं उसको टेस्ट करना है। एक्चुअली हमारे पास 4 बाउल हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। आपको आना है, एक एक करके ये चारों ड्राई फ्रूट्स आपको टेस्ट करने हैं। अगर आप हमें सही जवाब देते हैं तो आपको यहाँ पर ईगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एज गिफ्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे हैम्पर्स हैं जो आपको मिल सकता है, बहुत सारे स्पाइसेस हैं ईगल ब्रांड के, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि हर कोई आकर यहाँ पर टेस्ट करे, फिर उसके बाद अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो यहाँ पर आप जा सकते हैं गिफ्ट्स के साथ। सो इट्स वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू इज टू कम एंड टेस्ट द फ्रूट्स। सो इट्स वेरी इजी, आप लोग चाहे तो आकर, अगर आसपास में है, बहुत इजी सा गेम है। आप अगर टेस्ट करना चाहती हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करने के बाद आप 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये जो फ्रूट्स है इसको टेस्ट कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपने क्या टेस्ट किया, ये कौन से फ्रूट्स हैं। सही जवाब दिया तो यहाँ पर आपको मिल सकता है मौका जीतने का ईगल ब्रांड्स की तरफ से ये इतने सारे। हेलो, हाय हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: नौशीन।
1: Naushin, please come. Naushin, you can see we have 4 different varieties of dry fruits here. So all you have to do is to taste it one by one, but you don't give the answer very loud. You have to be very discreet. You have to tell Anjali what you actually ate. If you guess the 4 varieties of fruits, you give the right answer, you can go with any hamper here, okay? So you can see we have so many gifts here. So you can start trying, you can taste it and you give the right answer. You can help also, you can be together. Just try. This one is a little difficult, so I want you to try this one first. If you get this one, then the 3 others will be very easy for you. So please, do try it. और यहाँ पर हम सबको invite करेंगे, please आइएगा हमारे साथ यहाँ पर मस्ती करने के लिए। इसे ही कहते हैं मस्ती। देखो, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को ज़्यादा वो क्या कहते हैं थकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आना है, टेस्ट करना है, सही जवाब देना है और यहाँ पर इनाम लेके घर जाना है। तो हम लोग हैं बुले रूज, एग्जैक्टली हम लोग ड्रीम प्राइज, जो नया ड्रीम प्राइज खुला है बिल्कुल उसके एंट्रेंस में है और यहाँ पर अभी भीड़ लग गई है, वहाँ पर वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको टेस्ट करने देते हैं, बाकी आप टेस्ट कीजिए। हमारा म्यूज़िक राइट ऑन रेडियो मस्ती।
3: You're listening to RM2 or Radio Masti.

0: Musty.
1: In the mix.
2: So guys, here we are. हम आ गए हैं आपके लिए लेकर ड्राई फ्रूट्स का खजाना. टाटा. जी हाँ, 18 वैरायटीज हैं. हेलो जी, नमस्ते. आपका नाम?
3: जयश्री.
2: जयश्री जी, कैसे हैं?
3: ठीक है.
2: अभी आपने वो ड्राई फ्रूट टेस्ट किया?
3: हाँ, टेस्ट किया, लेकिन

0: मालूम नहीं पड़ता है वो कौन सा है,
1: मालूम नहीं पड़ा कौन सा, इसीलिए कहते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए।
0: बहुत खाते हैं फूड, लेकिन ये हम नहीं खाया है।
1: तो इसीलिए हर तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हमें सारे फ्रूट्स टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं ईगल ब्रांड, वो लॉन्च कर रहे हैं अपना। जयश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभ दिन।
0: बहुत धन्यवाद आपको भी,
1: थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर वो पहचान नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है। हम इसीलिए तो सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि ये आपको पूरे साल में मौका मिले खाने का, एंजॉय करने का। एंड यस, बहुत सारे लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू। हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, नमस्ते।
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक ठीक।
1: ये इससे ज्यादा वो बेटर है, आपको पता है वो फ्रूट है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। आपने टेस्ट किया?
2: अच्छा है।
1: नहीं अच्छा है, ठीक है, आपने खेला, आपको आपने पहचाना।
2: एक गलत है।
1: अगर आपने ये फ्रूट खाया होता तो आपको पता चल जाता कि एक्चुअल में ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए आपने टेस्ट किया, यू हैव टू कम एंड टेस्ट द फ्रूट्स फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे हम गिफ्ट्स लेकर आए हैं, हमारी लेडीज भी है यहाँ पर, कोशिश करिए। ये म्यूजिक ना टारान टारान टारान टारान, यहाँ पर सस्पेंस वाला म्यूजिक चल रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक फ्रूट को लेकर थोड़ा सा वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन एंड में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इनाम जीता है। बस ये एक ग्रीन वाला फ्रूट है जो सबको थोड़ा चकमा दे रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। अब सोचो ये इतना रेयर है, आपके लिए ईगल ब्रांड लेकर आया है, वो भी ड्राइड फ्रूट लेकर आया है, इससे आप कभी भी खा सकते हैं, ये आपके पास होगा ऑफ सीजन में, अभी आपको मौका मिलेगा। हाय, हेलो, हाय, नमस्ते, हाय,
3: हाय,
1: कैसे हो जी?
3: ठीक।
1: अच्छा, ड्राई फ्रूट टेस्ट कर रहे हो, पता चला क्या है? नहीं जोर से मत बोलना, बाकी लोगों को पता चल जाएगा। आपको पता चला क्या है?
3: हाँ, पता चला।
1: अंजलि ने कंफर्म कर दिया, वो जज है यहाँ पर।
3: हाँ?
1: कंफर्म कर दिया, सही जवाब दिया। एक गलत जवाब आपको आपके गिफ्ट से दूर रख सकता है, इसीलिए आराम से आओ, थोड़ा सा टाइम लो, उसको टेस्ट करो, उसको फील करो, उसको एंजॉय करो। देखो भाई, यहाँ पर हमने आपके लिए ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, अगर आपने सही जवाब नहीं भी दिया तो क्या होगा, कम से कम आपको ये फ्रूट्स जो हैं टेस्ट करने का मौका तो मिल रहा है ना, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपकी जीत नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, यू कैन टेस्ट द फ्रूट एटलीस्ट, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर अगर फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, आप क्या लेना चाहते हैं। सो ईगल ब्रांड की तरफ से 18 तरीके के यहाँ वैरायटीज़ के ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू कम एंड टेस्ट इट, एंड यू टेल मी व्हाट यू आर ईटिंग, एंड यू गो विद द गिफ्ट, राइट? इट्स सो ईजी। चलिए भाई, आइए, हम हैं एट बुले रूज ड्रीम प्राइस का जो नया सुपर मार्केट खुला है, यहाँ पर बिल्कुल सामने बगल में है, हम आपका कर रहे हैं इंतजार, तो आप भी आ जाइए। अगर आप तम्मा तम्मा करते नहीं आ सकते तो 1-2-3 करते हुए जरूर आ सकते हैं, हम हैं यहां पर आपके साथ 2 बजे तक। जी हां, 2 बजे तक आपके लिए लेकर आए हैं हम ईगल ब्रांड की तरफ से ये 18 ड्राई फ्रूट्स, जिन्हें अभी लॉन्च किया गया है, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा यहां पर एक गुडी बैग जिसमें है कमाल के स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ईगल ब्रांड की तरफ से आपको मिल सकता है।
4: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
5: रेडियो मस्ती, फील्स अ मस्ती।

0: Busty. In the mix.
1: खूबसूरत सा मौसम है और हम स्टूडियो के बाहर, जी हाँ, हम आ गए हैं आज बुले रूज ड्रीम प्राइस, जहाँ पर हमने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर ईगल ब्रांड ने लॉन्च किया है अपना 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स। सो इट्स रियली अ फन गेम जहाँ पर आपको कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप बस आकर पार्टिसिपेट करके जीत ही सकते हैं। ईगल ब्रांड की तरफ से यहाँ पर आपके लिए गुडीज रखे गए हैं, और ये गुडीज़ आपको कैसे मिलेंगे, जैसा हमने कहा कि यहाँ पर उन्होंने रखा है आपके लिए 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो इन फ्रूट्स को आपने टेस्ट करना है और बताना है कि ये कौन से फ्रूट्स है। एक्चुअली यहाँ पर 4 वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स है जिसे आपने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सा फ्रूट खाया है। अगर आपने मुझे सही फ्रूट का नाम बता दिया, लेकिन आपको चारों फ्रूट्स के नाम बताने हैं, एक नहीं चारों, अगर एक मिस कर दिया तो गिफ्ट जो है वो मिस हो जाएगा। तो आपको मुझे चारों फ्रूट्स के नाम बताने हैं, आपको बस टेस्ट करना है। हाय, क्या नाम है आपका?
2: दीपा।
1: दीपा, आप फ्रूट्स खाती हैं?
2: ओके, वी।
1: ऑल राइट, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं 4 तरीके के फ्रूट्स रखे गए हैं, 4 वैरायटीज़ हैं। तो आपको एक एक करके टेस्ट करना है, लेकिन ज़ोर से नहीं बताना। आपको इन दोनों में से या तो फिर अंजलि को या तो फिर इनको बताना है कि आप क्या खा रहे हो। फ्रूट का नाम आपको बताना है। अगर आपने सही गेस कर दिया, देखो वहाँ पे कितने सारे गिफ्ट्स हैं, राइट, यू हैव सो मेनी गिफ्ट्स है। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपके क्या क्या मिल सकता है। देखो, ये आपने देखा यहाँ पर मसाला है, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये आपको मिल सकता है। या तो फिर एक ही अटैम्प में आपने बता दिया तो ये बास्केट आपका हो सकता है या बॉक्स आपका हो सकता है। तो आप गिफ्ट आप हाँ आपको एक एक करके यहाँ पर टेस्ट करना है, फिर इनको बताना है कि आपने क्या खाया। सही जवाब दे दिया तो आपको ये जो गिफ्ट्स हैं इसमें से आपको कुछ मिल सकता है। टेस्ट कीजिए आराम से, प्यार से, आराम से, है, डोंट बी इन अ हरी। हाँ, बच्चे ने पूछा, ठीक है मम्मा, हाँ मम्मी टेस्ट करिए बेटा, रुको अभी मम्मी टेस्ट करके बताएगी, फिर आपको मिल सकता है मौका इनाम जीतने का। तो आइएगा जरूर, हम है एट ड्रीम प्राइस बुले रूज। मैंने कहा था ना आपके लिए सरप्राइज रखा गया है, तो हमारा सरप्राइज यही है कि ईगल ब्रांड की तरफ से 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। और यही नहीं, अगर आपने टेस्ट करके हमें बता दिया कि आपने कौन सा फ्रूट खाया है, तो आपको मिलेगा मौका जीतने का इनाम। इसी के साथ बढ़ेंगे अब हम समाचारों की ओर, अभी के लिए इट्स म्यूजिक टाइम।
0: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits music only.
3: Feels a Musti.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया मॉरिशस और रोडवीज दोनों जगहों पर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना रहा। बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया था। वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलहोज काठोबोर में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए, जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच के लिए पहुंचे। सप्ताह के दिनों में अभियान शाम 4 बजे से 5:30 तक चलाया गया, लेकिन शनिवार को केंद्र पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं, उनके पास आज तक की मोहलत रही। मंत्री परिषद ने नोट किया है कि पर्यावरण मंत्रालय मई 2026 की शुरुआत में तमाहे सार्वजनिक समुद्र तट पर देखे गए तटीय कटाव यानी इरोशन के संबंध में फ्रांस की विशेषज्ञ संस्था बीआरजीएम ब्यूरो दे रिसर्च जियोलॉजिक ए मिनेर से तकनीकी सहायता प्राप्त करेगी। यह सहयोग फ्रांसीसी विकास एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। बीआरजीएम को तटीय कटाव के कारणों की पहचान करने, स्थानीय हितधारकों से परामर्श करने तथा उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विदेश की खबरों में, केन्या ने अमरीका को एबोला वायरस के संपर्क में आए अमरीकी नागरिकों के लिए क्वारंटीन सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस अदानोम कोंगो में फंसे फैल रहे प्रकोप के केंद्र का दौरा कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैले इस बीमारी यानी बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के एबोला संक्रमण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए। रॉ रोड पिची त्रिविया में एवेन्यू जन के निधि वाकवा में तिरासी साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कवलमती गणपत पैदाशी नाम पलटन और जो शांति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थ ही आज दिन के 3:45 ला शपेला दौन दे मोरा उत्रोयाल पिची त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैंपी अबॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट quarter to 3 PM। नंबर 15 रामकेलावन बुदन स्ट्रीट रोजिल में, अठहत्तर साल की 78 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी फाजिदा फाउदा पैदाशी नाम भातू और जो फजीदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके मकान 15 खामकेलावन बुडन स्ट्रीट रोजिल से उठा के दफनाने के लिए सहमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। रारोड डेनिंगम थ्रियोले में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड के श्रेश्वर प्रसाद बकोरी जो हरिदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व स्कूल टीचर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज सुपहर 3 बजे उनके मकान रारो डेनिंगम थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: RM2 Radio Mastery.

surprise. Jet Black Fire. Midnight Flyer. Avec Karna Arven.

0: Real Musty.
1: In the mix.
2: ऑलराइट, तो जैसा हमने आपसे कहा था कि हम आज बाहर होंगे स्टूडियो के, और रेडियो मस्ती की जो टीम है वो पहुंच गई है, कहाँ वो पहुंच गई है, आट बुले रूज। जी हाँ, हम अभी फ्लैट में हैं, और बुले रूज कहाँ एग्जैक्टली, हम हैं आट ड्रीम प्राइस, बिल्कुल ड्रीम प्राइस के एंट्रेंस में, जहाँ पर यहाँ ईगल ब्रांड के साथ हम आए हैं। एंड ईगल ब्रांड के साथ हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किया है अपने 18 ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स जो कि आप ऑफ सीजन में भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको आना है हमारे साथ, मिलना है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आपने टेस्ट करना है। हमारे पास यहाँ पर एक गेम है जो हम शुरू से खेल रहे हैं, और इस गेम को अभी हम एंड नहीं करेंगे, इसको जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आपको देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो गिफ्ट्स है वो खत्म हो ही नहीं रहा है। यस, हमारे पास एक के बढ़कर एक यहाँ पर गिफ्ट्स हैं आपको देने के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे गुडीज़ हैं जो हम आपको दे रहे हैं। मग हैं, यहाँ पर मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको आना है। अगर आप आज सैटरडे का दिन है, घर पर हैं, आप सोच रहे हैं कि शॉपिंग करने जाना है, तो हम ड्रीम प्राइस के पास ही है, यहाँ पर आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप एंटर करते हैं, एकदम एंट्रेंस में आपको मिलेगा ईगल ब्रांड के यहाँ पर एक टीम, जो यहाँ पर आपको करवा रहे हैं टेस्ट यहाँ के ड्राई फ्रूट्स। तो आप आकर ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं एंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एंड हमें बताना है कि ये आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, चार वैरायटीज हमने यहाँ पर रखा है, आपको आना है, टेस्ट करना है, बताना है कि आपने क्या खाया है। सही जवाब अगर आपने बता दिया तो ये आपको मिल सकता है इनाम। हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: जायशा।
2: जायशा, आपने ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए?
3: Yeah.
2: आपको जवाब मिला? नो, यू मिस्ड इट। ओके, नो प्रॉब्लम, आपने खेला, आपने भी मिस कर दिया। ओके लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज आउट हियर, यहाँ पे आपको मौका दे रहे हैं हम जीतने का। डिड यू टेस्ट ड्राई फ्रूट्स? ओके, आपने टेस्ट किया, जीते या हार गए? ओह माय गॉड, तीन है, एक है, बस ये कमबख्त एक ड्राई फ्रूट है, सबको नचा रहे हैं कब से। बहुत कम लोग हैं जो इस ड्राई फ्रूट को पहचान पा रहे हैं। अगर

0: आपका लक सही है तो आप जीत सकते हैं, बस आपको बताना है कि ये क्या है। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम?
1: विमला।
0: विमला जी, विमला, अच्छा ठीक है। विमला जी, आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो चार ड्राई फ्रूट्स है, राइट? घबराओ नहीं, आपको कोई नहीं देख रहा है, बस आपको टेस्ट करना है। यू हैव टू टेस्ट ऑल द फोर वराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड यू हैव टू टेल देम कि आपने क्या खाया। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देख रहे हो कितने सारे गिफ्ट्स हैं, क्या पता आप घर पे लेकर जाए ये खूबसूरत सा बास्केट। एक अटेम्प्ट में आपको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा तो आपको ये मिल सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर गिफ्ट्स हैं आपके लिए, प्लीज कम। अच्छा, आप शॉपिंग करने के बाद आएंगी, प्लीज डू कम एंड डू कम एंड टेल मी कि आपने क्या खाया। और यहाँ पर आपको जवाब देने पर मिल सकता है ये हैम्पर्स। हैम्पर्स जीतना है, आ जाइए, सैटरडे का दिन है, मौसम सुहाना है, यहाँ पर हम हैं आर्ट ड्रीम प्राइस और ईगल ब्रांड की पूरी टीम हमारे साथ है। जी बिल्कुल, पूरी टीम हमारे साथ है और आपको यहाँ पर घाटे का कोई सौदा नहीं है मैम, यहाँ पर एक सब विन विन सिचुएशन। आके एक तो फ्री में आपको यहाँ पर फ्रूट टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, ऊपर से सही जवाब देने पर आपको मिल रहा है ये हैम्पर्स। तो प्लीज कम, हम लोग हैं एट बुले रूज, एकदम ड्रीम प्राइस के एंट्रेंस पे, लेकर आए हैं आपके लिए ये सारे गिफ्ट्स। एंजॉय करें हमारे साथ म्यूजिक भी, क्योंकि हम हैं लाइव ऑन रेडियो मस्ती।
2: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits, music only.
3: Feels a musti.

0: Radio Mesty.
1: In the mix.
2: ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कहते हैं आकर मुझे मिलने आए हैं, इतने सारे रेडियो मस्ती के फैंस हैं. थैंक यू सो मच. कहते हैं विदिता जी, हम आपसे मिलने आए थे और हम ड्राई फ्रूट्स टेस्ट करने आए हैं. थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच गाइज. यहाँ पर रेडियो मस्ती के इतने सारे फैंस, इतने सारे लोग हमसे मिलने आए. एंड यहाँ हम आपको बता रहे हैं, हमारे आने का मकसद एक है और मकसद ये है कि हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं टू द 18 varieties of dry fruits जो आपके लिए लेकर आए हैं Eagle Brand. So हमें यहाँ पर Eagle Brand की तरफ से बुलाया गया है. कहाँ बुलाया गया है? At Dream Prize जो कि है बुले रूज में. हमने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं और हमारा सरप्राइज यही है कि Eagle Brand लॉन्च कर रहा है अपना 18 varieties of dry fruits जिसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा गेम रखा गया है. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ varieties of dry fruits जिसमें चार हमने चूज किया है. जी हाँ, चार varieties of fruits हमने चूज किया.

0: किया है ईगल ब्रांड की तरफ से, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। चलिए इनसे पूछते हैं। हाय, आपका नाम?
1: हाय, हिंस्टा।
0: हिंस्टा, आप ड्राई फ्रूट्स, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स आप टेस्ट कर चुकी?
1: एक ही।
0: अभी आपने एक टेस्ट किया, अब अभी बताना नहीं है, अभी बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर चार हैं, आपने एक अभी टेस्ट किया है, आपको चारों टेस्ट करके करेक्ट आंसर बताना है। आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पर आपके सामने क्या रखा गया है, ये आप जीत सकते हो, आप ये बॉक्स भी जीत सकते हो, आप ये बास्केट भी जीत सकते हो। इसमें इतने सारे ईगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं और मेरे ख्याल से आप ईगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स तो यूज़ करती ही होंगी, तो यहाँ पर आपको गिफ्ट में मिल सकता है ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं। बस आपको टेस्ट करके बताना है कि आपने क्या खाया। तो उन्होंने एक टेस्ट किया और इन्होंने सही जवाब दे दिया। अंजलि, यहाँ इसका जवाब दें। ओके, तो अभी वो टेस्ट कर रही हैं और इनके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: बनीशा।
0: बनीशा, आपने टेस्ट कर दिया, अभी आप वेट कर रही हैं, पहले इनकी बारी, इन्होंने टेस्ट कर लिया तो वो टेस्ट। आप ड्राई फ्रूट्स, वैसे आप फ्रूट्स खाती हो?
2: खाते हैं।
0: वैसे ये ग्रीन वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें तो मैं भी फेल हो गई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फ्रूट्स खाते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है, अगर खाया होता तो पता चल जाता कि हमने क्या खाया। तो चलिए, यहाँ पर आपके पास मौका मिलेगा टेस्ट करने का, और टेस्ट कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ खोना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेस्ट इट, यू जस्ट टेस्ट इट एंड यू टेल मी कि आपने क्या खाया, एंड आपको मौका मिलेगा ये सारे। अच्छा ठीक है, आप पहले जाकर अपने अपना जो सामान है उसको आप गाड़ी में रख लो। हाय, क्या नाम है आपका? अच्छा, रोची खा रहे हो? मैंने भी खा लिया अभी अभी, गरम गरम रोची खाया, बताए।
3: हेलो,
0: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: प्रीति।
0: प्रीति, जाओ टेस्ट करो, जबकि हम अभी जो है ना बढ़ते हैं हमारे बाकी लिसनर्स की ओर। आपको मैं बता दूं कि इस समय हम लोग हैं लाइव फ्रॉम ड्रीम प्राइस, जो कि है बुले रूज में। यहाँ पर ईगल ब्रांड की तरफ से जो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स हम रखे हुए हैं, यहाँ पर आपको आकर टेस्ट करना है। चार ड्राई फ्रूट्स आपको पहचानने हैं, पहचान लिया, बताना क्या खाया, फिर उसके बाद आपको मिलेगा मौका इनाम जीतने का। तो हियर वी गो, आपको मैं पूरा मौका, अभी भीड़ हो गई है वहाँ पे, मैं हट जाती हूँ, उनको टेस्ट करने देती हूँ। सो गाइस, अगर आप भी आसपास में हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आ जाइए हमारे रेडियो मस्ती टीम के साथ भी मिल लीजिए, जैसे बाकी लोग आकर हमसे मिल रहे हैं। थोड़ी गपशप हो रही है, थोड़ी बातें हो रही है, थोड़ा हमारा सेल्फी फोटो सेशन चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ईगल ब्रांड की तरफ से जो ड्राई फ्रूट्स रखे गए हैं, एक तो आपको टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, दूसरा इनाम जीतने का भी। तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम आवर ड्रीम प्राइस बुले रूज ईगल ब्रांड के साथ, यहाँ पर जीतिए इनाम। फिलहाल अभी के लिए अगला गाना आपके नाम।
4: RM2 Radio Musti.
5: Hit music only.
6: Radio Musti feels a musti.

0: Musty.
1: In the mix.
2: रेडियो मस्ती आपके साथ, हम है लाइव. यस, हम है लाइव फ्रॉम बुले रूज ड्रीम प्राइज, जहाँ पर ईगल ब्रांड आपके लिए लेकर आया है अपना 18 ड्राई फ्रूट्स. नमस्ते जी, कैसे हैं?
3: ठीक है.
2: आपका नाम?
3: जिमी.
2: और आपने ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए?
3: हाँ, एक. ठीक है,
2: एक ही टेस्ट किया. अरे, चारों टेस्ट करके जवाब देना था, तभी तो आपको इनाम मिलेगा. तो यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है. हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम?
4: नंदिता.
2: नंदिता, आपने सारे ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए?
4: नो, ओनली वन.
2: ओके, नो, यू डोंट हैव टू टेल मी. जोर से मत बोलो, आपके दोस्त सुन लेंगे. तो इनाम आपको नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा. तो आपको टेस्ट करना है चारों. आपने एक का ट्राई किया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. यहाँ पर चार हैं, सो यू हैव टू ट्राई द थ्री अदर वराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एंड फिर देखते हैं कि आपको क्या मिलता है. ऑल राइट, हाय, क्या नाम है आपका?
5: अनिशा,
2: आपने टेस्ट कर लिया चारों के चारों?
5: 22.
2: हाँ, टेस्ट में तो बहुत अच्छा है ना? टेस्ट बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि नॉम करके खा रही है अभी और मुझे जवाब दे रही है. तो अभी आपके पास और दो ड्राई फ्रूट्स टेस्ट करने हैं. आई होप आपने सही जवाब दिया. एक है पर जो पहले सूंघ रहा है, उसको कहता है पहले मैं सूंघ लेता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कि ये क्या है, उसके बाद शायद मुझे पता चले कि मैंने क्या खाया. हेलो जी, कैसे हैं जी? व्हाट्स योर नेम?
6: मैं संजीव हूँ.
2: संजीव जी, कैसे हैं?
6: बिल्कुल ठीक.
2: ठीक भी लग रहे हैं, और ये जो आपकी स्माइल है और भी अच्छी लग रही है.
6: मैंने ये जीत लिया ना.
2: ओह माय गॉड, आपने ये जीत. देखो वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, आप पहले फोटो खिंचवा लो, ऐसे दिखा दो ना आपको क्या क्या मिला. तो आपने चारों ड्राई फ्रूट्स टेस्ट किए?
6: हाँ, मैंने चारों टेस्ट किया.
2: और आपको जवाब आसानी से मिला या थोड़ा सा आपको दिमाग के घोड़ों को कटेचक कटेचक कटेचक कराना पड़ा?
6: थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया और अच्छा जवाब दिया.
2: कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियां हों जाएगी इनके लिए. ये थैंक यू सो मच जी, संजीव जी. एंड देखिए इस बॉक्स के अंदर कितनी सारी चीजें. देखो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और ये वो ड्राई फ्रूट है जो कि थोड़ा मुश्किल है. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं रेसेस की ओर. मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में कुछ और हमारे लोगों के साथ जो हमसे मिलने आ रहे हैं. ड्रीम प्राइस, याद रखे, ये है ईगल ब्रांड का नया ड्राई फ्रूट्स, 18 वराइटीज. प्लीज कम, प्लीज टेस्ट, एंड इनाम जीत के लेके जाइए.
0: Radio Musti.
7: Hit music only.
0: Feels a Musti.

0: Angel Musty.
1: In the mix.
2: Oh my God, wow, that's so nice, so nice to be here. It's a lovely mausam. It's a beautiful weather here and जैसा मैंने कहा कि गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, बस एकदम परफेक्ट मौसम है. और यहाँ अगर आप लोग फ्लैक में हैं, आसपास में हैं, हमें गाड़ी में सुन रहे हैं, आप लोग हमें घर पे सुन रहे हैं, जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. हम हैं लाइव फ्रॉम ग्रीन प्राइस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हैं ईगल ब्रांड की पूरी टीम के साथ. ईगल ब्रांड की जो टीम है यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे गिफ्ट्स है. अब ये गिफ्ट आपको कैसे मिलेगा, वो आपको ऐसे मिल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जो 18 वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स लॉन्च किया है, वो सारे ड्राई फ्रूट्स वो लेकर आए हैं यहाँ. अब आपको पता कैसे चलेगा कि इनके पास कौन से ड्राई फ्रूट्स है, तो यहाँ आपको आना है. हम लोग ड्रीम प्राइस के एकदम एंट्री में हैं. जैसे आप एंटर करते हैं बिल्कुल राइट में हैं. इन्होंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम रखा है और वो है टेस्ट करो और जानो कि ये कौन से फ्रूट्स है. अब आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर बहुत सारे वराइटीज़ हैं इनके पास, और वराइटीज़ की बात करते हैं तो इनके पास बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं. करना क्या है, इन्होंने चार इन्होंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर चूज किए हैं आपके लिए, जो आपको आकर यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि यहाँ पर चार वैरायटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स है जो आपको आकर यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा. आपने अगर सही पहचाना तो आपको मिल सकता है इनकी ओर से, यानी ईगल ब्रांड की ओर से, ईगल ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट्स एज गिफ्ट. तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कौन है हमारे साथ. हाय, व्हाट्स योर नेम? नहीं, आप नाम बता दो, बस नाम बता दो भाई. नाम तो बता सकती है ना, आपका नाम क्या है? कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है रेडियो पे, कोई नहीं दिखता. क्या नाम है बताइए, मेरे कान में बताइए आपका नाम क्या है. अरे नहीं, इतना शर्माना. हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: बीना.
2: बीना जी, आपने टेस्ट किया?
3: नहीं, मैं अभी टेस्ट करती हूँ.
2: आप फ्रूट्स खाना पसंद करती है?
3: हाँ जी.
2: आपको पता है मैंगो का एक सीजन होता है, जितने भी अनानास का एक सीजन होता है, बहुत कम ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको पूरे साल मिलता है. अब यहाँ पर ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पूरे साल आप एंजॉय कर सकते हैं. मान लो आपको मैंगो पसंद है, तो मैंगो का तो सीज़न ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं मिलता है ना. तो यहाँ पर इसीलिए ईगल ब्रांड जो है ये ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं आपके लिए कि आप इसको पूरे साल एंजॉय कर सके. तो यहाँ पर आपने एक टेस्ट कर लिया, ठीक है, बाकी जो है आपको टेस्ट करना है. अगर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स टेस्ट किए, आपने सही नाम बताया, तो आपको यहाँ पर मिल सकता है ये गिफ्ट. यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, खूबसूरत बास्केट्स हैं यहाँ पर, बॉक्सेस हैं यहाँ पर, आपके लिए गुडीज हैं जो आप जीत सकते हैं, और यहाँ पर एक मग भी है जिसके पीछे सबकी नज़र है. अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये मग हमें मिल जाए तो काम में भी काम आ जाए. बिल्कुल गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफ़ी, आप इसको इसमें एंजॉय कर सकते हैं. और जब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो लाइक आई सेड कि फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये फ्रूट्स अनफॉर्चुनेटली हमें पूरे सीज़न मिलता नहीं है, बस उसका एक टाइम होता है. तो ये ड्राई फ्रूट्स आप कभी भी खा सकते हैं, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं. हम सबको पता है ईगल ब्रांड के जो स्पाइसेस हैं वो तो कमाल के ही है. अभी ये लेकर आए हैं आपके लिए ये ड्राई फ्रूट्स. तो भीड़ लगी हुई है, लोग टेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बताने की उन्होंने क्या खाया है. व्हाट्स योर नेम? आपका नाम?
4: रीटा.
2: रीटा, रीटा. आपका?
5: रवि.
2: रवि और रीटा आप साथ में हैं, और आप लोगों ने टेस्ट किया. ये अभी तो एक टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास अभी तीन और टेस्ट करना है. सोच लीजिए अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके पास कितने सारे गिफ्ट्स हैं जीतने का, ठीक है. और ईगल ब्रांड के स्पाइसेस के बारे में आप जानते ही हैं. अभी ये 18 वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स जो हैं आज ड्राई फ्रूट आपके लिए लेकर आए हैं. तो आपने एक टेस्ट किया, बाकी आप टेस्ट कीजिए, सही जवाब देंगे तो इनाम मिलेगा. चलिए इसी के साथ हमारे जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ईगल ब्रांड नितिश, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, लोग आकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है उनको गिफ्ट देकर, है ना. जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है. आप सोचो जिनको ये गिफ्ट मिल रहा है उनको कितनी खुशी होगी, ठीक है. तो यहाँ पर हम सबको खुश कर रहे हैं. एक्चुअली मैं तो यहाँ पर हूँ 11 बजे से, और अभी मेरा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर रहेंगे और मेरे ख्याल से आप ओके वो कहते हैं अभी ख़त्म कर रहे हैं वेदिता. बाकी जितने भी लोग हैं आसपास में हैं उनको जल्दी बुलाओ, उनको 5-10 मिनट दे रहे हैं, उनके पास मौका है इनाम जीतने का. तो चलो ठीक है, तो अभी मेरे जाने

का भी टाइम हो गया है और इनका भी. एंड ईगल ब्रांड की तरफ से थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स जो सुनकर यहाँ रेडियो हमारे पास आए, टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती जो यहाँ पर सुनकर हमारे पास आए. एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े रहे अभी. एंड अभी जाने का टाइम हो रहा है. हमारे जो डीजे हैं, डीजे डॉम जिनको मैं प्यार से बुलाती हूँ डीजे डॉम. सो डोमिनिक थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू द टेक्निकल टीम ऑफ MBC. चलिए जी, हम मनीषमा और हंसनी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ रहे रेडियो पर, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे. अब मैं विदिता आपको कहूँगी थैंक यू वंस अगेन. हाय हेलो, इतने सारे लोग मिलने आते हैं, क्या बात है. चलिए इनको भी टेस्ट करवाइए ड्राई फ्रूट्स और इनको भी मौका दीजिए इनाम जीतने का. तो मैं चलती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ईगल ब्रांड अपना 18 ड्राई फ्रूट्स, वराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स लॉन्च कर चुका है. अगर आपको ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं खरीदना है तो आप आ सकते हैं और ड्रीम प्राइस में आपको ये ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं. आपको ये ड्राई फ्रूट्स हर जगह मिल सकता है, सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है. यहाँ पर आते टेस्ट करते तो इनाम मिलता, कोई बात नहीं, आप खरीद के भी टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. सो दिस इज विदिता साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच टू द ईगल ब्रांड ग्रुप. तालियां हो जाए, जोरदार तालियां. क्या बात है, क्या बात है. चलो थैंक यू सो मच गाइज. एक है वहां पे जो ऊपर छत पे बैठी है, प्लीज डू कम. ओके, प्लीज कम एंड टेस्ट. ओके, कहती है बेबी है घर पे. ओके, बेबी को बहुत सारा प्यार. लव यू, थैंक यू, बाय. ओके जी, चलिए जी, फिर मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Time check 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पढ़ी सभी को. मेरा नमस्कार. समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं. सबसे पहले ये खबर जो कुछ समय पहले सुर्खियों में रही है. आटा और चावल ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं. इन्हें धोखाधड़ी के तरीके से निर्यात किया गया था. इस मामले को जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को सौंप दिया गया था. इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस

प्रकार की अनियमितताओं को रोकना, उनका पता लगाना और उन्हें सजा देना है। प्रस्तावित दंडों में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल की सजा शामिल है। परिवार कल्याण मंत्रालय पालक परिवारों यानी फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है और नए कानूनी मानदंडों की घोषणा कर रहा है। मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में संवाद कर सकेंगे और अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। उप प्रधानमंत्री आर्यन नवामारी ने आज सुबह फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की। मॉरिशस में बैंकिंग कानून पर एक व्यापक पुस्तक सिव पुताया की पुस्तक लॉ ऑफ बैंकिंग इन मॉरिशस का विमोचन पोर्टलिस नगर पालिका में आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया। लगभग 200 पृष्ठों की इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न केस स्टडीज के आधार पर मॉरिशस के बैंकिंग कानून की बुनियादी अवधारणों का विस्तृत विश्लेषण किया है। ये पुस्तक विशेष रूप से बैंक ऑफ मॉरिशस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है तथा बैंकिंग क्षेत्र के संचालन में उसके महत्व को समझाती है। विदेश में थाई बचाव कर्मियों के अनुसार लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 4 व्यक्तियों को 10 दिन के बाद आजाद कर दिया गया, बचा लिया गया एक दिन बाद जब एक अन्य व्यक्ति को बचाया गया। ये 7 ग्रामीणों में से हैं जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए हुए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण वहां के दूरदराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही फंस गए। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: Rairo Demi Gam Triulimi, 87 Saleki, 87 years old. Shri Ishwar Prasad Bakuri, Shri Ishwar Prasad Bakuri, jinhe log Haridat naam se jante the, aur jo pehle school mein kaam karte the, स्कूल में अध्यापक का काम करते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके मकान रॉय रोद्यामीगाम थ्रियुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन थ्रियुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल में, अठहत्तर साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमत, ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए. नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल में 78 ईयर्स ओल्ड बीबी फजीदा फाउदा पैदा शिनाम भट्टू, और जिन्हें लोग फजीदा नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा सपहर के तीन बजे इनके मकान नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल से उठाकर दफनाने के लिए सहमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे 3 PM. और रॉयल रोड द पिचित रिविया में 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कवलमती गणपत पैदाशी नाम पुल्टन, और जिन्हें लोग शांति नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे लाशापेल औदौंत दुमोरा रॉयल रोड पिचित रिविया से उठाकर मोताई सैंपिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. आपको बता दें कि वे पहले एवेन्यू जन के निधिवाक्वा की रहने वाली थी. क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2, Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a Musti.

0: plug and play.
1: RM2
2: Radio Musty.
3: हेलो जी, हेलो हमारे सभी डियर लिसनर्स, हाउ इज योर सैटरडे गोइंग? आई एम श्योर कि आज का सैटरडे तो एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त बीत रहा है. एंड हम आ गए हैं लेकर गुड म्यूजिक आपके लिए. इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले और मैं हूँ परी आपके साथ. सो विशिंग यू ऑल अ लवली आफ्टरनून. अभी तो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पर शायद बारिश भी हो रही होगी. सो डू लेट अस नो कि आपके वहाँ मौसम का क्या हाल है. अभी के लिए यहाँ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती मौसम एकदम मस्ताना, एकदम आशिकाना. आपके ये कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर दिस सैटरडे आफ्टरनून. 30th ऑफ मई है आज और दोस्तों आज कितना कुछ होने वाला है. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि आप भी सुपर एक्साइटेड होंगे. अगर आप फुटबॉल फैंस हैं तो ऑफ कोर्स अ बिग बिग डे फॉर यू. अगर आप म्यूजिक लवर्स हैं तो भी खास दिन है आपके लिए, बिकॉज जुबिन नौटियाल उनका स्पेशल कॉन्सर्ट आज रात एट SBICC पाए. सो डू नॉट मिस इट दोस्तों. चलिए अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे आपको शॉन द मास फॉर योर रेसेस एज वेल, यानी कि बहुत कुछ लेकर आए हैं और साथ में है गुड म्यूजिक.

0: 92.2
1: Radio Musti.
2: Fresh from a happy Mother's Day.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों, हमारा साथ दे रहे हैं आप. इट्स 2:39 सैटरडे आफ्टरनून और अभी इस वक्त कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस आ गए हैं ऑन 5499-1294. शिल्पा हमारा साथ दे रहे हैं आप और कहती हैं दैट एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, एंजॉयिंग द सैटरडे एंड सुपर एक्साइटेड फॉर जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट. क्या बात है, यहाँ पर जीती थी इनाम आप, सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको. चलिए मुलाकात होगी आपसे इन द कॉन्सर्ट. और वैसे तो यहाँ पर उनके गाने हम चलाते रहते हैं, सो जो लोग इसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, नॉट वरी, विल ऑलवेज एंटरटेन यू विद ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती. साथ ही यहाँ पर कहते हैं सच में आज बहुत याद आते हैं ये जो मोमेंट्स है, ये जो लम्हे हैं, हमेशा ही याद आते हैं. सही कहा आपने, एक भी दिन नहीं गया जहाँ याद ना किया हो. अच्छा गाना है और वेल मदर्स डे की शुभकामनाएं. ये सारे मैसेजेस एक साथ हम तक पहुँचा दिए हमारी प्यारी सी रोशनी जी ने. सो वेल रोशनी ही रोशनी सबकी लाइफ में लेकर आए आप, यही हम कामना करते हैं. थैंक यू सो मच रोशनी, साथ दे रही हैं आप. सो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग आपके नाम टू मेक यू हैप्पी. एंड साथ ही यहाँ पर अखिलेश हमारा साथ दे रहे हैं आप और कहते हैं आप तो काम पर हैं, वर्किंग हाफ डे आर, जस्ट सो लोड्स ऑफ करेज टू यू. चलिए आपके मूड को बनाए रखेंगे विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. एंजॉय दिस वन, परी का साथ है, प्लग एंड प्ले ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: Hit music only.
2: Radio Masti feels a Masti.
3: And after races, back to music with this beautiful track. हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. और इसके बाद लौट कर आएंगे. It's plug and play on the waves of Radio Masti. मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. पूजा से आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार. आटा और चावल ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं. इन्हें धोखाधड़ी तरीके से यानी गलत तरीके से निर्यात किया गया था. इस मामले की जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को सौंप दिया गया था. इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकना, उनका पता लगाना और उन्हें सजा देना है. इनमें 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा शामिल है. परिवार कल्याण मंत्रालय या पालक परिवारों यानी फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है और नए कानूनी मानदंडों की घोषणा कर रहा है. मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में संवाद कर सकेंगे और अपने अनुभव साझा कर सकेंगे. उप प्रधान मंत्री आर्यन नवामारी ने आज फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की. मॉरिशस में बैंकिंग कानून पर एक व्यापक पुस्तक सिव पोताया की पुस्तक लॉ ऑफ बैंकिंग इन मॉरिशस का विमोचन पोर्टिस नगर पालिका में आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया. लगभग 200 पृष्ठों में की इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न केस स्टडी के आधार पर मॉरिशस के बैंकिंग कानून की बुनियादी अवधारणों का विस्तृत विश्लेषण किया है. ये पुस्तक खासकर बैंक ऑफ मॉरिशस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र के संचालन में उसके महत्व को समझा

0: करती है। विदेश में थाई के बचाव कर्मियों के अनुसार लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे चार पुरुषों को 10 दिन बाद बचा लिया गया है। ये लोग 7 अलग अलग गांव से हैं जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण मध्य सेजोम्बुन प्रोविंस के दूरदराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही फंस गए। बचाव कर्मियों ने बुधवार को केवल 5 लोगों को जीवित पाया था। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रोद्यमिंगम थ्रियोले में 87 साल के 87 years old श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी, श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी जिन्हें लोग हरिदत्त नाम से जानते थे और जो पहले स्कूल में अध्यापक थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे यानी इस समय इनके मकान रॉयल रोद्यमिंगम थ्रियोले से उठाकर SSS लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जा रही है। क्रिमेशन टुडे 3 PM नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल में 78 साल की 78 years old बीबी फजीदा फाउदो, पैदाशी नाम भातू और जिन्हें लोग फजीदा नाम से अधिक जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज जैसे पहर के 3 बजे इनके मकान नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोजहिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 3 PM पिचिकों घोंगुब में 53 साल के 53 years old श्री दीपक चतुरी जिन्हें लोग मंगोल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के मकान पिचिकों घोंगुब से उठाकर घोंगुब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM नंबर 84 मोसेयालीन एवेन्यू कैटोबोन में 63 साल के 63 years old श्री हरिदत्त गोकुल जिन्हें लोग उमेश मौशंगातो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान नंबर 84 मोसेयालीन एवेन्यू कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM और कैथबो रोड बोनाकोई में 56 साल के 56 years old श्री अजय भिकारी, श्री अजय भिकारी जिन्हें लोग सुदेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कैथबो रोड बोनाके से उठाकर मिजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Plug and play. RM2. Radio Mercy. Plug and play.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: So, well, that was taken from the film Mere Brother Ki Dulhan. और इसी गाने के साथ वेलकम दोस्तों, आप सभी का 3:10 हो रहे हैं. सैटरडे आफ्टरनून है और अब मूड को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं सोनू निगम संजीवनी की आवाजें. फ्रॉम द फिल्म सो जाना था, ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना आप सभी के नाम. So, जुड़े हुए हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ, जहां पर लेकर आते हैं आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM. जुड़े हुए हैं हमारे संग. सो नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participant pour continuer débattre l'oban question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 30 mai pour la suite compétition débat climat entre Ben élèves collèges à partir 8h30 à soir l'eau MBCN et MBCSAT.
1: And well, friends, it's 3:24. थोड़ी देर में लेकर चलेंगे आपको शो ऑन द मास फॉर योर रेसेस. That's your plug and play on the waves of Radio Masti. उम्मीद करते हैं गानों को आप पसंद कर रहे हैं and just hoping that आपका ये सैटरडे आज काफी रिलैक्सिंग सैटरडे है. I know हमारे कुछ दोस्त आज हाफ दिन काम करते हैं, वर्किंग हाफ डे, सो नॉट टू वरी, हम हैं आपके म्यूजिकल हम सफर. अगर घर पर हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और जो भी आपके प्लान्स हैं, नॉट टू फॉरगेट, हमारे खूबसूरत गाने होंगे आपके साथ. बस हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी ही देर में लेकर चल रहे हैं आपको फॉर योर रेसेस एंड दैट्स योर रेडियो मस्ती. सो सुन रहे हैं आप प्लग एंड प्ले टिल 4 PM.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: So well friends, after races, back to music. Welcome करते हैं आपका plug and play on the waves of RM2 Radio Masti. To get you in the mood, to get you in the weekend mood, we have this song, शान की आवाज़ और बस वो beats जो आपको बिल्कुल झुमाने को मजबूर कर दे. So enjoy करिए ऐसे ही कुछ beautiful tracks जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इस weekend को खास and special बनाने. परी का साथ है and साथ रहेगा आपका और मेरा till 4 PM. Not to forget your messages, your dedications 5499-1294 पर.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: और चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मस्ती. और कहते हैं ना कि जिंदगी तो मिलती है एक बार और इसे खोलकर जीना बनता है. सो एवरी डे मेक इट स्पेशल. एंड जब पूरे हफ्ते जो आपने मेहनत की है उसका फल मिलने की बात आती है तो वही सैटरडे संडे वही तो होता है कि आपको मिलते हैं दो दिन जहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं और अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ब्यूटिफुल वीक. सो चलिए अभी के लिए तो कोशिश यही है कि गानों को सुनते सुनते आपका ये जो वीकेंड है एकदम मस्त एकदम जबरदस्त बन जाए. वैसे यहाँ पर हमारे अपाडू परिवार बता रहे हैं दैट होशनुमा में हो रही है जोरों की बारिश और साथ दे रहे हैं दारिन श्वेता रविश पेशा लवशायन अपाडू परिवार फ्रॉम होशनुमा बरसाती मौसम में एंजॉयिंग द सॉन्ग्स.

सो चलिए अगला गाना होगा आपके नाम एंड थैंक यू सो मच ट्यून इन किया है आपने रेडियो मस्ती के साथ। भगवत विदेशी कहते हैं दैट गाना हो जाए फॉर अनुषा, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज। बिल्कुल जी होगा गाना उनके नाम। साथ ही कहते हैं दैट एक प्यारा सा गाना आप जरूर चलाएं फॉर एवरीवन हू इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। चलाएंगे जरूर लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हमारे डियर लिसनर्स हैं जो इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं, इतने प्यार से अपने मैसेजेस अपने डेडिकेशन हम तक पहुंचाते हैं, कोशिश तो यही होती है कि हम उनके दिल को लुभाते रहे और एंटरटेन करते रहे। सो फॉर नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कुणाल गांजावाला अलका याग्निक की आवाजें। एक गाना ऐसा जो रहा वेरी पॉपुलर, एक गाना ऐसा जो अगर मौसम थोड़ा सा आशिकाना हो तो ये गाना एकदम दिल को छू जाता है। एंजॉय दिस वन।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: और चलिए दोस्तों, विद दिस ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय एंड नॉट टू फॉरगेट, आज का दिन 30th ऑफ मे होने वाला है ग्रैंड कॉन्सर्ट ऑफ जुबिन नौटियाल एट SBICC पायस फ्रॉम 8 PM। सभी के लिए उन्हीं की आवाज में ये खूबसूरत गाना, और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय और आपको छोड़े जा रहे हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। और थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे आपको शॉन द मास फॉर योर रेसेस एज वेल। आ गई है दिव्या स्टूडियो में लेकर गुड म्यूजिक, सो उनका साथ दीजिए एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती।

0: सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे RM2 की पूरी टीम की तरफ से। The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
2: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check, it's 4 p.m.

0: RM2 Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
3: घर में लाते चलिए, शाम के 4:04 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। पूजा से नमस्कार।
4: नमस्कार दिव्या, सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 200 युवा गेजी में एकत्र हुए आज, अवसर रहा अनेक विषयों पर बात करने का जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अवैध पदार्थ और नशीली दवाएं, सोशल मीडिया, ब्रेन ड्रेन और कला एवं संस्कृति। युवा और खेल मंत्रालय की पहल पर उन्होंने कई प्रस्ताव भी रखे जिन्हें नई नेशनल यूथ पॉलिसी के निर्माण में विचार किया जाएगा। आटा और चावल, ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं, इन्हें गलत तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले की जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन, मतलब इस मामले को जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सौंप दिया गया था। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकना है, उसका पता लगाना है और उन्हें सजा भी देना है। परिवार कल्याण मंत्रालय या फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है, नए कानूनी मापदंडों की घोषणा कर रहा है। मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में बात कर सकेंगे और अपने अनुभव भी बांट सकेंगे। उप प्रधानमंत्री आर्यन नवामारी ने आज फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की। विदेश में लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 4 पुरुषों को 10 दिन बाद बचा लिया गया है। ये लोग 7 अलग अलग गांव से थे जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए हुए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण वहां दूरदराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही ये लोग फंस गए। बचाव कर्मियों ने बुधवार को केवल 5 लोगों को जीवित निकाला था। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: Music, Dr. Gatta.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल, दिल नहीं तोड़ा करते जरा जरा सी बात पे, और आप लोगों का दिल जोड़ने आए हैं। यस, ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। शाम के 4:13 हो चुके हैं। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई देखिए, काम पे आ रही थी तो मैंने नोटिस किया है कि नोट्स से लेकर मुका तक हल्की हल्की बारिश हो रही है, और आपके यहाँ मौसम कैसा है? डू लेट अस नो ऑन 5499 1294। एंड चलिए, आपके मैसेजेस को तो वेलकम करेंगे ही, और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि इट्स द ईव ऑफ मदर्स डे, और बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं गिफ्ट्स खरीदने के लिए अपनी अपनी मम्मीज़ के लिए, अपने अपनी डैडीज के लिए। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक शॉपिंग कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती, एंड आई एम जस्ट श्योर कि आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी, और ऐसे में आपको मौका भी मिलेगा कुछ और हमारे खूबसूरत गीतों को एन्जॉय करने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। चलिए, दिव्या का साथ है अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक। यस, आपने सही सुना, 5 बजे तक हमारा और आपका साथ है, और इसके बाद ऑफ कोर्स विल बी टेकिंग यू आउट ऑफ द स्टूडियो, जहां पर हम कुछ शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। कहां पर और किसके साथ, ये बाद में बताएंगे।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: All right, that was a beautiful gana, a tribute to all the wonderful, beautiful mothers around the world. और मुझे पता है कि शायद आप लोग अभी अब्रॉड में हमारा साथ दे रहे हैं. कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन, शायद आप लोग पढ़ने गए हो या फिर आप अब्रॉड में सेटल हैं और अपनी मम्मी को आप बहुत ही याद करते हैं. शायद आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और ऐसे में हम यहाँ पर आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए. ऑफकोर्स अपनी मम्मीज को एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर भेजना और उनको बताना कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी स्पेशल है. तो चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे ज्योति जी, आप हैं शातो बनारस से. नेक्स्ट गाना गोज़ आउट फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मदर फैमिली एंड फॉर मी. थैंक यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे एज वेल टू यू. एंड हाय दिव्या, आप कहती हैं आज मेरी सासू माँ ललिता बंधु अवोष्टे का बर्थडे है, 70 years ऑलरेडी. विशेज कमिंग फ्रॉम बेटा किरण एंड विक्रम, उनकी बेटी हैं. ओहो, यहाँ पर आपका मैसेज इनकम्प्लीट आ गया है. अगर आप कंप्लीट मैसेज चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने मैसेजेस एक बार फिर से भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए ऑन 5499 1294. एंड यहाँ पर आप कहते हैं स्पोरिंग डाउन हैविली दारन श्वेता रवीश प्रीशा लवशान आप फैमिली ऑफ होशनो. थैंक यू सो मच आपके इस अपडेट के लिए. इसका मतलब है होशनो में जोरदार बारिश हो रही है, तो प्लीज़ जितने भी सारे लोग उस साइड जा रहे हैं अपना प्रिकॉशन ज़रूर लेना. नेक्स्ट गाना गुजार फॉर बदवक विदेशी जी, एनी सॉन्ग फॉर अनुषा. तो चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली आप दोनों के नाम.
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल शाम के 4:55 हो चुके हैं। कुछ ही देर में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द इंग्लिश फ्लैश न्यूज। इसके बाद ऑफ कोर्स लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर, कुछ शॉपिंग कराने जाएंगे, कहां पर और किसके साथ इसको सरप्राइज रखते हैं थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। चलिए यहां पर ये अगला गाना हम खासतौर से दरगेज करेंगे अंतिश के लिए, ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच अंतिश हमारा साथ देने के लिए। दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर स्वीट मामा और आपकी पूरी फैमिली के नाम।

0: वेल हमने प्रॉमिस किया था कि 5 बजे के बाद लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर और मिलाएंगे रिया से. यस रिया, और वहां पर कहां पे पहुंच गई है, क्यों पहुंच गई है, कौन से शॉपिंग कराने के लिए जाएगी, ये तो ऑफ कोर्स सारा डिटेल उनसे ही जानेंगे. हेलो रिया, हाउ आर यू?
1: हेलो दिव्या, एंड आई एम गुड. आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक. और बताइए वहाँ का मौसम कैसा है, और सबसे पहले अब हमारे लिसनर्स को बताइए कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं.
1: राइट, तो चलिए हम आपको बता देते हैं दैट अभी मैं रिया अपनी तकनीकी सहायकों के साथ अभी हम पहुंच गए हैं RM2 रेडियो मस्ती लिसनर्स. आपको हम बता देते हैं दैट वी आर हियर एट फैबुलस ट्रेंड जो कि पाया जाता है एट नोवेल फॉन्स. और नोवेल फॉन्स कहाँ एग्जैक्टली? इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन. वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं क्योंकि यू ऑल नो फैबुलस ट्रेंड, बट फिर भी आपको हम बता देते हैं दैट फैबुलस ट्रेंड स्पेशलाइज करता है इन लाइटिंग एंड डेकोर. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट अगर आप घर बना रही है, घर रिनोवेट कर रही है, डेकोरेशन के नए आइडियाज आप ढूंढ रहे हो, या ऐसे ही आप मदर्स डे गिफ्ट ढूंढ रहे हो, तो लेट मी टेल यू दैट आज आपको यहाँ आना पड़ेगा. फैबुलस ट्रेंड कमर्शियल में लाइटिंग और डेकोर के लिए तो लोग बहुत ही पसंद करते हैं. शैंडेलियर्स हो, वॉल लैम्प, सोलर लाइट्स, मिरर्स हो, फोटो फ्रेम्स हो, स्विचेस और बहुत बहुत कुछ और भी है यहाँ पर जो आपको मिलेगा, दैट टू इन डिस्काउंटेड प्राइस. एंड वैसे तो आपको पता ही है दैट फैबुलस ट्रेंड अक्सर 30% ऑफ लगाता ही है एंड इट गिव्स यू 30% ऑफ डिस्काउंट एज ऑलवेज, बट यहाँ पर आज नॉट ओनली 30% ऑफ. क्या है कि आज न सिर्फ मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है बट ऑल्सो इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ फैबुलस ट्रेंड. और इसी संदर्भ में यहाँ पर एक धमाकेदार प्रमोशन लेकर आया है फैबुलस ट्रेंड. ध्यान से सुनिए, अगर आज आप 500 रुपीज की शॉपिंग पे है तो आपको 500 रुपीज के प्रोडक्ट्स आज गिफ्ट मिल सकते हैं, और अगर आप 5000 की खरीदारी करते हैं तो 5000 की गिफ्ट्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर आज सिर्फ डिस्काउंट नहीं, आज डबल द डील है. आज सिर्फ शॉपिंग नहीं, आज सेलिब्रेशन है. और सच कहूँ तो अगर आप लाइटिंग डेकोर या कुछ होम इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये उन मौकों में से है जो बार बार नहीं आते. घर की सुंदरता सिर्फ दीवारों से नहीं, उसकी रोशनी से होती है. एक सुंदर सा आप शैंडेलियर ले लो, एक एलिगेंट मिरर, एक स्टाइलिश वॉल लैम्प या एक डेकोरेटिव फ्रेम पूरे घर का रूप बदल सकता है. तो इंतज़ार किस बात की, आज जाइए यहाँ पर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ. स्पेशली अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लाइट्स हैं दैट टू एट

0: Celesti.
1: राइट RM2 रेडियो मस्ती लिसनर्स, ध्यान से सुनिए कि अभी हम है एट नोवेल फ्रांस। कहाँ पर एग्जैक्टली? वी आर एग्जैक्टली ओपोजिट द पुलिस स्टेशन एट फैबुलस ट्रेंड। और चलिए यहाँ पर हम फैबुलस ट्रेंड की शान से बात करते हैं मिस्टर राज गोकुल से। हेलो, हाउ आर यू राज जी?
2: हाय, हाउ आर यू? नमस्ते सर, टू मर्सी, जे पे डोमा लोकेशन पूर expliquez ce qui se passe ici à Fabulous Trend vis-à-vis station de police de Nouvelle-France. Nous pas peut faire promotion, nous peut faire une l'occasion.
1: Exactly.
2: L'occasion, fête des mères certes, mais 10 ans l'anniversaire de Fabulous Trend, une affaire extraordinaire. Tout le monde donne 10%, 20%, 30%. Nous aussi nous peut donner, mais nous peut donner une affaire spéciale. Si toi c'était pour une valeur de 1000 roupies, quand tu finis payer, tu prends ton récit, tu joins avec nous, nous donne-toi 1000 roupies, valeur 1000 roupies, les autres produits en cadeau. Quand nous peut dire valeur, produit, c'est pas une tasse, un calendrier. Là, nous peut donne-toi un ventilateur, nous peut donne-toi air cooler, nous peut donne-toi miroir, nous peut donne-toi tapis, nous peut donne-toi table, coffee table, stool, quelque chose qui te pousse servir que toi. Worth it, ça veut dire que l'argent carrément est multiplié par D quand tu viens que toi.
1: एग्जैक्टली ये दुगुना हो रहा है। एंड यहाँ पर ये जो सभी गिफ्ट्स आइटम आपने यहाँ पर एक्सपो के लिए छोड़ा है, लेट मी टेल माय लिसनर्स दैट यहाँ पर आपको मैट मिल रहा है, बहुत बहुत ही बड़े बड़े मैट हैं एंड इट्स प्राइस एट 2900 रुपीज़। सो अगर आप खरीदारी करते हैं 2900 रुपीज़ या 3000 के लिए तो आपको ये मैट मिल सकता है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत रंगों में है। एंड वी हैव अदर गिफ्ट्स आइडियाज बहुत सारे हैं यहाँ पर। सो राजी, आप ये भी बताए कि ऊपर
2: First floor
1: में चल क्या रहा है वहां पर?
2: Alors, first floor, nous donnons l'autre type de promotion. Ben, joli cadre photo qui 1800 roupies, écoute bien, Pévin 500 roupies aussi.
1: That's huge. Bahut hi badhiya deal hai.
2: Ben, les autres cadre photo, 1300 roupies, Pévin 300 roupies aussi.
1: धमाकेदार ऑफर्स चल रहा है यहाँ पर.
2: Donc, c'est pas 5, 10, 20%, c'est moins que 50%. En moins que je peux gagner aujourd'hui, l'occasion de profiter. C'est une façon pour vous dire, Fabulous Trend, c'est sur l'anniversaire, mes cadeaux, c'est pour vous.
1: Exactly. और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आइडियाज आपको मिल जाएंगे और गिफ्ट भी मिलेंगे, तो आइए यहाँ पर अपने फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हैं। एंड यस, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट यहाँ पर आप खाली हाथ या खाली पेट नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आज इंतजाम किया गया है एंड वी हैव अ मिनी बुफे जो लगाया गया है एंड ऑल्सो ड्रिंक्स का एक सिलेक्शन है यहाँ पर। एंड आई एम श्योर कि आप आएंगे यहाँ पर तो खुश होकर ही जाएंगे, पेट पूजा करके ही जाएंगे। सो डू कम हियर। एंड जैसे कि राजी ने बताया दैट यहाँ पर आज बहुत बहुत ही धमाकेदार डील्स चल रही है, चाहे आप यहाँ पर आओ एट ग्राउंड फ्लोर या ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी, वहाँ पर भी एक स्पेशल प्रोमो है। इसके बारे में हम कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे थोड़ी देर में। अभी म्यूजिक टाइम।
0: RM2 रेडियो मस्ती। 60 millions de roupies au loto. Et les tirages, c'est dans quelques heures seulement. Le jackpot du Loto Plus est estimé à 7 millions de roupies et celui du Loto est carrément magnifique. Il est estimé à 60 millions de roupies. Mamma mia! 60 millions de façons de dire bonne fête aux mamans. 60 millions, c'est ma magique. Mama wow! Mama amazing! C'est aujourd'hui le moment ou jamais de réaliser un rêve mamma magnifique.
3: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2 Radio Mustang.

0: Angel Musty.
1: Well, as you all know कि कल Mother's Day हम celebrate करेंगे, लेकिन let me tell you that यहाँ पर already Mother's Day celebration जारी है. Let me tell you that बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, भीड़ बहुत बड़ी है. And fabulous trend में तो हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन आज special हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ना सिर्फ Mother's Day celebrate कर रहे हैं, but also 10th anniversary of fabulous trend. और हमने आपको बता दिया है that इसी संदर्भ में आज न सिर्फ 30% ऑफ एवरीथिंग, बट ऑल्सो यहाँ पर आपको मिल रहा है डबल डील. यानी कि अगर आप खरीदते हैं कुछ सामान प्रोडक्ट्स, आप फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़, तो आपको 1000 रुपीज़ की गिफ्ट्स मिल रही है. सो दुगना यहाँ पर डील आपको मिल रहा है. एंड लेट मी टेल यू अबाउट द गिफ्ट्स एज वेल. सो हमने आपको बताया कि यहाँ पर मैट्स है जो कि 2900 रुपी प्राइस्ड है, बट ऑल्सो वी हैव सम बहुत ही ब्यूटिफुल स्टूल्स. यानी कि अगर आप कुछ भी खरीदारी करते हो, 500, 100, 200, 300, कुछ भी, आपको गिफ्ट्स ज़रूर मिलेंगे. एंड यहाँ पर वी ऑल्सो हैव सम लाइट्स, सोलर लाइट्स हैं, लेड लाइट्स हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है. एंड इट्स एक्चुअली प्राइस्ड एट 1500, 1800, 700 भी है. भिन्न भिन्न वैल्यूज़ है यहाँ पर, सो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू बाई यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ना कुछ गिफ्ट. सो यस, वी हैव गॉट ब्यूटिफुल स्टूल्स, आपको बता ही दिया है, बट यहाँ पर एक वेलवेटी स्टूल भी है जो बहुत ही लग्जरियस लुक देगा आपके लिविंग रूम को. एंड ऑल्सो हम ये भी आपको बता दें दैट यहाँ पर गिफ्ट्स के तौर पर आपको मिल सकता है एयर कूलर, यहाँ पर सोलर फैन भी है, और हैंगिंग लाइट्स भी है. एंड ये जो हैंगिंग लाइट्स है, इज एक्चुअली प्राइस्ड एट 16,800 रुपीज़. सो आज अगर आप खरीदारी करते हैं

0: अबाउट 16-17,000 तो आपको ये गिफ्ट मिल सकता है. एंड ये तो चार चांद लगा ही देगा घर पर लिविंग रूम में. एंड ऑल्सो कुछ और हैंगिंग लाइट्स हैं जो आपको गिफ्ट एज गिफ्ट मिल सकते हैं. 23,000 प्राइस्ड है. सो यहाँ पर आज गिफ्ट ही गिफ्ट है. मिरर्स है जो हमारी लेडीज को मिरर्स बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर आपको हर साइज के मिरर्स मिल जाएंगे. एंड Let me also tell you about the products. जी हाँ, हमने आपको बताया that Fabulous Trends specialize करता है in lighting and decor. तो यहाँ पर lights के बारे में बात करें तो wall lamps बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही unique है. और price के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है that it's at 30% off. आज आपको मिल रहा है सब कुछ at 30% off. सो ये एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो लोग घर बना रहे हैं. क्या कि शादी सीजन चल रही है, सो आई एम श्योर कि घर की साज सज्जा के लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदना चाहेंगे, चाहे वो डेकोर हो, लाइटिंग हो, मिरर्स, ये सब कुछ हो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए. सो आ जाइए एट फैबुलस ट्रेंड एट नोवेल फॉन्स एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू लाइक. यहाँ पर मदर्स डे स्पेशल चल रहा है, 10th एनिवर्सरी स्पेशल चल रहा है. सो आइए यहाँ पर और ख़रीदारी आप खूब सारा कीजिएगा एंड गिफ्ट्स भर भर कर ले जाएगा. चलिए म्यूजिक टाइम.
1: RM2 Radio Masti.

0: के लिए एकदम तैयार हैं और हमेशा हम शादियों के सीजन के बारे में बात करते रहते हैं, आउटफिट्स, कलर कॉम्बिनेशन, लाइट मेकअप या फिर हैवी मेकअप, बालों के बारे में आज हम बात करेंगे। एक टिप्स ज़रूर आपको देना चाहते हैं, जब भी आप कोई आउटफिट डाल रहे हैं, इफ यू वांट टू रॉक योर लुक, तो आप अपने बालों को वेवी बना सकते हैं। यस, आजकल वेवी बालों का ट्रेंड चल रहा है, कुछ कुछ लोगों को छोटे छोटे कर्ल्स ज़्यादा पसंद हैं, तो लेट मी टेल यू, आजकल ज़्यादा बड़े कर्ल्स का ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पर अपने कर्ल्स को धीरे धीरे कोम के साथ आप इसको कोम करें और ये इससे क्या होता है, इट गिव्स यू द वेवी लुक, और एक हेयर स्प्रे के साथ इसको सेट करें। एंड बिलीव मी, चाहे आप इसमें साड़ी डाल रही हैं, लहंगा, गरारा, शरारा, कोई भी आउटफिट में आप इस लुक को जरूर रॉक करेंगे।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: Radio Musty.
1: In the mix. राइट फैबुलस ट्रेंड ने 10 साल का सफर तय किया है. 10 साल तक लोगों के घरों को रोशन किया है. 10 साल तक क्वालिटी और स्टाइल का भरोसा दिया है. जी हाँ, ये सब ओनली आज फैबुलस ट्रेंड. और आज वो खुशी अपने कस्टमर्स के साथ बांट रहे हैं, इसलिए आज की ऑफर्स भी बहुत ही खास है. ये सिर्फ एक ऑफर नहीं है, बट कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर. और सेलिब्रेशन तभी पूरा होगा जब आप भी इसका हिस्सा बनेंगे. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर बहुत बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. मैट्स है और बहुत ही रंग बिरंगे मैट्स है. बहुत ही स्टाइलिश मिरर्स है जो हमारी लेडीज उनको सजना संवरना पसंद है, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत मिरर्स. एंड टॉकिंग अबाउट द स्विचेस, यहाँ पर बहुत ही भिन्न भिन्न स्विचेस हैं. एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 175 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. बहुत ही स्टाइलिश मैट और कुछ तो ग्लॉसी भी है. जिनको मैट पसंद है आप मैट ले जाए, जिनको ग्लॉसी पसंद है आप ग्लॉसी खरीद सकते हैं. एंड ऑल्सो कुछ बाथरूम अमेनिटीज भी हैं यहाँ पर. एंड वन सेकेंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर आज अगर आप कुछ भी खरीदते हो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी वैल्यू के प्रोडक्ट्स आज आप खरीदते हो यहाँ, तो आपको उसी दाम के गिफ्ट्स मिलेंगे. सो 10,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स अगर आपने खरीद लिए तो आपको 10,000 रुपीज़ के गिफ्ट्स मिलेंगे आज यहाँ पर एट फैबुलस ट्रेंड. इसीलिए तो कहते हैं अगर आपको सेलिब्रेट करना है मदर्स डे तो ये स्पेशल बना ही देगा आपके लिए फैबुलस ट्रेंड. ऑल्सो सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि आज इनका 10th एनिवर्सरी है. सो आइए आप भी यहाँ पर एंड इस मौके का फायदा आप भी उठाइए एंड खरीद दीजिए जो कुछ भी आपको खरीदना है. चाहे आप मदर डे के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहते हो, लाइट्स हो, मिरर्स हो, स्टूल हो, कॉफी टेबल्स हो, फैन, सोलर फैन, एयर कूलर, लाइटिंग, हैंगिंग लाइट्स और ये जो वॉल लैम्प्स है, कुछ भी अगर आपको चाहिए आपको मिल सकता है. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट ऊपर इसके जो फर्स्ट फ्लोर में है वहाँ पर एक और डील चल रहा है. वहाँ पर ये जो बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स हैं जो हमारे लिविंग रूम को और भी खूबसूरत बना देती है, जी हाँ, हमने देखा है कि एक 7 horse पिक्चर है, एक 7 horse फ्रेम है वहाँ पर जिसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं. तो आप ही सोचिए अगर सूरज की रोशनी पड़ जाए इसमें तो आपका पूरा घर जगमगा उठेगा. सो यस, यहाँ पर आज ये 1800 रुपीज़ से घटकर 500 रुपीज़ हो गया है. सो आइए आप और गिफ्ट्स के साथ साथ आप बहुत कुछ और प्रोडक्ट्स भी लेकर जा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम दामों में. सो द RMG रेडियो मस्ती टीम एट नोवेल फ्रांस, एग्जैक्टली ऑपोजिट पुलिस स्टेशन एट फैबुलस ट्रेंड.
2: RM2 Radio Musti.
3: Hit music only.
0: Radio Musti feels a musti.

0: Celesti.
1: Well, आज ये सैटरडे बहुत ही फैबुलस है क्योंकि आज हम फैबुलस ट्रेंड पर आए हुए हैं एंड यहाँ आने वाले जो लोग हैं, कई लोग हैं कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ देखने आए थे लेकिन अंदर जाते ही इतने सुंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि शॉपिंग किए बिना निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे धमाके डील्स मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। हर कोने में है नए आइडियाज, हर सेक्शन में इंस्पिरेशन। आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए या गिफ्ट के लिए एक विजिट तो बनता है, तो चाहे आप आसपास हो या आप दूर हो, आना तो आपको ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं। मौका मिला है तो मौके पर आप चौका मारिए और आ ही जाइए एट नोवेल फॉल्स, एग्जैक्टली ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन। वी आर हियर एट फैबुलस ट्रेंड जहाँ पर हो रहा है यहाँ न सिर्फ मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन बट ऑल्सो 10th एनिवर्सरी प्रमोशन, यानी कि डबल सेलिब्रेशन, डबल धमाका। तो आइए यहाँ पर परिवार सहित, दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी आप आ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ की जो स्टाफ है बहुत ही हेल्पफुल है, आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको मिल जाएगा। सो आइए जरूर आज ओनली टुडे 30th of May 2026 at Fabulous Trend RMT Radio Musti team yahan par aapke liye hum intezar kar rahe hain with the best of music and let me also tell you that thodi der mein hum badhenge samachar bulletin ki aur but stay tuned kyunki hum wapas lekar aayenge aur bhi dhamakedar deals
2: RMT Radio Musti feel the musti.

0: शाम के 6 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। जरूरतमंद बच्चों को सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और अपनापन देने वाले परिवारों के लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने जा रही है। मदर्स डे के मौके पर SOS चिल्ड्रंस विलेज में उन महिलाओं केयरर्स को सम्मानित किया गया जो हर दिन परिवार से दूर बच्चों के जीवन में माँ का प्यार और नई उम्मीद भर रही है। देश भर से आए युवा रिजी में एक मंच पर जुटे, जहां नशे की समस्या, सोशल मीडिया का प्रभाव और कला और संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर। डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए नए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया गया। इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव। करीब 1500 मॉरिशन हाजी हज के आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद उनकी वतन वापसी कल के लिए निर्धारित है। विदेश में भारत इस समय मौसम के दो अलग अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक तरफ कई राज्यों में भारी बारिश तो दूसरी ओर भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिन परिवारों ने जरूरतमंद बच्चों को अपने घर में जगह देने के साथ उन्हें अपनापन और सुरक्षा का एहसास भी दिया है, उनके लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों की देखभाल करने वाले इन परिवारों की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने जा रहा है। साथ ही एक नया मंच भी शुरू किया जाएगा, जहां ये परिवार अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। इस बात का ऐलान डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नावामारी ने फिनिक्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के
1: वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद गायतों और कोहिन ने 7 साल पहले अपने दिल और अपने घर के दरवाजे दो बच्चों के लिए खोले। बच्चे चुने नहीं जाते, जो मिले वही। मेरी बेटी को जैसे मैंने देखा, मैं जान गई कि वही है। उसने हाथ थामा और नहीं छोड़ा। 19 महीने की थी, मैंने उसे गेंद दिया जो

0: डेढ़ साल तक उसने अपने साथ ही रखा शेल्टर में। 23 साल के वैवाहिक जीवन के बाद बच्चे से माँ शब्द सुनना एक अलग ही एहसास है। ये सोच समझकर लिया गया फैसला था, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा पारिवारिक वातावरण देना था। सुबह काम पर जाने से पहले उनको मोटरसाइकिल की सैर कराता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो वे राह तकते हैं, देर हो जाती है तो इंतजार करती हैं। इस शनिवार उन्होंने एक दिवसीय गतिविधि के दौरान अन्य फॉस्टर माता पिता के साथ अपने अनुभव बांटे। खेलों और मनोरंजन के पलों से परे ये उदारता, प्रेम और नई शुरुआत की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये पहल पालक परिवारों की भूमिका को भी महत्व देने का अवसर प्रदान करती है। अब तक 129 बच्चों को 99 फॉस्टर परिवारों में रखा जा चुका है। वो प्रधानमंत्री ने अन्य परिवारों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें विश्वास है कि बच्चे की जगह परिवार में है, आखिरी विकल्प शेल्टर है। खेद की बात है कि जहाँ बच्चों को कम समय तक रहना था, वही शेल्टर 18 साल तक उनका बसेरा बन जाता है। हम अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम माता पिता और अधिकारियों के साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे स्थिति को बदला जाए, अन्य लोगों को फॉस्टर परिवार बनने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दिन का समापन खुशी और उत्साह के माहौल में हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, कभी कभी एक साधारण सा निर्णय कई जिंदगियों को एक साथ बदल सकता है।
1: माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि प्यार, सहारा और अपनापन का एहसास होती हैं, चाहे जन्म देने वाली हो या नहीं। मदर्स डे के अवसर पर SOS चिल्ड्रंस विलेज में उन केयरर्स को सम्मानित किया गया जो हर दिन परिवार से दूर बच्चों को ममता, सुरक्षा और एक नई उम्मीद देती हैं। इन महिलाओं को उनके समर्पण और निःस्वार्थ सेवा के लिए विशेष सम्मान दिया गया। अंजू रामगुलाम ने इन बच्चों से आज मुलाकात की। देश भर से आए करीब 200 युवा रेजी में एक मंच पर जुटे। नशे की बढ़ती समस्या, सोशल मीडिया का प्रभाव, युवाओं का विदेश जाना और कला संस्कृति जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। कला एवं स्पोर्ट्स मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने अपने सुझाव भी रखे, जिन्हें नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। कविता पेशा करुणा लालू।
2: सब कुछ सुनियोजित करने के लिए एक ब्रीफिंग लगाई गई। इसके बाद लगभग 200 युवा 5 अलग अलग कक्षाओं के रूबर है, जहां मॉडरेटर उनकी प्रतीक्षा में थे। पहले से ही विषयों का चयन किया गया था। नशीली दवाओं और अवैध पदार्थों को समर्पित कक्षा में जीवंत और उत्साहपूर्ण चर्चा देखी गई।
3: कि फैजुली जली गौ सों जली जली जैन फी कुम्हा कि फैजु तीन तुम ला दो वी इन कोमांस पर एन फॉ सेंक ला का एन फॉ इन विन आजिते में आप्रे सा पानी ना पेसन कम इन विन एन टॉक्सिकोमा में किसा ला किच ला दे ये मो किसा किच पे सिपोत मो।
2: कला, संस्कृति और मनोरंजन भी युवाओं की रुचि में अहम विषय रहा। उनके विचारों और प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अपर्याप्त मंच, मार्गदर्शन की कमी।
3: इना बुगु जु मिके ना व्रे मेम सा ताला ना मेज पे ना सा लापुई ला पुका लों ज दु कु ज एजिते
4: बुगु जु मुन छपे छपे कये मा आरे मा ग्वा ये बुगु जु मुन छपे कये मा टे टे टे जाफिया बुगु जु मुन मा पा पा छपे छपे कये कये मा मे अवेक ला प्रैक्टिक अवेक ला मोटिवेशन ला डिसिप्लिन नुन प्रोग्रेसे मा मा अनकोराज ले जेन कु मा जिया कज एटे नन टैलेंट एक्सप्रीमे।
2: अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए।
5: मो शांतुस एम पे कम सी मेजर मिजाजिया मे सा लापुई मजे पु गैनिये पु मजे एन स्पोंसो सी पा एन प्रोजेक्टर पु पु प्रेंट वाली डिफिसिल।
2: एक अनिवार्य विषय सोशल मीडिया भी चर्चा के केंद्र में रहा।
3: Aujourd'hui, je vous demande à une jeune comme elle est, tant l'idée.

0: penser dans ce portable. Il peut dire 8 ans, il est capable même à 12 ans qui n'est vraiment pas bon. Et ça, il est impacté dans la vie familiale aussi. Que pour disons, nos parents, nous pénalisons le temps pour cause avec nos parents, c'est parce que qui fait, nous peut servir nos portables.
1: कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर देना
2: Nous transpose ban recommandation ban solution qui ban jeune proposer parce que c'est extrêmement important c'est ban jeune qui fait face à ban problème là donc il est important qu'il nous gagne les solutions des ban jeunes
1: युवाओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों और सिफारिशों को नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान में तैयार की जा रही है
3: मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर रखी जा रही है मॉरिशस रेवेन्यू ने डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए एक खास रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया है ये बात उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सामने आई है जिसमें मॉरिशस और सेशल की एजेंसियों को अमरीका की FBI ने वित्तीय अपराधों से निपटने की ट्रेनिंग दी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिविजन कमीशन बिल पर राष्ट्रीय सभा में बहस का दौर जारी है जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी ने सिंगापुर के संवैधानिक सुधारों का हवाला देते हुए मजबूत और आधुनिक संस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया वहीं सांसद अनाबेल साबाबादी ने कहा है कि ये आयोग योग्यता आधारित व्यवस्था और समान अवसर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है इस बीच बहस के बाद राष्ट्रसभा की कार्रवाई को अगले मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया है काविंता पेसा यचना मिश्रा
4: सांसद अनाबेल सावाबाजी का मानना है कि यदि संविधान संशोधन में योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया तो ये अधूरा रहेगा
5: Je demande au Premier ministre de venir avec un amendement pour inclure explicitement le mot méritocratie et ses principes dans la Constitution.
4: सांसद मनोज सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन को कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने होंगे
6: How do we further strengthen our democratic institutions in the Republic of Mauritius? How do we ensure even greater protection of fundamental rights.
4: रोड्रिग्स की सांसद दानित औयत मानों के अनुसार रोड्रिग्स के निवासियों से परामर्श किए बिना संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया अधूरी है
7: Une réforme constitutionnelle ne peut être significative si elle est menée uniquement du point de vue du territoire principal.
4: जूनियर मंत्री राजेंद्र नरसिंहन ने गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी अपने विचार दिए
8: दिस इज व्हाई आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज राइट टू ब्रिंग दिस प्रपोजल टू द कमीशन टू स्टडी वेदर वी शुड हैव एन इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट नॉट ओनली ए मेजॉरिटी
4: जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरे का मानना है कि केंद्रीय बैंक के भंडारों की बेहतर सुरक्षा के लिए सिंगापुर की प्रणाली एक उदाहरण है
9: द सिंगापुर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट्स द नेशंस रिजर्व्स बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज ए सेकंड की बिफोर द गवर्नमेंट कैन ड्रॉ ऑन ट्रांसफर और यूज द रिजर्व्स
4: अपने संबोधन के दौरान धनेश्वर दामरी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुए संवैधानिक संशोधन का भी उदाहरण दिया
3: तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की दिशा में हिंद महासागर इलाके के देश अब नए विकल्प तलाश रहे हैं इसी विषय पर कुल आउट सेंटर में हिंद महासागर आयोग और जापान दूतावास की पहल पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया इसमें हिंद महासागर के कई द्वीप देशों टापू देशों के प्रतिनिधियों ने और ऊर्जा सेक्टर में सहयोग और आत्मनिर्भरता के अवसरों पर बात की ऊर्जा परिवर्तन के सेक्टर में जापान के अनुभव को भी प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने रखा गया सिंचामुतु करुणा लालू
4: हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश न केवल टापू क्षेत्रों से जुड़े समान चुनौतियों का सामना करते हैं बल्कि वे फॉसिल फ्यूल पर भी निर्भर हैं युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हमारे देशों की

0: स्थिति नाजुक हो चुकी है। 47 दिनों के ईंधन भंडारण की क्षमता के साथ दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना मुश्किल है। इसलिए अब ऊर्जा ट्रांजिशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईंधन का आयात और मूल ढांचों की चुनौतियों के बावजूद भी मडागास्कर समुद्री संसाधनों के कारण टिकाऊ विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन की क्षमता रखता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव इब्राहिम नोबियाहिशो और जापान के दूतावास की कार्यवाहक प्रमुख मायु यामाओ ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जापान की विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला। गहरे सागर और जलवायु प्रकोपों को लेकर जापान खुद को ढालने में सक्षम है। रियूनियन और उसके साझेदारों के लिए समुद्र में टर्बाइन्स एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजना है। इस ऊर्जा परिवर्तन को केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है। हिंद महासागर में हम समावेशी खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, मात्र आपात सामानों के लिए, जैसे लिक्विफाइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश आयात करके आसपास इसे वितरित कर सकता है। इस संगोष्ठी के दौरान कई प्रस्तुतियां दी गई, खासकर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और अन्य समुद्री ऊर्जा प्रणालियां जो कि जापान की पहल हैं।
1: पीएमएसडी के नेता जावियलिक जुवाल ने आज पोर्ट लुइस में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकारी खर्च पर नियंत्रण अगले बजट के अहम मुद्दे होने चाहिए। उन्होंने सरकार को वाट बढ़ाने से बचने की सलाह दी।
2: राजनीतिक मंच पर लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद ज़ावियर लिगजुबाल आज प्रेस के सामने आए। पीएमएसडी के लीडर ने मौजूदा संदर्भ में सरकार की तरफ से आपात कदम उठाए जाने की इच्छा जताई। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए वीएटी की सीमा बढ़ाने की मांग की। उनके अनुसार वर्तमान 3 मिलियन रुपए की सीमा अनुचित है। पीएमएसडी के लीडर ने उन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जिन्हें भावी बजट में ध्यान में रखना चाहिए। कानून और व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस को ज्यादा साधन प्रदान करने की मांग की। उन्होंने मॉरिशस में पेंशन प्रणाली में गहरा बदलाव लाने की इच्छा जताई। ज़ावियर लिगजुवाल ने जूनियर मंत्री और गणराज्य के उपराष्ट्रपति के पदों को हटाने की भी मांग की। उन्होंने वीएटी बढ़ाने की सभी पहल के खिलाफ सरकार को आगाह किया। प्रेस के सवाल के जवाब में उन्होंने की रेट बढ़ाए जाने पर खेद जताया और कहा कि वो एमएसएम के संपर्क में नहीं रहा, न ही लेबर पार्टी और पीएमएसडी के बीच कोई नजदीकी रही है।
1: इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव करीब आ गया है। करीब 1500 मौसन हाजी हज की आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। मक्का और मदीना की सरजमीन पर दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद अब उनकी वतन वापसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कई हाजियों ने इस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रूहानी अनुभव बताया है। भारत इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक ओर पूर्व उत्तर और दक्षिण भारत में मानसून पूर्व बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। बारिश और गर्मी के इस दोहरे असर ने करोड़ों लोगों के जनजीवन

0: 6:18 हुए हैं। देश विदेश के इन खबरों के बाद अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल करुणा लालू के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवा चल रही है। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। कल सुबह तड़के ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के बाद दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। इस बीच दोपहर में पश्चिम में कुछ घरे के लिए बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:37 पर, कल सूर्योदय 6:37 पर।

6:20 हुए हैं। मौसम के इस हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। बासनरोड हाईलैंड्स में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड जनाब अब्दुल रहीम उसैनाली, जिन्हें लुच्चीबाई नाम से जानते थे, की मृत्यु का इंतकाल हो गया है। जी हाँ, अब्दुल रहीम उसैनाली का इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा आज रात आठ बजे इनके मकान बासन रोड हाईलैंड से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। ओम शांति हाईलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री सतीश गोपी, जिन्हें लोग विनंद नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे शॉबेल लेन वाक्वा के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे ओम शांति हाईलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियां किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। पिचिकॉन्ग घोंगुब में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड श्री दीपक चतुरी, जिन्हें लोग मंगल नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के मकान पिचिकॉन्ग घोंगुब से उठाकर घोंगुब किश्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 84 मोसेलिन एवेन्यू कैटरबोन में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री हरिदत्त गोकुल, जो उमेश मशोगातो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान नंबर 84 मोसेलिन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कैथरबो रोड बोनाकोई में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री अजय भिकारी, जिन्हें लोग सुदेश नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कैथरबो रोड बोनाकोई से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुमारो 11 AM। और जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में

जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 years old श्री ऋषि पीरू जिन्हें लोग अजय मार्शल के बाप नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी शर्मिला पीरू के मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है। NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: We are here at a fabulous trend, जो कि पाया जाता है exactly opposite police station Nouvelle France. यहाँ पर हो क्या रहा है एक बार फिर आपको हम बता देते हैं that celebration of Mother's Day जारी है, यानी कि 30% off everything, ना कि बस बड़ी बड़ी products में, but छोटी से छोटी products में भी आपको 30% off मिलेगा. And also आज इनकी जो है 10th anniversary है, 10 साल हो गए हैं जब से फैबुलस ट्रेंड ने जन्म लिया है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. सो इसीलिए यहाँ पर एक और धमाकेदार डील चल रहा है. एंड ये है, अगर आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी सामान, 100 रुपये, 200 रुपये, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट के प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हो तो आपको उसी अमाउंट के गिफ्ट्स मिलेंगे. और यहाँ पर गिफ्ट्स तो बहुत बहुत बहुत सारे हैं. इसकी जो लॉबी है ये गिफ्ट्स से भरे हुए है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. आप अगर आते हैं, खरीदारी करते हो, तो आपको गिफ्ट्स भर भर कर मिलेंगे. स्टूल्स हो, मैट्स हो, फैन हो, सोलो फैन, या आपको मिल सकता है एयर कूलर भी, मिरर्स, बहुत कुछ है यहाँ पर, लेड लाइट्स हैं. और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक LED फायरप्लेस लैंटर्न भी है जो आपके लिविंग रूम को और भी खूबसूरत बना देगा. सो अगर आप इस गिफ्ट्स के शौकीन हो तो यहाँ पर आइए एट फैबुलस ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर तो आप खरीदारी तो करेंगे ही, लेकिन गिफ्ट्स भी उतने ही आप लेकर जाओगी आप घर. एंड यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, कभी भी खाली हाथ या खाली पेट नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर वी हैव अ मिनी बुफे जो कि लगने वाला है थोड़ी देर में. एंड वी हैव सिलेक्शन ऑफ कॉकटेल्स जो कि आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं. तो चाहे आप फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ, अकेले आओ, पार्टनर के साथ आओ, किसी के साथ भी आप आ सकते हो. तो आइए, एंड यहाँ की जो टीम है आपका स्वागत ज़रूर करेगा. एंड यस, ऑल्सो हम इनके जो बगल वाले रूम में है, इस के अंदर जा रहे हैं. एंड वी कैन सी दैट बहुत ही खूबसूरत लाइट्स है, मिरर्स है, डेकोरेटिव फोटो फ्रेम्स है, और ये जो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स अल्फाबेट्स है ये भी है. सो अगर किसी का बर्थडे है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं और जो अल्फाबेट्स है ये आप खरीदना चाहते हैं, तो ज़रूर आप खरीद सकते हो. एंड वी कैन ऑल्सो सी अ मिरर जो कि प्राइस्ड है एट 3,800 रुपीज़, और ये है लेड मिरर. तो आप इसको अपने अनुसार बदल सकते हो. अगर आपको वार्म लाइट पसंद है तो आप वार्म लगा सकते हो, कूल लाइट पसंद हो तो कूल लगा सकते हो. एंड इट्स ब्यूटिफुल, ये एक आर्क शेप में आता है. एंड यहाँ पर न सिर्फ एक ही ऑप्शन है बट बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है. एंड जैसे कि हमने आपको बताया था दैट बाथरूम अमेनिटीज़ भी है. कई लोगों को ब्लैक अमेनिटीज़ बहुत ही पसंद है और काफ़ी ट्रेंडी है, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं. मैट कलर्स में है, ग्लॉसी कलर्स में है, बहुत ही खूबसूरत अदर कलर्स में भी अवेलेबल है. एंड यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स तो बहुत सारे हैं. फाउंटेंस हैं छोटे छोटे, अगर आप चाहे तो घर में लगा सकते हो, लिविंग रूम में लगा सकते हो, अपने बेडरूम में भी लगा सकते हो बेड साइड पर. एंड एक बहुत ही खूबसूरत लैम्प है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ एक लेडी की फॉर्म में है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, आप ज़रूर, आपको आना पड़ेगा, आकर आप देखिए, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे. सो यस, यहाँ पर आप आइए एट फैबुलस ट्रेंड. एंड यहाँ के जो प्रमोशंस लगे हुए हैं, आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पसंद आएगा. लाइट हो, डेकोर हो, मिरर्स हो, कुछ भी हो, घर की खरीदारी के लिए यहाँ पर आना फ़ायदेमंद ही रहेगा. एंड जो लोग लास्ट मिनट सोचते हैं कि कल तो मदर्स डे है, कुछ ना कुछ खरीदना है, माँ को गिफ्ट करना है या अपने बच्चों की मम्मी को गिफ्ट करना है, तो अभी तक आपने सोचा नहीं है कि हम क्या गिफ्ट करेंगे, तो आ जाइए यहाँ पर. अगर आप अपने मिसेज को, अपनी माँ को कुछ लाइट गिफ्ट कर दोगे तो वो तो खुश हो ही जाएगी, और ऊपर से अगर वो सुनेगी कि आपने ये डिस्काउंटेड प्राइस में लिया है, तो वाह जी वाह, कुछ अलग ही हो जाएगा और दुगुनी खुशी उनको मिल ही जाएगी. सो यस, आ जाइए एट फैबुलस ट्रेंड एट नोवेल फ्रांस RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर टिल 10 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: RM2
3: रेडियो मस्ती.
4: आ, आ, आ,
2: chez Lolo, Savia Marine, crevette headless, 31,40, 500 grammes, du Madagascar, 375 roupies. Savia Marine.

0: Radio Musty.
1: In the mix. Right, this is me, Riya, आपके साथ एंड अभी हम हैं at Fabulous Trend. And let me tell you that ये शाम धीरे धीरे और भी हसीन बनती जा रही है क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर टू ब्यूटिफुल लेडीज है. हेलो.
2: हेलो.
1: आपका नाम?
2: पूजा.
1: पूजा जी, बहुत ही खूबसूरत है आप और आपकी स्माइल उतनी ही खूबसूरत है. सो टेल मी, यहाँ पर आज करने क्या आई हो?
2: मैं खरीदारी करने आई हूँ.
1: ओके, फॉर योर घर की खरीदारी, न्यू होम. कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड टेल मी दैट.

0: यहाँ की जो प्राइसेस हैं आपको कैसे लगे?
1: प्राइसेस अच्छे हैं इसलिए मैं देख रही हूँ।
0: एंड आपको पता है या आज यहाँ पर क्या डील्स है?
1: 30% का ऑफ है और जिसने गिफ्ट में भी ले लेगा।
0: एग्जैक्टली 30% ऑफ आपको मिल रहा है एवरीथिंग पर। ऊपर से अगर आप कुछ भी खरीदते हो, यानी कि अगर आपने 500 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदिए तो आपको 500 रुपए के गिफ्ट्स ही मिल रहे हैं। सो ये डबल डील हो गया यहाँ पर। सो आई एम श्योर कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद कर ही जाओगी।
1: हाँ
0: तो पूजा जी यहाँ पर ऑल सेट है एंड खरीदारी जम कर रही है और साथ ही यहाँ पर बुफे भी लगा हुआ है, आप ज़रूर खा कर ही जाइएगा। एंड लेट मी टेल यू दैट आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है। आपकी बहन की स्माइल भी बहुत खूबसूरत है। दोनों यहाँ पर मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर उनको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। तो एक गिफ्ट उनको फैबुलस ट्रेंड की ओर से मिल रहा है। कंग्रेचुलेशंस आपको, थोड़ी देर में आपका गिफ्ट आ जाएगा। एंड आप लिसनर्स से, हमारे जो लिसनर्स हैं हमें सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू इनवाइट देम यहाँ पर?
1: वही
0: क्यों?
1: प्राइस अच्छा है और डिस्काउंट भी है और गिफ्ट भी मिल रहा है।
0: मदर्स डे के गिफ्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर?
1: यस yes.
0: ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी। एंड यस, यहाँ पर उनको एक गिफ्ट भी मिल रहा है और आप भी अगर आएंगे तो गिफ्ट आपको जरूर मिलेगा। सो डू कम हियर एट फैबुलस ट्रेंड नुवेल फ्रांस एग्जैक्टली ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन। म्यूजिक टाइम।
2: RM2 रेडियो मस्ती,
3: हिट म्यूजिक ओनली।
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Celesti.
1: In the mix. In the mix.
2: वेल, जब शाम होती है और घर की लाइट्स जलती है तब घर का पूरा जो माहौल है बदल ही जाता है. वार्म लाइटिंग, ब्यूटीफुल शैंडेलियर्स, स्टाइलिश वॉल लैंप्स और फैबुलस ट्रेंड के पास इन सब की बहुत सुंदर रेंज है. ब्यूटीफुल कलेक्शन यहाँ पर है और आज आकर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल कलेक्शन है आपको ऐसे ही नॉर्मल प्राइस में नहीं मिल रहा है. बट आज इनके जो प्राइस है घट चुके हैं. 30% ऑफ एवरीथिंग आप जिस किसी पर भी प्रोडक्ट्स पर हाथ लगाओगे ये आज आपका हो जाएगा विद 30% डिस्काउंट. एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप ये खरीद लेते हो तो आप अपनी रिसीप्ट लेकर बाहर आ सकते हो लॉबी में, जहाँ पर आपको उसी वैल्यू के गिफ्ट्स मिलेंगी. तो अगर आप एक चीज़ खरीदते हो तो घर आप लेकर जाओगे दो दो चीज़ें. एंड ऑल्सो यहाँ पर जो लोग है, भीड़ तो बहुत बड़ी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं. और यहाँ पर हमने आपको बताया था दैट मिनी बुफे लगा हुआ है और चाय, गर्मा गर्म चाय. वैसे यहाँ का जो मौसम है, बारिश हो रही है और ज़ोरदार बारिश भी हो रही थी, अभी थम सा गया है. बट इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय, यहाँ पर समोसे, गातू पीमा सब कुछ मिल रहा है. आप वेज हो नॉन वेज हो आ सकते हो यहाँ पर एंड यू कैन हैव अ टेस्ट ऑफ दिस डेलिकेसीज. वेल, यहाँ पर सबके लिए अरेंजमेंट किए गए हैं एंड आप अकेले नहीं, किसी को साथ लेकर आ सकते हो, अपनों को साथ लेकर आ सकते हो. और अकेले अगर आप आ रहे हैं तो वी आर हियर विद गुड म्यूजिक. RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट फैबुलस ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है फैबुलस डील्स, धमाकेदार डील्स. ना सिर्फ 30% ऑफ बट ऑल्सो यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन, डबल डील चल रहा है. यानी कि आप जिस भी अमाउंट की खरीदारी करते हो आपको उसी अमाउंट के गिफ्ट्स मिल रहे हैं. सो आइए, यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, बट यहाँ पर तो सासू माँ के लिए भी गिफ्ट मिल गया. सो एक पर आपको दो दो मिल रहा है. तो आइए एंड जमकर खरीदारी आप ही कीजिएगा, अपनों के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी आप गिफ्ट आइडियाज ढूंढ रहे हो. वेल, आजकल किचन बहुत ही इनोवेटिव हो गया है और किचन आइलैंड में अगर हम इस पर कुछ तड़का लगाना चाहते हैं तो एक वॉल लैंप लगा सकते हो जो काफ़ी रस्टिक हो. तो यहाँ पर ये लाइट्स, रस्टिक लाइट्स आपको मिल ही जाएगा. सो आइए यहाँ पर और अपनी आँखों से देखिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि आप ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेंगे. आइए खरीदारी कीजिए, गिफ्ट साथ लेकर ही जाएगा.
0: RM2 Radio Musti. Feel the musti.
3: RM2 Radio Musti.
4: The time is brought to you by

0: Radio Musty.
1: Well, आज नोवेल फ्रांस में एक अलग ही माहौल छाया हुआ है. लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और टहल भी रहे हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पर एट अ फैबुलस ट्रेंड धमाके डील चल रहा है. यहाँ पर 30% ऑफ एवरीथिंग. चलिए अभी हम आपको कुछ प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ के जो लाइट्स है बहुत ही खूबसूरत है और इसके जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है. 675 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे. जी हाँ, आपको अलग अलग प्राइसेस में 800 रुपये है, 400 रुपये के वॉल लैम्प्स है. अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपके बजट के अनुसार कुछ नहीं मिलेगा तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपके बजट के अनुसार ही लाइट्स आपको मिलेंगी. जी हाँ, बहुत से खूबसूरत आइडियाज़ हैं.

0: हाँ पर जो आप ज़रूर मिस नहीं करना चाहेंगी. एंड टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, तो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल लाइट्स भी है विच आर प्राइस्ड एट 875 रुपीज़. और अगर आप चाहे तो अपने आंगन में भी लगा सकते हैं. यहाँ पर 775 रुपीज़ पर एक बहुत ही खूबसूरत मैट कलर का, जो ब्लैक मैट कलर का है, एक वॉल लैम्प है. एंड इट्स अ वार्म लाइट, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स है. एंड आई थिंक इट्स गॉट डिफरेंट ऑप्शंस टू. अगर आप चाहे वार्म लाइट लगा सकते हो, कूल लाइट लगा सकते हो, एंड इट ऑल्सो कम्स विद द रिमोट, तो आपकी ज़िंदगी को और भी फैसिलिटेट कर रही है फैबुलस ट्रेंड. एंड यहाँ पर जो शैंडेलियर्स है बहुत ही खूबसूरत है. बहुत सारे आइडियाज़, गिफ्ट आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे. एक बहुत ही सुंदर शैंडेलियर में देख रही हूँ 6,800 रुपीज़, बट अगर आप देखें तो ये आपको 6,800 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, आपको ये 30% ऑफ में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम इसके जो बगल वाले रूम में है आए हैं, एंड वी कैन सी दैट कॉफ़ी टेबल्स हैं, बहुत ही स्टाइलिश कॉफ़ी टेबल है. आप चाहे तो एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, तीन लगा सकते हो अपने लिविंग रूम में, एंड इट विल गिव यू सच अ ब्यूटिफुल फिनिश. टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, अगेन अबाउट लाइट, वी हैव अ USB डायनामिक लाइट यहाँ पर जो कि प्राइस्ड है एट 475 रुपीज़, बट इस पर भी आपको मिलेगा 30% ऑफ. एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अपने आंगन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए वी हैव दीज ब्यूटिफुल लाइट्स, ब्लू कलर के, ग्रीन, पिंक, वार्म कलर्स, कूल टोन, सब कुछ हैं यहाँ पर. एंड द जो ये जो हैंगिंग लाइट्स हैं और भी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है. मैं एक यहाँ पर देख रही हूँ, इट्स वेरी टॉल और ये मुगल ज़माने के वाइब्स दे रहे हैं. सो अगर आप चाहे कि घर में कुछ ऐसे वाइब्स क्रिएट हो, तो आई एम श्योर कि आप ये लाइट देखना चाहेंगे. एंड टुडे आपको ये मिल रहा है एट 30% ऑफ. ऑल्सो वी हैव गॉट ब्यूटिफुल बाथरूम अमेनिटीज एज वेल, जो कि आप ज़रूर मिस नहीं करना चाहोगे. तो आइए यहाँ पर एट फैबुलस ट्रेंड एंड शॉपिंग कीजिए भर भर के, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बट बहुत सारे ब्यूटीफुल डील्स हैं आज. एंड ओनली फॉर टुडे, अगर आप कुछ खरीदते हो यहाँ पर, तो आपको उसी वैल्यू के आइटम्स मिलेंगे. सो आइए यहाँ पर एंड जम के खरीदारी कीजिएगा. RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट फैबुलस ट्रेंड एट नोवेल फॉस.
1: You're listening to RM2 for Radio Masti.

0: Feel Musty.
1: In the mix.
2: राइट यहाँ पर आज फैबुलस ट्रेंड द आरएम2 रेडियो मस्ती टीम है एंड वी विल बी हियर टिल 10 PM. चलिए बताइए आपके घर की पहली इंप्रेशन क्या होती है. फॉर श्योर इट इज द एंट्रेंस और एंट्रेंस को खास बनाती है लाइटिंग, सोलर लाइट्स, वॉल लाइट्स, डेकोरेटिव पीसेस. और आज फैबुलस ट्रेंड में ऐसे बहुत से आइडियाज आपको मिलेंगे जो आपके घर को और भी खूबसूरत बना देंगे. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल लैंप्स जो कि यहाँ पर है और हमने आपको बताया दैट बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश के साथ आपको मिलेंगे यहाँ वॉल लैंप्स. अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर एक वॉल लैंप है एंड इट्स वाइट मैट, बहुत ही खूबसूरत एंड इट्स प्राइस्ड एट 675 rupees. बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा आपके लिविंग रूम को, स्पेशली आप अगर कुछ पिक्चर्स फोटो फ्रेम्स लगाते हैं लिविंग रूम में, तो अगर आप ये लाइट ऐड करते हो तो ये चार चांद लगा ही देगा आपके लिविंग रूम में. तो सोचिए आप ही कि कोई आएगा घर पर, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, ये सब, और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी ये ब्यूटीफुल लैंप्स देखकर. और ये लैंप्स कहाँ दिखेंगे? आपके घर में. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर और भी खूबसूरत बन जाए तो आई एम श्योर कि आप यहाँ पर आना चाहेंगे आज फैबुलस ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है आज, सिर्फ आज, धमाकेदार ऑफर्स. जी हाँ, मदर्स डे स्पेशल चल रहा है यहाँ पर. आपके घर के लिए बहुत कुछ डेकोरेटिव आपको मिलेगा, चाहे वो लाइट्स हो, डेकोर हो, कुछ भी हो, मिरर्स. और ये जो हम वॉल लैंप्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फोकस लगाना चाहते हैं किसी फोटो फ्रेम पर, तो यहाँ पर

0: आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. वी हैव गॉट अ ब्लू लाइट, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, वार्म पिंक, सब कुछ है यहाँ पर. और आप अगर आएंगे यहाँ पर तो आप मेरी तरह ही पागल हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, ऊपर देखूँ, नीचे देखूँ, क्योंकि हर तरह, चारों तरह वी हैव गॉट सो मेनी लाइट्स, सो मेनी थिंग्स. और आज आपको ये सब मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस में. लेट मी टेल यू दैट फैबुलस ट्रेंड अक्सर 30% ऑफ लगाता ही है, बट आज, ओनली आज, ये धमाकेदार ऑफर आपके लिए है. आप 500 रुपीज़ की चीज़ खरीदते हो तो आपको 500 रुपीज़ की गिफ्ट्स मिलेंगे, 1000 रुपीज़ के खरीदते हो तो 1000 रुपीज़ के मिलेंगे, एंड अगर आप 10,000 रुपीज़ के खरीदते हो तो 10,000 रुपीज़ के गिफ्ट्स फॉर शो आपको मिलेंगे. एंड यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं. आइए यहाँ पर, हम चीख चीख के कह रहे हैं, आइए यहाँ पर और मदर डे गिफ्ट्स लेकर जाइए, क्योंकि ये मौका आपको नहीं मिलेगा बार बार. एंड यस, सो वी आर हियर एट द लॉबी एज वेल. हमने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टूल्स है जिसे पुफ भी कहते हैं, एंड इट्स वेलवेटी फिनिश के साथ है. इट्स ऑफ ब्लू कलर, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कंफर्टेबल है. आप शायद ये सोच रहे हो कि हम बैठेंगे और ये टूट जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सॉलिड है. आप चाहे बैठो और किसी को गोद में भी ले लो, ये नहीं टूटेगा. सो हियर एट फैबुलस ट्रेंड इट्स नॉट ओनली क्वान्टिटी बट आपको क्वालिटी भी मिलेगा. आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है. आइए देखिए, खुद देखिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है. इट्स अ मैसिव सेल्स जो कि आज लगा हुआ है. एंड मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी सारी जो सेल्स हैं यहाँ पर, ये फैबुलस ट्रेंड को प्रॉफिट मिल ही रहा है, पता नहीं, लेकिन उनको तो सिर्फ अपने क्लाइंट्स को प्लीज़ करना है. ये चाहते हैं कि इनके जो ग्राहक आते हैं यहाँ पर वो हमेशा खुश रहे, तो इसीलिए यहाँ पर ये फैबुलस डील लेकर आया है फैबुलस ट्रेंड. तो आप फटाफट दौड़ते दौड़ते आ जाइए यहाँ पर, एंड ये मिडनाइट तक खुला रहेगा. सो आप चाहे किसी भी टाइम पर आ सकते हो, बट ये खुला रहेगा टिल मिडनाइट विद अ मिनी बुफे और वैरायटी ऑफ कॉकटेल ड्रिंक्स. सो थैंक यू, एंड हम कुछ और अपडेट्स लेकर वापस लौट आएंगे.
1: वेलकम टू रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music. Radio Musti feels a musti.

सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, डबल द डील, डबल द वैल्यू, डबल द स्माइल्स। जी हाँ, यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन चल रहा है। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको उसी प्राइस के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मॉरिशस में आज तक कुछ ऐसा प्रोमोज हमने देखा है जहाँ पर आप किसी अमाउंट की चीज़ खरीदते हो और गिफ्ट के तौर पर आपको उसी अमाउंट के गिफ्ट मिलते हैं। बट इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, सो आप ज़रूर आइए। एंड यहाँ पर स्पेशली हम उन लोगों से कहेंगे जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि स्विचेस। जी हाँ, अगर आप घर की इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस कर रहे हैं तो आपको स्विचेस मिल जाएंगे, और स्विचेस भी बहुत ही स्टाइलिश है। वी हैव गॉट द नॉर्मल वन, सिल्वर वंस, वाइट वंस, एंड यहाँ पर खास मैं देख रही हूँ कि गोल्डन वंस भी है, एंड इट्स गॉट अ मैट फिनिश, बहुत ही खूबसूरत है। आप आकर ज़रूर देख सकते हैं। वी ऑल्सो हैव द चारकोल ग्रे कलर, जो कि आपके लिविंग रूम को, आपके घर को और भी खूबसूरत बना देगा। एंड द प्राइसिंग इज एट 175 रुपीज़, इट स्टार्ट्स एट 175 रुपीज़, और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको सिंगल स्विच चाहिए, डबल स्विच चाहिए, ट्रिपल स्विच चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली मैट बट ऑल्सो जो ग्लॉसी फिनिश के है, ये भी आपको मिल जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट द वॉल लैम्प्स, एक बार फिर यहाँ पर जो वॉल लैम्प्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। कई लोगों को पसंद है मुगल ज़माने के जो लाइट्स है वो आपके घर पर रहे, तो आप अगर चाहे ज़रूर आ सकते हैं। एंड इट्स गॉट क्रिस्टल्स ऑन दैट टू, कुछ मिरेकल वर्क हुआ है। आप आएंगे तो ज़रूर देखेंगे, समझ पाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब ये लाइट आप करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ये आपके पूरे घर को जगमगा देगा। एंड घर को खूबसूरत क्या बनाता है, लाइट ही ना। तो आप आइए और देखिए कि यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर कई लोगों को गोल्डन फिनिश पसंद है तो आपको गोल्डन मिल जाएगा, आपको वाइट फिनिश पसंद है ये भी मिलेगा। और यहाँ पर मैं एक वॉल लैम्प देख रही हूँ कि इसमें ट्रिपल लाइट्स है, एंड इट्स प्राइस्ड एट 3,200 रुपीज़। लाइट बहुत ही फोकस है यहाँ पर, और इट्स नॉट वेरी लाइट, यानी कि लाइट लाइट नहीं है, लाइट बहुत ही हैवी है। सो इट्स गना ऐड बहुत ही खूबसूरत रंग आपके घर पर है। एंड ऑल्सो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स के लाइट भी है। हम देख रहे हैं कि पाइनएप्पल शेप में भी आपको एक लाइट मिल जाएगा, इट्स कॉल्ड कलरफुल पाइनएप्पल कैंडल स्टैंड, यानी कि आप इसमें कैंडल लगा सकते हो। सो आप अगर रोमांटिक डिनर डेट प्लान कर रहे हो घर पर, तो आप ज़रूर ये इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर से इसकी जो लाइट है ये बहुत ही खूबसूरत सटल लाइट देता है। एंड वी हैव सम बेड साइड लैम्प एज वेल, जो कि बहुत ही क्यूट है, छोटे हैं बट बहुत ही क्यूट, और उसके ऊपर एक डायमंड सा लगा हुआ है। तो आप ही सोच सकते हो कि अगर आप ये स्विच ऑन करोगे अपने रूम में तो ये कितना खूबसूरत लुक देखेगा। वी ऑल्सो हैव अ रोमांटिक वैलेंटाइंस डे लाइट, यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में आता है। एंड लेट मी टेल यू दैट, ये एक सर्कल में जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर अंदर है और इसमें एक लेड लाइट लगा हुआ है, आप इसे चार्ज कर सकते हो। एंड आप चाहे तो इसे अपने बेडरूम में लगा सकते हो, लिविंग रूम में लगा सकते हो, जहाँ पर भी आपका मन हो आप वहाँ पर लगा दो, क्योंकि इट्स सो ब्यूटिफुल। आई एम श्योर कि कोई भी इसे देखे

0: तो आपसे पूछेगा कहाँ से खरीदा, ये मुझे भी लेना है। तो अगर आप चाहे जरूर आ सकती है अपनों के साथ, आइए यहाँ पर टिल मिडनाइट। जी हाँ, फैबुलस ट्रेंड टिल मिडनाइट ओपन है। एंड यहाँ पर इसके जो मदर डे डील्स चल रहा है ऊपर से, वी हैव गॉट द 10th एनिवर्सरी डील एज वेल, तो ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो लेट मी सी यू इन सम टाइम। यहाँ पर फिलहाल गाना
1: RM2 Radio Masti.

0: Radio Musty.
1: In the mix. दोस्तों, अगर आप अभी तक घर पर हैं तो ये आपका फाइनल रिमाइंडर है कि आपको आना पड़ेगा एट फैबुलस ट्रेंड। यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन, डबल डील, सब कुछ डबल डबल ही हो रहा है। आप एक चीज़ खरीदोगे आपको दो चीज़ मिलेंगे, एंड ऊपर से यहाँ पर पेट पूजा के लिए एक मिनी बुफे भी लगाया गया है। वी हैव गॉट जूस, वी हैव गॉट चाय, जो भी आपको पसंद है आप ले जा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। एंड यस, अबाउट द लाइट्स हम बात कर चुके हैं।

लेट्स टॉक अबाउट द गिफ्ट्स जो हमने आपको बताए कि यहाँ पर गिफ्ट्स बहुत सारे हैं. मैट आपको मिल रहा है, वो भी छोटे छोटे मैट नहीं जिसे हम टापी कहते हैं, बट बहुत ही बड़े बड़े हैं, आपके पूरे लिविंग रूम के लिए सूट करेगा. एंड इट्स प्राइस्ड एट 2,900 rupees. सो आप ही सोचे अगर आप 3,000 या 2,900 rupees की खरीदारी करते हो तो आपको ये मैट मिल सकता है फ्री, निःशुल्क. और यहाँ पर स्टूल्स भी है जो कि बहुत ही स्टाइलिश है. वी हैव गॉट इससे भी छोटे स्टूल्स और इससे भी बड़े स्टूल्स मिल जाएंगे. एंड वी हैव ऑल्सो गॉट द हैंगिंग लाइट्स, वी हैव गॉट एयर कूलर. जी हाँ, एयर कूलर आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो भी फ्री. अगर आप खरीदते हो इस दाम के कुछ भी तो आपको एयर कूलर मिल रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट अदर गिफ्ट्स, वी हैव गॉट मिरर्स, वी हैव गॉट मेनी मोर आइटम्स. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन दैट ये जो फैबुलस ट्रेंड है ये सिर्फ नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही ऑपरेट नहीं करता है, एक और फ्लोर है. जी हाँ, द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक और धमाकेदार डील चल रहा है. जो फोटो फ्रेम्स है, क्रिस्टल फ्रेम्स हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है. और आई रिमेम्बर दैट लास्ट टाइम मैंने भी खरीदा था एक सेवन हॉर्सेस जो कि बहुत ही बड़ा था एंड आपके लिविंग रूम में तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा. ये 1,800 rupees था, 1,800 rupees था जब हमने खरीदा था. बट टुडे, सिर्फ आज आपको ये 500 में मिल रहा है. सो यानी कि ऊपर में आपको 30% ऑफ नहीं, 50% ऑफ नहीं, बट 50 से ज़्यादा ऑफ मिल रहा है. तो ध्यान से सुनिए, आप आइए एट फैबुलस ट्रेंड, नॉट ओनली द ग्राउंड फ्लोर बट ऑल्सो द फर्स्ट फ्लोर. वहाँ पर आप जाइए, देखिए कि बहुत अन्य चीज़ें हैं वहाँ पर एंड आपकी आँखें खुली ही खुली रह जाएगी. आइए, आप शायद किसी को गिफ्ट करना चाहेंगे, ना सिर्फ मदर्स डे बट आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं. किसी का बर्थडे है या किसी की शादी है, आप उनको कुछ डेकोर आइटम गिफ्ट करना चाहते हैं, सो इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई एम श्योर कि आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे. सो डू कम हियर, वी आर हियर टिल 10 PM. RM2 रेडियो मस्ती.

0: Dusty. In the mix.
1: राइट रेम टू रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट नोवेल फ्रांस, वो भी कहाँ एट फैबुलस ट्रेंड. जी हाँ, एग्जैक्टली ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन हम आए हुए हैं. एंड अभी कुछ परिवर्तन होने वाला है. क्या है कि हम यानी कि मैं रिया अभी जा रही हूँ, लेकिन आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी. वी हैव अभी एंड निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड आपके साथ रहेंगे टिल 10 PM. तो चलिए अभी का हम हाल सुते हैं. हाई अभी, हाउ यू?
2: हेलो रिया, कैसे हैं आप?
1: As you can see, fit and fine.
2: बिल्कुल, वो तो दिख रहा है. और मैंने देखा है यहाँ पर एक मेन बफे है. आपने खाना खा लिया?
1: हमने तो सिर्फ अभी स्नैक लिया है, खाना मैं खाकर ही जाऊंगी यहाँ पर.
2: क्या बात है. सो थैंक यू सो मच रिया कि यहाँ पर कितने बजे से
1: यहाँ 5 बजे से.
2: सो 5 से 8 बजे तक आप लोगों ने रिया को सुना है. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, इस वक्त हम लोग यहाँ पर फैबुलस ट्रेंड जो नोवेल फ्रांस में पाए जाते हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं. हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने का जो मजा है कुछ और ही होगा. अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, सो लेट मी इन्फॉर्म यू कि मदर्स डे के संदर्भ में यहाँ पर बहुत सारे डबल डील्स मिलेंगे, जहां पर आप लोगों को खरीदारी करने का मौका मिलेगा. और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं निखिल. और निखिल, जैसे कि आप लोगों को पता है, दमदार आवाज, लेकिन यहां पर अपने दमदार परफॉर्मेंस लेकर आए हुए हैं फॉर द एनिमेशन, शॉपिंग एनिमेशन के लिए. हेलो निखिल.
3: हेलो अभी जी, कैसा चल रहा है आपका?
2: बस बढ़िया बढ़िया. और यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ शॉपिंग करने का जो मजा है कुछ अलग ही है बारिश के साथ.
3: कहते हैं ना, डर के आगे जीत होता है. हम कहते हैं कि बारिश के आगे फैबुलस ट्रेंड्स.
1: एग्जैक्टली, बारिश के आगे फैबुलस ट्रेंड. लेकिन बारिश का मौसम हो या कड़कती धूप हो, लेकिन फैबुलस ट्रेंड हमेशा लेकर ही आता है आपके लिए सुपर अमेजिंग डील्स. और ये जो डील आज के लिए है, यानी कि हमने बताया आपको 30% ऑफ एवरीथिंग, ये तो बार बार होता ही रहता है, क्योंकि फैबुलस ट्रेंड का मोटो ही है अपने ग्राहकों को खुश करना, तो वो हमेशा करते हैं. लेकिन आज स्पेशल क्या है कि आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको उसी वैल्यू के गिफ्ट्स मिल रहे हैं.
3: वाह, क्या बात.
1: मैंने परख लिया है निखिल को कि ये आज कुछ ना कुछ खरीदने ही वाला है, क्योंकि उसी अमाउंट के गिफ्ट्स तो मिलेंगे. हाँ, तो बेशक खरीदारी तो होनी ही चाहिए.
2: और मैंने सोचा है कि रिया खाने के बाद डेफिनेटली तुम भी थोड़ी सी खरीदारी करोगे, बेस्ट डील तो है.
1: हाँ, मैं तो अपना सब कुछ यहाँ पर ही खरीदूंगी, स्पेशली अगर हम हाउस रिनोवेट या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. इट्स बहुत ही अमेजिंग डील है, आपको बार बार नहीं मिलता है. एंड हमने यहाँ पर बात की है कस्टमर से एंड ऑल्सो प्रोप्रिएटर से. यहाँ पर उन्होंने कहा है, ओनर ने कहा है कि ये डील सिर्फ एक ही बार होता है साल भर में, एक ही बार. सो हम अपने सभी लिसनर्स को ये कहेंगे कि आप आइए यहाँ पर एट फैबुलस ट्रेंड एंड शॉपिंग आप भी भर भर के कीजिएगा.
2: क्या बात है. सो रिया को हम दे रहे हैं एक ब्रेक, और फिर से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस

0: Celesti.
1: In the mix. J'ai un peu que le Isvokt Hamlog Nouvelle-France State Fabulous Trend की दुकान में है और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो दुकान है 10th एनिवर्सरी के संदर्भ में एक बहुत ही मेगा सेल का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो लाइट्स आपको देखने का मौका मिलेगा, खरीदने का भी मौका मिलेगा और अलग अलग प्रकार की डील यहाँ पर है। और निखिल, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ओपन बफे है, अगर जितने सारे जो क्लाइंट्स अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको मिलेगा यहाँ पर गर्मा गर्म चाय।
2: हाँ, गर्मा गर्म चाय भी है और ठंडी ठंडी जूस भी।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ पकौड़े भी है। लेकिन पकौड़े और चाय को पाने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, खासकर लाइट्स से जुड़े प्रोडक्ट्स।
2: जी हाँ, जिनको जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें पता है, यहाँ पर बस लाइट्स की चकाचौंध से आंखें खुश हो जाती हैं।
1: बिल्कुल। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रिया एकदम रेडी है अपनी खरीदारी करने के लिए और वो जाने से पहले उन्होंने मन में ठान लिया है कि मुझे यहाँ पर अपने फैमिली के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
2: जी हाँ, माँ के लिए एक खरीदेंगी तो पिताजी के लिए इक्वल वैल्यू का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
1: बिल्कुल।
3: आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद लो।
1: इसके बारे में सोचूंगा अगले साल। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग आसपास के रहने वाले हैं, नुवेल फ्रांस, मोंटाबा, ग्रैंबोआ, बॉशेरी, ला फ्लोरा, अगर आप लोग रोजबेल के हैं, अगर आप लोग यूनियन पार्क के हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग आइए। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली हम लोग हैं कहाँ, फैबुलस ट्रेंड नुवेल फ्रांस के पुलिस स्टेशन के बस उसके ऑपोजिट है। अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्किंग की भी फैसिलिटी है। ये बात सच है कि यहाँ पर हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम लोगों को खरीदारी करनी है, अगर हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर बेस्ट डील है, सो व्हाई नॉट कमिंग हियर।
2: जी हाँ, बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। इवन द एटमोसफियर इज वेरी वार्म और प्राइसेस जो हैं, प्रमोशंस जो हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो और भी वार्म हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस से जुड़े जो जानकारियां हैं आप लोगों को देते जाएंगे। और यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि निखिल, अगर मैं 1,000 का एक प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसके बदले में मुझे 1,000 का दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा फ्री में।
2: ठीक है, तो आप ऐसा करना, हाँ, आप रिया जी के लिए कुछ ना कुछ खरीदना, जो फ्री मिले वो आप मेरे को देना।
1: आपको दे,
2: ठीक
1: है, चलिए मैं ये लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। हाँ? अगर यहाँ पर आप 2,000 का लेंगे, 2,000 का फिर से फ्री मिलेगा, 3,000 का।

0: ये करते करते 10,000 का अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो 10,000 फ्री में मिलेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है मुझे 10,000 का
1: आप देखो अपने अपने हिसाब से।
0: अच्छा मैं कोशिश
1: से लेकर 10,000 तक
0: मैं देखता हूँ मार्जिन क्या होगा। लेकिन अगर आप लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो आपको फिर से बताना चाहेंगे न्यूवेल फ्रांस में यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है फैबुलस ट्रेंड, जो न्यूवेल फ्रांस पुलिस स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट है। आप आइए खरीदारी कीजिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं निखिल भीड़ की जो लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ती जा रही है बिल्कुल
1: बारिश हो मौसम अच्छा भी हो
0: बिल्कुल
1: तभी बढ़ता ही जाएगा। हम भी साथ रहेंगे
0: बारिश के साथ हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। रेडियो मस्ती की पूरी टीम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वी डू हैव डोमिनिक अमर और नाइम म्यूजिक
2: Radio Musti in the mix. Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musty Feels a Musty.

0: Radio Musty.
1: In the mix. जी हाँ बिल्कुल, रेडियो मस्ती के लहरों पर इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम यहाँ पर आ गए हैं एट फैबुलस ट्रेंड जो नुवेल फ्रांस में पाए जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर ये जो दुकान है उसकी 10वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ पर एक मेगा सेल का मतलब लगाया गया है, जहाँ पर अगर आप खरीदारी करेंगे फॉर 2,000 रुपीज आपको मिलेंगे 2,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स फ्री में निखिल। और साथ ही साथ यहाँ पर चकाचौन जिसे हम कहते हैं देखने का मौका मिल रहा है। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर आप रिनोवेशन कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू कम हियर,
2: फिर कोई भी डेकोरेशन, मैं हमेशा कहता हूं कि फर्नीचर सारे

0: चाहे करोड़ों का हो, लेकिन अगर लाइटिंग ठीक ना हो ना तो वो भी सस्ती लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और रात के 12 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल है, एक्सेसिबल है।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इट्स अ टिकिंग क्लॉक।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दीवार पर चिपके गए जो यहाँ पर सुंदर सुंदर जो लैंप है, यहाँ पर उसकी जो ग्लासेस है अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नायाब है। और उसका जो प्राइस है काफी इंटरेस्टिंग है, 1600 रुपए में आपको एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो दीवार पर लगाए जाने वाले जो लैंप है आपको मिल जाएगा। अलग अलग डिजाइन है, इसका मतलब ये है निखिल कि ऑप्शंस बहुत है यहाँ पर,
0: बहुत सारे, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे इंडियन चाहते हो, थोड़ा सा एंटीक लुकिंग चाहते हो, या फिर मॉडर्न चाहते हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेड नियन रोप लाइट है यहाँ पर ओनली 1100 रुपीज आपको मिल जाएंगे, और इसमें वो वक्त भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आकर के ये जितने सारे जो इंटरेस्टिंग जो रोप वाले जो लाइट है, जो आप स्मार्ट कंट्रोल स्लाइड शो स्ट्रिप जो है, अगर आ करके अगर आप खरीदेंगे सो आपको मिलेगा एक एनेजो वार्ड, क्योंकि 1000 की खरीदारी तो हो गई है। इसका मतलब ये है कि 1100 में आपको दो मिल सकते हैं, क्या बात है।
0: ओके ओके।
1: सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे।
0: अरे भाई कुछ नहीं लेना है फिर भी आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माहौल ही इतना वार्म होता जा रहा है। इट्स अ वेरी नाइस एटमोसफियर एंड हम भी यही पर है।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से निखिल ने कहा कि यहाँ पर वार्म एटमॉस्फेयर है, हालांकि बाहर में थोड़ी ठंडी हवाएं बह रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अंदर प्रवेश करेंगे सो गरम गरम चाय या पीने का मौका मिलेगा विद गरम गरम पकौड़े
0: और गरम गरम प्रमोशंस भी हैं।
1: डेफिनेटली
0: ओनली टिल मिडनाइट।
1: ऑफ कोर्स म्यूजिक का।
2: You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Angel Musty.
1: In the mix. Jambo is vakta hum log Nouvelle France Fabulous Train ki dukan mein hai aur yahan par Nikhil hum keh sakte hain ki agar aap yahan par aayenge raat ke 12 baje tak yahan par mega sale ho raha hai.
2: जी हाँ, 30% ऑफ एवरीथिंग.
1: क्या बात है. इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे सो कुछ न कुछ आपको खरीदने का न केवल मौका मिलेगा लेकिन एक मजबूरी सी हो जाएगी कि मुझे कुछ न कुछ तो लेना ही होगा यहाँ पर, यहाँ से जाने से पहले.
2: इतने सारे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर.
1: ऑफ कोर्स
2: लेना तो पड़ेगा ये.
1: ऑफ कोर्स
2: एस्पेशली इफ इट्स 30% ऑफ. लेकिन आज कुछ नया भी चल रहा है अभी जी.
1: अच्छा, कुछ नया चल रहा है. जैसे कि
2: आप अगर 500 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदो
1: जी
2: तो आपको मिलेगा 500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री.
1: अच्छा, मैंने सोचा था 1000. यहाँ पर तो 500 की बात
2: नहीं, 500 से लेकर इट गोज अप टू 10,000.
1: क्या बात है. और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे, मान करके चलिए फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, अलग अलग जो मेंबर हैं कुछ ना कुछ खरीद करके लेकर के जाते हैं, तो उनके हाथ में न केवल एक प्रोडक्ट होगा लेकिन डबल भी होगा.
2: जी हाँ
1: डबल डील जी हम कहते हैं.
2: जो यहाँ पर हैं उनको पता होगा अभी एक गाड़ी,
1: हाँ जी,
2: वैन बनकर निकली है यहाँ से.
1: क्या बात, मतलब सब कुछ ठूस के वो लेकर जा रहे हैं.
2: इतना सब कुछ मिला कि उसके लिए जगह नहीं है.
1: बाप रे, बहुत. इसका मतलब है यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए. और साथ ही साथ यहाँ पर एक लकी ड्रो भी होने वाले हैं. अगर आप आएंगे, आपको आना चाहिए यहाँ पर निखिल, लोगों को कहना चाहिए कि आइए, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है इंटरेस्टिंग.
2: जी हाँ, फैबुलस ट्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ एक प्रमोशन नहीं चला रहा है, इट्स अ फुल शॉपिंग मेनिया काइंड ऑफ अफेयर.
1: एग्जैक्टली, वन स्टॉप शॉप जिसे हम कहते हैं.
2: जी हाँ,
1: यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के रिनोवेशन कर रहे हैं या फिर नए घर की कंस्ट्रक्शन

0: में लगे हुए हैं और वे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे कहाँ।
1: हाँ, तो और जो जो लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं उनको भी न्योता देंगे कि यहाँ पर आकर देखो, maybe you'll get some ideas.
0: Of course. और पता है निखिल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर उन लोगों ने काम किया है और रात तक उन लोगों को टाइम नहीं मिला है खरीदारी करने के लिए, खासकर अपने अपनी माँ के लिए, अपने मॉम्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए। सो व्हाई डोंट यू कम राइट नाउ?
1: जी हाँ, यू हैव टिल मिडनाइट इस प्रमोशन का लाभ उठाने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: एंड विल बी हियर Till 10 p.m.
0: Of course, यहाँ पर रेडियो मिस्टी की पूरी टीम यहाँ पर आए हैं। So we do have Dominic, we have Amar, we have Naim, we have Abhi, and we have Nikhil. Music.
2: RM2 Radio Musti. Feel the musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesty.
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, we are live right here opposite the police station of Nouvelle-France at Fabulous Trends. और यहाँ पर चल रहा है जबरदस्त promotion. Fabulous Trend is celebrating its 10th anniversary. और ऊपर से कल it's Mother's Day special. अभी जी
2: actually हुआ क्या, मैं गाने जब गाना चल रहा था मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी देख लूं, लेकिन मैं सोच हाँ मैं भी खो गया हूँ. ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ में दो भाई जो है वो खो गए हैं. लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग, हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली अगर आप सच्चे में शॉपिंग करना शुरू करेंगे ना तो आप इतने एंग्रॉस हो जाएंगे कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, उसके बदले में मुझे इतनी कीमत के जो गिफ्ट है वो मुझे मिलेंगे. तो इसके चक्कर में मैं भूल गया कि मैं आपसे बात करने के लिए मुझे आना पड़ेगा.
1: जी हाँ जी हाँ, फैबुलस ट्रेंड्स ऐसी जगह ही ऐसी है,
2: बिल्कुल एकदम फैबुलस.
1: आज तो पंडाल सब लगा है.
2: एग्जैक्टली, बहुत ही
1: फिएस्टा.
2: पंडाल के साथ साथ एक ओपन बुफे भी है, गरम गरम चाय मिल रहे हैं, पकौड़े भी तल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपको चाय नहीं चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है, ठंडा जो जूस है, शरबत है, आपको पीने का मौका मिलेगा. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं एक्चुअली जब मैं वहां पर गया था, मान करके चलिए आपने दो वो लाइट्स जो लैंप हैं जो आपने लिए हैं, एक का 800 का है, अगर आप दो लेंगे तो 1600 हो जाएगा ना. तो उसके बदले में यहाँ पर पंडाल में जितने सारे जो गिफ्ट्स हैं उसके जो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर 1600 के जो गिफ्ट्स हैं आपको मिलने वाले हैं.
1: ओहो, और ये 1600 मैं बता दूं, ऑलरेडी एट 30% ऑफ.
2: ऑफ कोर्स ऑलरेडी सेल है वहां पर, प्रमोशनल प्राइस में है. और यहाँ पर ऐसे ऐसे गिफ्ट्स हैं जहां पर आपको चूज करने के लिए भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना ओ बागाजुआ, इस तरह से इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत है. तो अगर आप गिफ्ट के चक्कर में आप ये सोचेंगे कि मुझे ये लेना है वो लेना है, इसके लिए डेफिनेटली अंदर जाकर के आपको और ज्यादा खरीदारी करनी होगी.
1: अंदर भी इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स की कंफ्यूजन हो जाए, बाहर भी इतने सारे अच्छे गिफ्ट्स की इस पर भी कंफ्यूजन.
2: ऑफ कोर्स यहां पर ऑप्शन

0: ही ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आएंगे, आप सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर पंडाल बन गया है, अंदर गिफ्ट्स है, अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप अंदर जब जाएंगे उसके अंदर और मतलब कमरे हैं जिसका और अंदर है, अंदर ही अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ लिस्कालिये से है एक भाई गामबागत, वो एक बहुत ही बड़ा बॉक्स लेकर के जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, और मैं देख रहा हूँ कि जो गाड़ी है काफी है। कैसे लग रहा है भाई खरीदारी करने के लिए?
1: अच्छा लग रहा।
0: और आपने एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने क्या लिया है, लेकिन जो आपने लिया है तो आपको गिफ्ट भी मिल रहे हैं?
1: हाँ, गिफ्ट भी मिल रहे हैं।
0: और गिफ्ट में आपने क्या सिलेक्ट किया है?
1: अभी तो नहीं ले रहे क्योंकि बहुत है।
0: क्या बात है, ऑप्शंस बहुत है।
1: हाँ।
0: और खरीदारी करने के बाद, यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है?
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा।
1: हाँ।
0: और जितने सारे जो मतलब लैंप्स या फिर जो लाइट्स है आप लेकर के जा रहे हैं, आप गिफ्ट में देंगे या फिर अपने घर के लिए?
1: ना, बिजनेस के लिए।
0: क्या बात है, इसका मतलब ये है बहुत सारे बिजनेसमैन भी यहाँ पर आ रहे हैं।
2: एंटरप्रेन्योर।
0: तो जितने सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप लोग आजू बाजू के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, सो व्हाई नॉट कम हियर, आप आइए और खरीदारी कीजिए ना।
2: आजू बाजू का तो रहने दो। पिछली बार हमने देखा था कि तेहूर से एक फैमिली आई थी अभी अभी यहाँ पर।
0: क्या बात।
2: सो अक्रॉस द आइलैंड हम कहेंगे यू हैव अंटिल मिडनाइट इस प्रमोशनल ऑफर को का लाभ उठाने के लिए। फैबुलस ट्रेंड, यहाँ पर प्रोडक्ट चुनने में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है।
0: बिल्कुल कंफ्यूजन इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अगर आप नुवेल फ्रांस आएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि नुवेल फ्रांस के पुलिस स्टेशन कहाँ है, वे लोग बता देंगे पुलिस स्टेशन के जिस ऑपोजिट में आपको ये दुकान मिल जाएगा।
2: और अगर आप आ रहे हो तो जगह बना कर आना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए, यहाँ पर अगर आप आसपास के रहने वाले हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर नुवेल फ्रांस में फैबुलस ट्रेंड के एक बहुत ही दमदार मेगा सेल हो रहा है। रात के 12 बजे तक आप आ सकते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे। म्यूजिक
3: Radio Musti feels a Musti.
4: RM2 Radio Musti.

0: Radio Musty.
1: जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं एट नुवेल फ्रांस और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आप आना चाहेंगे एट फैब्यूलस ट्रेंड, अलग अलग प्रकार के स्विच आपको मिलेगा और हम आपको बताना चाहेंगे जो वन वे स्विच है इट्स ओनली 175 और अलग अलग डिज़ाइन के हैं। अगर आप उसके जो प्लग्स वाले देखेंगे तो 475 रुपीज का
2: डबल,
1: जो डबल स्विच है, बिल्कुल जो डबल प्लग है। इसका मतलब ये है कि आपको मौका मिल रहा है अलग अलग प्रकार के स्विच खरीदने का, अलग अलग प्रकार
2: ये
1: के
2: फंक्शनल फंक्शनैलिटी के हिसाब से अलग नहीं है,
1: बिल्कुल
2: लुक्स के हिसाब से
1: ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब ट्रेंडी है, इसीलिए नाम ही है फैबुलस ट्रेंड।
2: क्या बात।
1: और
2: क्या बात?
1: उसका जो वो लैंप है, मैं देख रहा हूँ कांच से बने हुए हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, अरेबियन है, इंडियन है और ऐसे ऐसे मतलब डिजाइन्स है, जैसे कि वहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे इस वक्त जो आप मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं निखिल को दिखा रहा हूँ ये बताने
2: बता
1: के
2: भी
1: लिए।
2: नहीं पाएंगे रेडियो पर कि कैसे हैं, बस यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स
1: अगर आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, टच करेंगे,
2: तब आइडिया आएगा कि
1: लाइट को चेक करेंगे, तब ही आपको पता चलेगा
2: कि कितने ऑसम यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत बहुत अलग अलग तरीके के लाइट्स, अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिकल
1: अप्लायंसेस
2: हैं यहाँ पर, और हर किसी के टेस्ट के लिए है। आप चाहे रेनोवेशन कर रहे हो या फिर बना रहे हो अपना खुद का घर, या फिर आपको बस चेंज करना है।
1: ऑफ कोर्स, मैं यही तो, पता है मैंने अभी क्या किया है, मैंने अपने एक इलेक्ट्रिशियन को फोन करके पूछा है कि मेरे यहाँ जितने सारे जो स्विच है वो अब टूटते जा रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा कभी नहीं होता है, 5 साल 10 साल के बाद ये ऐसा होता है, जितने सारे जो स्विच है तो जो प्लग्स भी है कभी कभी वो अंदर से मतलब वहां पर जल जाते हैं। तो मौका है यहाँ पर, मौका देख करके चौंका लो ना।
2: वही मौका यार, आज का मिडनाइट तक,
1: बिल्कुल रात के 12 बजे तक का आपको मौका मिलेगा यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ आ करके आप टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा स्विच आप ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको अपने इलेक्ट्रिशियन को कंसल्ट करना है, व्हाई डोंट यू डू दैट।
2: हाँ, You can easily do that and come pick your light, your appliance of choice at Fabulous Trend.
1: Happening right now at Fabulous Trend, Nouvelle France, जो पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिया अभी तक घर नहीं गई है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अड्डा जमाने के लिए आ गई है या
2: नहीं, अभी हमने बताया ना
1: शाम के 5 बजे से है यहाँ पर, मुझे लगता है कि रात के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगी
2: क्योंकि यहाँ पर है ही इतना सारा खरीदने को, देखने को, परखने को, और इट गिव्स यू सो सो सो सो मेनी आइडियाज।
1: ऑफ कोर्स, पता है क्या हुआ, रिया 5 से 8 बजे तक यहाँ पर रही एनिमेशन करने के लिए, ओके? तो उसके पास 3 घंटे मिले सभी चीजों को देखने के लिए, भांपने के लिए, जांच करने के लिए,
2: और अभी खरीद रही है,
1: आप खरीदारी कर रही है।
2: ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जब खत्म हो जाएगा 10 बजे, हम भी यही करेंगे।
1: 2 घंटे है बाकी, सो रात बाकी है और बात भी बाकी है, और अभी के लिए म्यूजिक भी बाकी है।
0: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती, हिट म्यूजिक ओनली,
0: फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musty.
1: जी हाँ, आज का स्पेशल इन द मिक्स रेडियो मस्ती टीम पहुंची है एट नुवेल फ्रांस फैबुलस ट्रेंड, जहां पर फैबुलस फैबुलस प्रोडक्ट्स हैं ही, साथ ही साथ एक फैबुलस प्रमोशन ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी एज वेल एज मदर्स डे.
2: जी हाँ, मदर्स डे के अवसर पर यहाँ पर मेगा सेल लग गया है. हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप शॉपिंग करने के बाद पंडाल में आएंगे बाहर, सो यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार के जो गिफ्ट्स हैं आपको मिलेंगे. जैसे कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो LED जो लाइट है अपने घर को सजाने के लिए, यहाँ पर अलग अलग रंग के हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा. साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं वी डू हैव ए फायरप्लेस लैंटर्न LED वाला. उसका जो दाम है वो 1900 का है. लेकिन निखिल, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप अंदर 2000 रुपये का एक कुछ ना कुछ खरीद करके बाहर आते हैं तो ये आपके लिए गिफ्ट.
1: ओहो, ये गिफ्ट है.
2: ये गिफ्ट है.
1: और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैसे वाले LED लाइट्स नहीं है जो हम पुराने जमाने में चलाते थे.
2: नहीं नहीं,
1: दिस वन यू हैव गॉट अ रिमोट, यू हैव गॉट एन ऐप.
2: क्या ऐप भी है?
1: हाँ, इसका ऐप भी होता है.
2: क्या बात है भाई.
1: और क्या प्रमोशन लगा है कि यहाँ पर मदर डे के एक दिन पहले
2: बिल्कुल.
1: आप मानो आप आए हो माँ के लिए, कुछ ठीक से देख लिया.
2: हाँ जी
1: मेरी माँ के लिए.
2: हाँ जी,
1: आपको सास के लिए मिल जाएगा.
2: हाँ, सास के लिए भी मिल जाएगा. क्या बात है.
1: सेम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है.
2: हाँ, इक्वल प्राइस.
1: हाँ,
2: बिल्कुल. सो आप यहाँ पर आइए ना. यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपनी माँ या फिर अपने सासू माँ के लिए कुछ नहीं खरीदा है और आप सोच रहे हैं अरे यार आज बारिश है, काम भी गए थे, लेकिन थोड़ा सा यू नो आलसी महसूस हो रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, हम लोग जाएंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर नुवेल फ्रांस में आप आइए, देखिए, चेक कीजिए, टच कीजिए, आप देखिए उसको.
1: हाँ,
2: तब पता चलेगा ना.
1: आप आओगे या तो सासू माँ के लिए या फिर माँ के लिए कुछ खरीदने के लिए, लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो खरीद कर जरूर जाएंगे. आप,
2: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सुंदर सुंदर जो कालीन है जिसे माप कहते हैं, ये जो मैट है काफी सुंदर है, अलग अलग डिजाइन के है. यहाँ पर भी उसकी मतलब यहाँ पर सेल लगे हुए है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसको खींच खींच करके निकाल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस हैं और मैं भी एक खींच करके देखूँगा. मैं देखूँगा कि मेरी गाड़ी में ये फिट होगा या नहीं. मुझे लगता है निखिल फिट होगा. आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक वन. या मुझे लग रहा है कि मैं एक लूंगा और घर के लिए. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चलिए नए साल जब आएगा तब
1: देखेंगे, या फिर दिवाली पर देखेंगे. नहीं
2: हाँ,
1: भाई
2: अभी तो दिल्ली दूर है, दिवाली तो दूर है, देखेंगे बाद में.
1: अभी घर को चमका सकते हैं, अभी भी घर को और रोशन कर सकते हैं.
2: बिल्कुल.
1: Because this is a right night.
2: Exactly, this is a right night. अगर आप आएंगे, देखेंगे, options आपके पास बहुत हैं. आकर के कालीन खरीद सकते हैं, lights खरीद सकते हैं और अंदर में पाए जाने वाले जो अलग अलग जो switch है वो भी आप खरीद करके या

0: यहां से निकल सकते हैं, न खाली हाथ बल्कि दो हाथ, साथ ही साथ अपनी जो गाड़ी है वो भर जाएगा खचा खच।
1: हाँ, गाड़ी यहाँ पर मैंने देखा है, अभी यहाँ पर जो चल रहा है, गाड़ी आती है लॉरी बनकर जाती है।
0: हाँ, मतलब अपने गाड़ी को यहीं पर बगल में डाल करके वो जितने सारे जो सामान उन लोगों ने लिया है भर भर कर लेकर।
1: और ये इस बात से अंदाजा हो सकता है कि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू कैरी आउट दिस मच।
0: एग्जैक्टली, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यहाँ पर आए हुए थे निखिल, लेकिन जब वहाँ यहाँ पर आए तब उनको पता चला सोने पे सुहागा है।
1: वही तो, जितना हो सके, हाँ, इतने सारे प्रोडक्ट उस पर ये प्रमोशन जो चल रहा है टिल मिडनाइट ओनली एट फैबुलस स्टैंड ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन एट नुवेल फ्रांस, और ये रहेगा टिल मिडनाइट आज की अर्धरात्रि तक।
0: बिल्कुल, म्यूजिक का।
2: You're listening to RM2, a Radio Mastery.

0: Radio Mesty.
1: In the mix.
2: जी हाँ, रेडियो मस्ती की टीम स्टिल हियर एट फैबुलस ट्रेंड एट नुवेल फ्रांस. और ये जो आप देख रहे हो बाहर से, जब
3: हम लोग पहली फर्स्ट जो इससे है, हम यहाँ पर आ गए हैं. और निखिल, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पता है, हम दिल दे चुके सनम मूवी में एक बहुत ही बड़ा झूमर था ना, जहाँ पर वे झूमर के बगल में वहां पर वे लोग अपने रोमांटिक सीन कर रहे थे. हाँ. तो यहाँ वो जो झूमर है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है. और अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा फैंसी वाली जो चीज है अब खरीदना चाहते हैं, सो व्हाई डोंट यू कम एट द फैबुलस ट्रेंड एट नुवेल फ्रांस. और यहाँ पर आपको मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया, एक नहीं मतलब एक से बढ़कर एक जो झूमर है आप लोगों को मिलेगा निखिल. और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पेंटिंग्स है जिसमें लाइट्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको दिख जाएगा यहाँ पर. इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो दुकान है उसके अलग अलग कंपार्टमेंट, यहाँ तक कि उसका जो पहला जो पहली जो मंजिल में पाए जाने वाले जो लाइट्स है, जो पेंटिंग्स है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है अब यहाँ पर 12 बजे तक

0: रह सकते हैं, आकर के देख सकते हैं, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। और जहां तक यहां पर एक एक्वेरियम भी है, उस एक्वेरियम को देखने के बाद मैं सोच रहा हूं कि इसको अगर मैं 12 बजे से पहले नहीं लूंगा सो आई विल बी द लूजर।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 12 बजे का वक्त इसीलिए दिया गया है क्योंकि काफी बड़ा है, बहुत चॉइस है प्रोडक्ट्स के, जैसे कि अभी ने कहा, अभी

0: जो है वो यहाँ पर टेबल है वो लगा हुआ है, जो अपने आप में काफी खूबसूरत है। और यहाँ पर अगर आप नए घर जाने के लिए सोच रहे हैं, आपने एक नए घर की कंस्ट्रक्शन किया है, सो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे पेंटिंग्स को लेकर के।
1: जी हाँ, बहुत बहुत सारे पेंटिंग्स जो आपके घर को एक और माहौल दे सकता है। इट्स अनदर एटमॉस्फेयर, अनदर स्प्लैश ऑफ कलर जिसे कहते हैं, वो आप लाइटिंग से कर सकते हैं या फिर पेंटिंग से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर को, आपकी स्पेस को डेकोरेट करने के लिए। और ये सब हो रहा है ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन एट विल्मॉस, फैबुलस ट्रेंड।
0: और यहाँ पर DIY क्लॉक भी है, अलग अलग कॉलर के हैं, जो गोल्डन है, सिल्वर है, ब्लैक है, कॉफी है, वुडन, ब्लू, रेड, अलग अलग का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए भी दो तीन खिलौने हैं। इसका मतलब है फुल पैकेज है। जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए डंबल भी मैं देख रहा हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग है ऑप्शन भी आपके पास।
1: घर के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं, और जैसा हमने देखा है लोगों को खरीदारी करते हुए देखते हुए प्लीज डोंट कम अलोन, कुछ लोग लेकर ही आना, क्योंकि यहाँ पर आपके दो हाथ भर जाएंगे भाई।
0: ऑफ कोर्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीदारी की जा सकती है, सो एक गाड़ी में नहीं बल्कि दो या फिर तीन गाड़ियों के साथ अगर आप आएंगे, सो आपको और ज्यादा ऑप्शन मिलेगा अपने गाड़ी को भरने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए।
1: बट यू विल हैव टू बी क्विक, क्योंकि ये प्रमोशन चल रहा है ओनली टिल मिडनाइट टुनाइट।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए और इसका पूरा आनंद उठाइए और लाभ उठाइए। और अगर आप आजू बाजू में रहते हैं, सो व्हाई डोंट यू कम हियर राइट हियर, 12 बजे तक यहाँ पर जो मेगा सेल है लगाया जा रहा है एट फैबुलस ट्रेंड, जो एग्जैक्टली नुवेल फ्रांस में पाए जाते हैं, पुलिस स्टेशन नुवेल फ्रांस के जस्ट ऑपोजिट।
1: जी हाँ, यहाँ पर सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि शायद ये नाम आपके लिए नया होगा फैबुलस ट्रेंड, लेकिन ये जो दुकान है दैट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पॉट जस्ट ऑपोजिट द पुलिस स्टेशन एट नुवेल फ्रांस। नुवेल फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बारिश अभी तक है, लेकिन माहौल इट्स वेरी वार्म इनसाइड।
0: ऑफ कोर्स गरम गरम चाय भी मिल जाएंगे, गरम गरम पकौड़े है, चाय है, पकौड़े है, कालीन है, लाइट्स है, और क्या चाहिए
1: उससे ज्यादा हॉट कुछ है तो यहाँ का प्रमोशन।
0: ऑफ कोर्स म्यूजिक।
2: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
4: हिट्स, म्यूजिक ओनली
3: फील्स अ मस्ती।

0: की
1: रेडियो मस्ती
2: इन द मिक्स
3: जी हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर पंघट के पास नहीं है, लेकिन हम लोग नुवेल फ्रांस पुलिस स्टेशन के पास में पाए जाने वाले जो फैबुलस ट्रेन की जो दुकान है वो यहाँ पर पंघट से बढ़कर है। यहाँ पर पानी नहीं है लेकिन बारिश की बूंदे हैं, और बारिश की बूंदे के अंदर में एक पंडाल है, पंडाल में गिफ्ट है, और उसके और अंदर अगर जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के लाइट्स आपको मिल जाएंगे।
4: जी हाँ, आपको पता है अभी जब मैं यहाँ पर आया तो कौन सा गाना आया दिमाग में?
3: अच्छा बताइए।
4: रूबरू रोशनी।
3: क्या बात है, एकदम प्रकाशमय।
4: हाँ बिल्कुल, हर तरह की रोशनी है, कुछ गोल है, कुछ स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर के साथ गोल है, कुछ गोल के साथ स्क्वायर है।
3: बाप रे, अलग अलग प्रकार के डिजाइन। हाँ। जो हम लोग हमारे दिमाग में सब कुछ गोल गाल देखते
4: वही हैं। वही यहाँ पर आकर मुझको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं। हाँ। कि मैं घर पर कौन सा वाला लगा सकता हूँ। हाँ। उसके हिसाब से घर को कैसे रीडेकोरेट कर सकते हैं।
3: जी हाँ बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मैं अपने घर को सजा सकता हूँ या सजा सकती हूँ, और इसके लिए आप लोगों को एक आइडिया तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अलग अलग सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मौका मिलेंगे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ 30% प्रमोशनल प्राइस है लेकिन साथ ही साथ गिफ्ट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं।
4: जी हाँ, 500 रुपए से अगर आप खरीदारी करोगे तो इक्वल अमाउंट का आपको गिफ्ट मिलेगा अप टू 10,000।
3: ये सिलसिला 10,000 रुपए तक होगा, और रात के 12 बजे तक इस तरह का मेगा सेल यहाँ पर लगाया गया है।
4: जी हाँ, ये मेगा सेल चलेगा आधी रात तक, मिडनाइट, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी ऑफ फैबुलस ट्रेंड। साथ ही साथ स्पेशल ओकेजन भी है मदर्स डे का।
3: कल आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार बारिश हो रही है, सैटरडे की रात है, हम लोग यहाँ से अपने क्विल्ट से निकल करके यहाँ पर आएंगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा।
4: लेकिन आपको बता दें कि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी खरीदारी करने के लिए।
3: मैं यहाँ पर एक ऐसे फादर को देख रहा हूँ, अपने छोटे बच्चे को लटकते हुए यहाँ पर लेकर आए हैं, और बच्चे भी यहाँ, हालांकि बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है उसका पूरा पूरा आनंद उठा रहा है, और उनकी जो मम्मा है गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं, पिताजी गरम गरम चाय पी रहे हैं, बच्चे लटके हुए हैं, और यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है। क्या बात।
4: जी हाँ, इट्स अ फैमिली एटमॉस्फेयर जैसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बूढ़े छोटे बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर है।
3: जी हाँ, आप कहाँ से आए हैं भाई?
5: नुवेल फ्रांस से।
3: अच्छा, आप नुवेल फ्रांस के ही है? तो छोटे बच्चे लेकर के आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो फिर भी आपका जो लल्ला है आपके साथ है, तो कैसा फील हो रहा है?
5: बहुत अच्छा
3: रहे।
5: चाय बहुत

0: अच्छा है।
1: क्या बात है, चाय। अच्छा आप लोगों ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया है?
0: हाँ।
1: ओके, और आपको कैसा लग रहा है? गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं, पीमो के साथ लाल मिर्च, बापरे।
2: पकोड़ा बहुत अच्छा है।
1: अच्छा पकोड़ा बहुत अच्छा है। अच्छा हम यहाँ पर पकोड़े की उनके मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं भी अब चखना चाहता हूँ पकोड़ों कैसा है।
3: पकोड़ा इज पार्ट ऑफ द पैकेज।
1: क्या बात है, मतलब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एक फुल पैकेज आपको मिलेगा, लाइट्स हो, कालीन हो, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हो, गिफ्ट्स हो, और पकोड़े और चाय के साथ ही इसमें इंक्लूडेड है। सो आइए, अगर आप लोग घोंबा बाशरी लाफलोगा आजू बाजू के पास रहते हैं, अगर आप लोग नुवेल फ्रांस के हैं, मेबर के हैं, या फिर रिवे दे क्रोयल के हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर आकर के आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक हम यहाँ पर रहेंगे, रेडियो मस्ती रात के 10 बजे तक रहेंगे। सो आइए हम, हाँ निखिल कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हम इस सिलसिले को आगे रख पाएंगे। वी आर लकी कि हम 10 बजे को खत्म कर रहे हैं अपना शो, ताकि 2 घंटे मिले हमको शॉपिंग करने के लिए।
1: ऑफ कोर्स, तो शॉपिंग करने के लिए हम लोगों के पास 2 घंटे हैं, आपके पास 3-4 घंटे हैं, आप आइए फटाफट, और आप भी अपने माँ के लिए, अपने सासू माँ के लिए,
3: या खुद के लिए,
1: या खुद के लिए, या घर के लिए, या फिर अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए आप लोग कुछ ना कुछ खरीद करके यहाँ से निकल करके भर भर कर अपनी गाड़ी के में लेकर के आप जा सकते हैं।
3: बस आपसे यही अनुरोध है कि अकेले मत आना।
1: ऑफ कोर्स,
3: इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स आप यहां से खरीद कर जाओगे कि आपके 2 हाथ काफी नहीं होंगे।
1: म्यूजिक का
4: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Celesti.
1: In the mix.
2: जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लाइट्स अगर आप खरीद करके अपने घर को सजाएंगे, सो इट विल बी जस्ट लाइक भुर्ज खलीफा के बराबर ही डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहां पर भी लाइट्स देखने को मिलता है दुबई में।
3: लेकिन ये लाइट्स चलाने के लिए आपको दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल।
3: इट्स हैपनिंग इन नुवेल फ्रांस
2: और रात के 12 बजे तक आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और इट्स टाइम फॉर अस टू साइन ऑफ नाउ, जाने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले जितने सारे जो लोग इस वक्त रेडियो मेस्सी के साथ जुड़े हुए हैं, एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे। यस ऑफ कोर्स, मातृ दिवस की मंगल कामना। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे फैबुलस ट्रेंड के मालिक को और साथ ही साथ जितने सारे जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक बहुत ही दमदार काम कर रहे हैं यहाँ पर, उन सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत

0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: और साथ ही साथ पुलिस वालों का जो योगदान है
0: जी बिल्कुल,
1: इसको ठीक से चलाने के लिए,
0: बिल्कुल पेट्रोलिंग करने के लिए हम पुलिस कर्मियों को भी थैंक यू कहना चाहेंगे। हम बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहेंगे डोमिनिक को। वी डू हैव अमर, अक्षय, साथ ही साथ है नईम, गिजा, आप अखिल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, आपको भी बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू। और जितने सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रात के 10 बजे तक, हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बात कहूं, अभी रिया घर नहीं गई है,
1: तभी तो हमने बताया था कि शो खत्म हो जाएगा लेकिन इनकी खरीदारी खत्म नहीं हुई।
2: मैं अभी तक खरीदारी कर रही हूँ एंड ये खरीदारी खत्म ही नहीं हो रही क्योंकि इतने सुपर अमेजिंग डील्स हैं यहाँ पर कि मेरा तो दिल ही लग गया।
1: जी हाँ, और उन डील्स के लिए यू हैव टिल मिडनाइट टुनाइट।
2: एग्जैक्टली, इसलिए मैं फटाफट सब कुछ समेट रही हूँ यहाँ पर।
0: समेटने के लिए आपके पास रात के 12 बजे तक समय है, सो
1: आप जल्दी जल्दी आ जाओ वरना रिया जी पूरा फैबुलस 10 नहीं खरीदती।
0: हाँ, सब लेकर साफ करके यहाँ से अपने गाड़ी में लेकर के चली जाएगी।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी हाँ, बिल्कुल आप आइए और खरीदारी कीजिए और हमें अनुमति दीजिए। टिल देन निखिल, रिया और अभी की ओर से हैप्पी मदर्स डे, बाय।
3: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: RM2 Radio

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।